श्रोताओं सुप्रभात। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 ज्येष्ठ मास की सातवीं तिथि, तदनुसार 28 मई 2026। इस वक्त सुबह के 5:58 हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। सुबह की 6 बजे है। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित ना रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में जो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगे। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है, जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाढ़ लगाई जा चुकी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन ने बकरी ईद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी।

राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर टू मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेंगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ऐड नहीं कर रहा। FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना की शुरुआत करते हैं मातृ वंदना से। समूह स्वर में सुनते हैं ये देशगान।

आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना में लीजिए अब हम आपको सुनवा रहे हैं ज्योतिका रॉय के स्वर में ये भक्ति रचना।

0: इसी के साथ ही वंदना अब संपन्न हुई। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:30 हुए हैं। अब वक्त है विचारों की मंथन यानी कार्यक्रम चिंतन का। आलेख डॉक्टर समर बहादुर सिंह का।
1: आज रह रहकर संस्कृत की ये उक्ति मानस में गूंज रही है, पुण्य यशो लभ्यते विश्वासो फलदायकः, अर्थात पुण्य से ही यश मिलता है और विश्वास सदैव फलदायक होता है। किंतु पुण्य है क्या चीज? पुण्य का अर्थ है शुभ काम, दूसरों के हित के लिए किया गया काम। यदि हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो उसे पुण्य मिलता है और इस पुनीत कार्य का परिणाम मिलता है यश। किंतु यदि हमारा कार्य दूसरों के लिए कष्टकारी होता है तो हमारी बदनामी होती है, हमें अपयश मिलता है। 18 पुराणों का सार दो बातों में देते हुए व्यास ने कहा था, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, अर्थात परोपकार ही पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना ही पाप है। और तुलसी ने भी तो कहा था, परहित बस जिनके मन माही तिन कहे जग दुर्लभ कछु नाही, अर्थात जिनके मन में दूसरों का हित बसता है, जो सदैव दूसरों के कल्याण की कामना करते हैं, उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। वाल्मीकि और तुलसी, बुद्ध और गांधी आज भी जनमानस पर छाए हुए हैं, इसीलिए कि वे दूसरों के लिए जिए। अतः यदि हम यश चाहते हैं तो पुण्य करें, अच्छा काम करें, दूसरों के कल्याण की कामना करें। यश प्राप्ति का यही एक निश्चित मार्ग है। बुद्ध ने भी इसी तथ्य का सदियों पहले प्रचार प्रसार किया था, मैत्री भावना। मैत्री भावना उनके दर्शन का प्रमुख अंग था। सबके प्रति मैत्री भाव रखने से ही मानव सुख और शांति का भागी बन सकता है। गांधी जी की प्रार्थना में नित्य ही संस्कृत का ये श्लोक शामिल रहता था, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यानी सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सब एक दूसरे को अच्छी नजर से देखें, संसार में कोई भी दुखी न हो। अनुभव में पगे एक लब्ध प्रतिष्ठित सज्जन से एक दिन मुलाकात हुई। जीवन की कितनी बुलंदियों को वो छू चुके हैं, कितनी ही गहराइयों को छान चुके हैं, यश वैभव आदि सभी में वो धनी हैं। बातचीत के दौरान मैंने उनसे पूछा, इन उपलब्धियों का रहस्य क्या है, जीवन से आपने क्या सीखा? मेरा प्रश्न सुनकर वो मुस्कुराए, लगा जैसे वो मेरे अबोधपन पर आश्चर्यचकित हो गए हों। फिर बोले, कबीर का ये पद सदैव मेरे जीवन का पथ प्रदर्शक रहा है, जो तो को कांटा बुवे ताही बोए तू फूल, तो ही फूल के फूल हैं बाको हैं तिरसूल। यानी जो तुम्हारे लिए कांटे बोए उनके लिए तुम फूल बो, और आगे चलकर देखोगे कि वे फूल तुम्हारे लिए तो फूल ही रहेंगे, किंतु उस कांटे बोने वाले के लिए वे त्रिशूल बन जाएंगे। सचमुच यश का भागी वही बन सकता है जो पुण्यात्मा हो, जिसके सारे कार्य दूसरों को हित की भावना से प्रेरित होकर किए गए हों। इतिहास इसी बात की पुष्टि करता है, नियति में शुद्धा, उस विश्व नियंता में शुद्धा, उसके विधान में शुद्धा, ये सभी बड़े फलदायक होते हैं। इसका मजा तो वही जान सकते हैं जो श्रद्धा के इस पथ पर कुछ दिन चले हों। आज जो लोगों में इतना तनाव, इतनी अशांति है, उसके पीछे बहुत कुछ मात्रा में श्रद्धा का अभाव, विश्वास की कमी है। यदि हम एक दूसरे पर विश्वास करना सीखें, नियति में श्रद्धा रखें, तो हमारे जीवन में सचमुच एक नया निखार, नया संवार आ जाएगा। स्मरण रहे अंग्रेजी की वह युक्ति, ट्रस्ट बी गेट्स ट्रस्ट, अर्थात विश्वास देने से ही विश्वास मिलता है। यदि हम विश्वास देने में कंजूसी करते हैं तो दूसरा भला विश्वास देने में कैसे उदारता दिखाएगा।

0: जब विश्वास ही नहीं तो शांति कहां, उपलब्धि कहां। तभी तो गीता में सदियों पहले से यह चेतावनी दे दी गई थी, संशयात्मा विनश्यते, अर्थात जो संशय करता है उसका विनाश हो जाता है। अतः हम अनुभव के आईने में परिलक्षित उस संस्कृत की उक्ति को सदैव स्मरण रखें, वही उक्ति जो हमने प्रारंभ में कही थी, पुण्ये यशो लभ्यते विश्वासो फलदायकः, यानी पुण्य से ही यश मिलता है और विश्वास सदैव फलदायक होता है।
1: डॉक्टर समर बहादुर सिंह का आलेख अभी आपने सुना कार्यक्रम चिंतन में। ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान। आज की कड़ी में मुख्य गायक स्वर है सुरेश वाडकर का, संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया।

महाराज दशरथ के दाह संस्कार, दशगात्र विधान आदि के बाद कुलगुरु वशिष्ठ ने भरत जी को राजपद संभालने का उपदेश दिया। भरत ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए कहा कि उनका कल्याण मात्र श्री राम की चाकरी में निहित है। अवध का राजपद श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण की अनुपस्थिति में उनके लिए शोक का संसार बन गया है। जिस प्रकार वस्त्र के अभाव में आभूषण व्यर्थ हैं, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार का कोई अर्थ नहीं, रोगी शरीर के लिए जिस प्रकार नाना प्रकार के भोग, हरि भक्ति के बिना जप तथा जोग तथा जीव के बिना देह व्यर्थ है, उसी प्रकार श्री राम के बिना उनके लिए राज सिंहासन, भोग और ऐश्वर्य सभी व्यर्थ हैं। भरत गुरुजन की आज्ञा लेकर श्री राम के पास वन में जाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करने में ही उनके जीवन की सार्थकता है। उनका विचार है कि मात्र मोह के वशीभूत होकर गुरुजन उन्हें सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, जबकि धर्म के अनुसार शीलवान को ही राजपद शोभा देता है। यदि हठ करके उन्हें राज्य दे दिया गया तो पृथ्वी रसातल चली जाएगी। खुमाता कैकई की कोख से पैदा होना उनके लिए अभिशाप बन गया है।

अभी आप सुन रही थी श्री रामचरित मानस गान। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:45 हुए हैं। आइए अब हम आपको देते हैं जानकारी हमारी आज की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

अब से कुछ ही देर बाद आप सुन सकेंगे सदाबहार फिल्मी गीत। प्रादेशिक समाचारों का वक्त होगा 7:10 पर। कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट आप सुन सकेंगे 7:20 पर।

समाचार प्रभात का वक्त होगा सुबह 8 बजे। सुबह 8:15 पर आप आनंद ले सकेंगे सुगम संगीत का। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, जिसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 9:00 से 10:00 तक आप सुन सकेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम।

कार्यक्रम जिले की चिट्ठी आप सुन सकेंगे सुबह 10 बजे, जिसे हम आकाशवाणी की भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 10 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत और सुबह 10:30 पर आप सुन सकेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। सुबह 11 बजे से दोपहर 2:10 तक आप सुन सकेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम। दोपहर 2:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और दोपहर 2:15 पर आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे तक आप सुन सकेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम।

शाम 5 बजे आप सुनेंगे युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत और शाम 6 बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट। शाम 6:30 पर आप आनंद ले सकेंगे सुगम संगीत का। शाम 7:05 पर आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे और प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे शाम 7:10 पर। किसान भाइयों के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण किया जाएगा शाम 7:21 पर और शाम 7:30 पर आप सुनेंगे

रात 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत और रात 8:30 पर आप सुनेंगे पॉप म्यूजिक। कार्यक्रम विवरण अब संपन्न हुआ।

FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीत। सदाबहार फिल्मी गीत के साथ मैं हूं महेंद्र अमूले। कार्यक्रम की पहली पेशकश है फिल्म जीने की राह से। आवाज मोहम्मद रफी की है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीत के बोल आनंद बख्शी ने दिए हैं।

कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीतों में अब हम आपको सुनवा रही हैं लोफर फिल्म का गीत। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं।

और आइए कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं हीरा पन्ना फिल्म का गीत। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। संगीत LRT बर्मन का है और गीत के बोल आनंद बख्शी ने दिए हैं।

0: इसी के साथ ही सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 होने ही वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
1: प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।

0: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51वीं प्रगति बैठक में राज्यों को स्वच्छता, सोलर ऊर्जा और बुनियादी ढांचे पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बकरीद पर देशवासियों को बधाई दी। वहीं मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने नमाज सिर्फ मस्जिद और ईदगाह में पढ़ने की अपील की। त्विशा शर्मा मृत्यु के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द की। और आईपीएल एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंदों में 97 रन की तूफानी पारी खेली। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए कई अहम मुद्दों पर राज्यों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन सिर्फ शौचालय बनाने तक ना रहे, बल्कि कचरा प्रसंस्करण और गोबर धन संयंत्रों में भी तेजी लाए। छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे बिजली सस्ती होगी और स्वच्छ ऊर्जा को बल मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि यह त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह पर्व हमें वंचितों की सेवा करने की प्रेरणा देता है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में वक्फ बोर्ड ने लोगों से सड़क या सार्वजनिक जगहों पर नमाज ना पढ़ने की अपील की है। बोर्ड का कहना है कि नमाज सिर्फ मस्जिद और ईदगाह में ही पढ़ी जाए। इसके अलावा कुर्बानी भी तय जगहों पर हो और उसके फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर ना शेयर करने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार ने सार्थक पीडीएस फेज टू के लिए 25,530 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस योजना में एआई और आधुनिक तकनीक के जरिए राशन वितरण पहले से ज़्यादा पारदर्शी और बेहतर होगा। डॉक्टर यादव ने बताया कि पिछले एक दशक में राशन कार्ड डिजिटलीकरण, आधार से जोड़ना और ईपीओएस मशीनों जैसे कई अहम सुधार पहले ही किए जा चुके हैं। यह नई योजना उस कड़ी को और आगे बढ़ाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसमें केंद्र, राज्य सरकारें और कृषि संस्थान मिलकर आने वाले खरीफ सीजन की तैयारियों पर विचार करेंगे। चर्चा का जलवायु के अनुकूल खेती, दलहन तिलहन उत्पादन, प्राकृतिक खेती और डिजिटल कृषि पर जोर रहेगा। भोपाल की त्विशा शर्मा की मृत्यु के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने देर रात 17 पन्नों के आदेश में कहा कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए राहत देना उचित नहीं था। साथ ही निचली अदालत पर भी सवाल उठाए कि उसने केस डायरी और साक्ष्यों की सही जाँच नहीं की। अब सीबीआई गिरिबाला सिंह को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। वहीं त्विशा के पति समर सिंह पहले से 29 मई तक सीबीआई रिमांड पर है। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स में त्विशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वाले हत्या का आरोप लगा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत एसआईआर कराने की पूर्ण शक्ति रखता है। न्यायालय ने माना कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल मतदान प्रक्रिया पर नहीं बल्कि मतदाता सूचियों की सटीकता और विश्वसनीयता पर भी निर्भर करते हैं। प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार कल पन्ना जिले के बहिरपुरवा गांव पहुंचे और कुआं धसकने से जान गंवाने वाले 5 मजदूरों के परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने शोक में डूबे परिवारों को ढाढ़स बंधाया और कहा कि ये मजदूर अपने घर परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे और यह हादसा बेहद दर्दनाक है। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ भी पीड़ित परिवारों को दिलाया जाएगा। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं।

0: सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम का 134वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कॉल करके नरेंद्र मोदी ऐप या MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव 29 मई तक स्वीकार किए जाएंगे। सांची स्तूप में रखे भगवान बुद्ध के दो प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र और महामोदगल्यायन के पवित्र अवशेष मंगोलिया भेजे जा रहे हैं। आज ये अवशेष भोपाल से दिल्ली रवाना होंगे, जहां 29 मई को राष्ट्रीय संग्रहालय में लोग इनके दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद 30 मई को भारतीय वायुसेना का विशेष विमान इन्हें मंगोलिया ले जाएगा। वहां की राजधानी उलानबतोर में 31 मई से आम लोगों के दर्शन के लिए अवशेषों को रखा जाएगा। यहाँ करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। प्रदेश सरकार ने बाल विवाह रोकने के लिए जिले से लेकर गांव तक के अधिकारियों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी बना दिया है। अब कलेक्टर से लेकर पटवारी तक हर स्तर पर कोई न कोई अधिकारी सीधे जिम्मेदार होगा। शहरी इलाकों में नगर निगम के जोनल और स्वास्थ्य अधिकारियों को भी यह जिम्मा सौंपा गया है। साल 2025 में प्रदेश में बाल विवाह के 538 मामले दर्ज किए गए थे। प्रदेश में स्वावलंबी गौशाला नीति 2025 के तहत बड़े पैमाने पर गौशालाएं बनाने की तैयारी है। राज्य मंत्री लखन पटेल ने कल समीक्षा बैठक में बताया कि हर गौशाला में कम से कम 5000 गोवंश रखना जरूरी होगा, जिसमें 30% दुधारू नस्ल की गाय होंगी। इसके लिए सरकार 125 एकड़ तक जमीन उपयोग के अधिकार हेतु देगी। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को ग्रीन सिंहस्थ थीम पर सजाने की तैयारी शुरू हो गई है। संभागायुक्त आशीष सिंह ने सभी विभागों को 7 दिन में पौधारोपण की प्लानिंग करने के निर्देश दिए हैं। नई सड़कों, पंचक्रोशी मार्ग और शिप्रा नदी के नए घाटों के किनारे अमलताज, गुलमोहर और पलाश जैसे गर्मियों में खिलने वाले फूलदार पौधे लगाए जाएंगे। कुल मिलाकर 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। IPL एनिमेटर में कल रात राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराकर अगले दौर में जगह बना ली। मैच के सबसे बड़े हीरो वैभव सूर्यवंशी रहे, जिन्होंने सिर्फ 29 गेंदों में 97 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द मैच बने। वहीं आज राजस्थान का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा और जीतने वाली टीम रविवार को अहमदाबाद में RCB से फाइनल खेलेगी। अब बात मौसम की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्रदेशवासियों से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की अपील की है। उन्होंने लोगों से हाइड्रेटेड रहने और घर से निकलते वक्त पानी की बोतल साथ रखने को कहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं, आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर के खजुराहो और नौगांव में 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। कल दोनों जगहों पर पारा 46.6 डिग्री रहा। आज यहां तीव्र लू का रेड अलर्ट है। हालांकि राहत की बात यह है कि कल से 31 मई तक पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल में बारातियों से भरी पिकअप पलटने से एक महिला और 8 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन लोग घायल हो गए। रतलाम जिले के आलोट के पास चलती कार में अचानक आग लग जाने से एक व्यक्ति झुलस गया, जबकि चालक और एक अन्य सवार ने कूदकर जान बचाई। खंडवा जिला चिकित्सालय में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। नर्मदापुरम कलेक्टर ने CM हेल्पलाइन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिला अधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। देवास की शाही ईदगाह में सुबह 9:30 बजे ईद की नमाज अदा की जाएगी। शहर काजी ने समाज से कुर्बानी का हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों तक पहुंचाने की अपील की है। खरगोन जिला सहकारी बैंक की ठिपगांव शाखा में 41 लाख से अधिक के गबन पर 3 कर्मचारी निलंबित। शिवपुरी कलेक्टर ने दुकानों, ढाबों और कारखानों में बाल श्रम रोकने के लिए अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। आगरमालवा में पेयजल और हैंडपंप शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम शुरू। कटनी में प्रेमनगर बस्ती के आवासों पर बने 8 अनधिकृत कब्जे जिला प्रशासन ने हटाए। राजगढ़ में जल संचयन जन भागीदारी अभियान के तहत तकनीकी मार्गदर्शन कार्यशाला आयोजित। और शहडोल में इस साल खरीफ धान बोनी का लक्ष्य 3000 हेक्टेयर से बढ़ाकर 1,50,000 हेक्टेयर किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। सुबह के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट।
1: नमस्कार बालाघाट।

श्रोताओं, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट सुनने वाले सभी श्रोताओं को महेंद्र अमूले का नमस्कार। श्रोताओं, मानव जीवन में इस आपाधापी वाली जिंदगी में भी आप जो भी कार्य करें, डूब कर करें। कहने का तात्पर्य है, डूब कर किए गए कार्य की सुगंध व्यवहार में उतरती है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप पूजा पाठ कर रहे हों, कोई इबादत से गुजर रहे हों, थोड़े समय ही भले आप ये काम कर रहे हों, पर डूब कर करिए। उतने वक्त भूल जाइए कि पीछे क्या घटा था और आगे क्या होने वाला है। जो लोग 24 घंटे में अपने तयशुदा धार्मिक कृत्य पूरी तरह इन्वॉल्व होकर करेंगे, बाकी समय उनका व्यवहार बहुत आकर्षक हो जाएगा। उस थोड़ी देर में डूब कर किए गए कृत्य की सुगंध दिन भर किए जा रहे कार्यों में उतर जाएगी। फिर आप परिवार में हो, कारोबार में हो, आपका व्यवहार आकर्षक हो ही जाएगा। लोग आपके आसपास सादगी, साफगोई, सच्चाई और मिठास महसूस करेंगे, क्योंकि आपको फिर अपनी दिनचर्या में कई तरह के लोगों से मिलना है। उसमें से एक होते हैं निकट के लोग, दूसरे सामान्य संबंध वाले लोग, तीसरे व्यर्थ के लोग और चौथे प्रभावशाली लोग। इन चारों से समान रूप से आकर्षक व्यवहार करिए। ये अपने आप में एक योग है, मेडिटेशन है, क्योंकि भक्त अपना भगवान सब में देखता है।

0: पटाखा एंड पटाखा एयर आर्म्स,
1: शादियां और अन्य अवसरों पर पटाखों की विशाल रेंज,
0: बालाघाट में एयर गन के अधिकृत विक्रेता,
1: एयर गन के प्रयोग से फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जानवरों को आंशिक आहत और डर से भगाएं, अपनी फसलों की रक्षा करें।
0: स्कूल कॉलेज गन शूटिंग के लिए भी संपर्क करें। पटाखा एंड पटाखा, सरेखा बाईपास रोड, बालाघाट।
1: मोबाइल नंबर 9406788702।
2: क्या आप किसी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं जो आपको न सिर्फ शिक्षण दे बल्कि साथ में दे रोजगार?
3: तो अब आपकी तलाश हुई पूरी, चले आइए AICTE से मान्यता प्राप्त और RGPV भोपाल से संबद्ध सतपुड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां BTEC कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में डिग्री और साथ ही पॉलिटेक्निक के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में।
2: हमारा पता है सतपुड़ा कैंपस, लालबारा रोड, गर्रा, बालाघाट।
3: मोबाइल नंबर 6262604111 और 9425836824।
4: श्रोताओं, अब बारी आती है सुविचारों की। सुविचार हमें प्रभावित करते हैं, प्रेरणा देते हैं, इसलिए रोजाना सुविचारों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जब इंसान को गंदे और मैले कपड़ों से शर्म आती है तो गंदे और मैले विचारों से भी शर्म आनी चाहिए। इसका अर्थ ये है कि जिस प्रकार हम अपने बाहरी व्यक्तित्व और गंदे कपड़ों को देखकर समाज में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने मन में आने वाले बुरे, गंदे और नकारात्मक विचारों के लिए भी आत्मग्लानी, शर्म होनी चाहिए। बाहरी स्वच्छता से अधिक आंतरिक स्वच्छता महत्वपूर्ण होनी चाहिए।

श्रोताओं, अब आइए जानते हैं क्या कुछ खास घटित हुआ 28 मई की तारीख में। 28 मई 1959 में आज ही के दिन दो अमेरिकी बंदरों ने अंतरिक्ष की सफल यात्रा की। ब्रितानी नाविक सर फ्रांसिस चिटचेस्टर 28 मई 1967 में आज ही के दिन अकेले नाव में दुनिया का चक्कर लगाकर घर लौटे। 28 मई 1970 ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का औपचारिक तौर पर विभाजन हो गया। 28 मई 1989 मार्था कौली डेविड भारत की पहली

पहली और विश्व की दूसरी महिला ईसाई पादरी बनी। 28 मई 2002 नेपाल में फिर से आपातकाल लगा। 28 मई 2008 में 240 सालों से चली आ रही राजशाही का अंत हो गया।

आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से आप सुन रहे हैं महेंद्र अमूले के साथ कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट। नमस्कार बालाघाट में आज के इतिहास में अब एक नजर 28 मई को जन्मे व्यक्तियों पर। हिंदुत्ववादी नेता और कवि विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 में आज ही के दिन हुआ। जासूसी उपन्यास जेम्स बॉन्ड के लेखक इयान फ्लेमिंग का जन्म 28 मई 1908 में हुआ। भारतीय व्यवसायी एस एस किर्लोस्कर का जन्म 28 मई 1903 को हुआ, जिन्होंने किर्लोस्कर समूह के तीव्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय राजनेता और भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सह संस्थापक गोपाल रामानुज का जन्म 28 मई 1915 में हुआ। भारतीय अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, फिल्म संपादक और राजनीतिज्ञ एन टी रामाराव का जन्म 28 मई 1923 को हुआ, जिन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। हॉलीवुड अभिनेता डेनिस हॉपर का निधन 28 मई 2000 में हुआ। श्रोताओं, आज 28 मई है। आज पूरे देश में ईद उल अजहा का पर्व मनाया जा रहा है। बकरी ईद या बलिदान का त्यौहार के रूप में भी जाने जाने वाला ईद उल अजहा वर्ष का दूसरा प्रमुख इस्लामी त्यौहार है। यह पैगंबर इब्राहिम के अटूट विश्वास और ईश्वर के प्रति आज्ञाकारिता में अपनी बेटी की कुर्बानी देने की उनकी तत्परता का स्मरण कराता है।

श्रोताओं, अब बारी आती है रोजगार सूचना की। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने आधिकारिक तौर पर एसएससी सीजीएल 2026 अधिसूचना जारी कर ग्रुप बी और ग्रुप सी के विभिन्न पदों के लिए कुल 12,256 रियुक्तियों की घोषणा की है। आवेदन करने की प्रारंभ तिथि है 21 मई 2026, अंतिम तिथि है 22 जून 2026। शैक्षणिक योग्यता है, उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या समकक्ष

कुछ विशिष्ट पदों जैसे कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी के लिए स्नातक स्तर पर गणित या सांख्यिकी जैसे विशिष्ट विषयों का ज्ञान आवश्यक है। आयु सीमा है 18 से 32 वर्ष। आवेदन ऑनलाइन करना होगा। रोजगार सूचना समाप्त हुई।

0: श्रोताओं, वक्त अब हमें इशारा कर रहा है आपसे विदा लेने का। कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट के आज के इस अंक का सफर यहीं तक। कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग रहा रतनलाल कटरी का। प्रस्तुति थी कुंवर विक्रम सिंह की। अब दीजिए महेंद्र अमूले को इजाजत, स्वीकार करें हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्कार बालाघाट।
0: अभी आप सुन रही थी कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट। ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। सुबह के 8 बजने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन

0: चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतरराज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतरराज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
2: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेन देन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
3: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में सोला क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति

0: दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई हैं। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल हैं। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
2: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्त स्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
3: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
4: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

0: सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद जागृति। SIR पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, SIR पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा SIR। पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जांच कर सकता है चुनाव आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करें। दैनिक भास्कर ने CBSE की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है। ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, CBSE ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है, कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे मानसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, अमेरिका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा होर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है, अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू। हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी है, नौतपा में तप रहा उत्तर भारत, कल से राहत मिलने की उम्मीद।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देशभर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM बैंड 101.3 MHz पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम सुगम संगीत में पहली पेशकश है जगजीत सिंह की आवाज में ये नगमा। आवाज और संगीत जगजीत सिंह का है। शायर हैं इंदिवर।

और आइए अब सुनते हैं उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की आवाज में ये नगमा। शायर हैं डॉक्टर हसरत जयपुरी।

0: इसी के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:30 होने ही वाले हैं। कुछ ही क्षणों पश्चात आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, जिसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: वतन का राग।

0: वतन का राग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। इसका सही जवाब है महादेव विनायक रानाडे। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, हरियाणा से हरस्वरूप और दमोह से हर्षिता। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

क्रांति पथ पर चलते हुए सौगंध आजादी की खाई थी, जंजीरों से थे बंधे वो तन, पर रूह नहीं झुक पाई थी। इस पार खड़े थे पहरेदार, उस पार स्वाधीन सवेरा था, वो वीर वहां भी हंसते थे जहां घोर काल का डेरा था। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में अनगिनत देशभक्तों ने जेल यातनाएं सही, लेकिन अंडमान की सेलुलर जेल में कैद क्रांतिकारियों का जीवन अत्यंत कठिन था। सेलुलर जेल, जिसे क्रांतिकारियों द्वारा वैली ऑफ डेथ माना जाता था, इसका निर्माण ही क्रांतिकारियों की इच्छा शक्ति को तोड़ने के लिए किया गया था। इसी जेल में बलिदान होने वाले महान क्रांतिकारी थे मोहन किशोर नामदास। वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उन बिरले योद्धाओं में से एक थे जिन्होंने अपनी शहादत से मौत को भी छोटा साबित कर दिया था। सेलुलर जेल की दीवारों ने भले ही उनके शरीर को कैद किया हो, लेकिन उनके संकल्प ने उस काल कोठरी में कैद क्रांतिकारियों के जीवन को उनकी शहादत के बाद बदल कर रख दिया। उनकी जीवन यात्रा पराधीन भारत के उस क्रोध की यात्रा है जिसने अंततः 1947 के सूर्योदय का मार्ग प्रशस्त किया। मोहन किशोर नामदास का जन्म अविभाजित बंगाल के मैमनसिंह जिले के बाजितपुर क्षेत्र में हुआ था। 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशक में ये क्षेत्र क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन चुका था। बंग भंग आंदोलन से आरंभ हुए आक्रोश ने यहाँ के युवाओं के मन में तीव्र राष्ट्रवादी भावना का संचार किया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचनाओं, विशेष रूप से आनंद मठ और उसके कालजयी गीत वंदे मातरम ने इस पूरे क्षेत्र को जागृत कर दिया था। इस वातावरण ने मोहन किशोर नामदास को गढ़ने का काम किया। उनके भीतर स्वाधीनता, स्वदेश और स्वराज की भावना अत्यंत प्रबल होने लगी। भारत भूमि से उन्हें अगाध प्रेम था और अपनी इसी जन्मभूमि की मिट्टी को माथे से लगाकर उन्होंने क्रांतिकारी जीवन में प्रवेश किया।

उस समय बंगाल में दो प्रमुख क्रांतिकारी संगठन सक्रिय थे, जुगांतर और अनुशीलन समिति। मोहन किशोर नामदास ने अपने क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत अनुशीलन समिति की कोलकाता शाखा के साथ की। अनुशीलन समिति मात्र एक राजनीतिक या सामाजिक संगठन नहीं था, बल्कि ये युवाओं के लिए एक शारीरिक, मानसिक और नैतिक प्रशिक्षण का केंद्र था। यहाँ केवल व्यायाम नहीं सिखाया जाता था, जैसा कि प्रचारित था कि ये एक व्यायामशाला है, बल्कि इससे बहुत आगे जाकर इसके वृहत्तर उद्देश्य थे। यहाँ युवाओं को शक्ति की उपासना और मातृभूमि की सेवा के लिए तैयार किया जाता था। अनुशीलन समिति की स्थापना सन 1902 में हुई थी। व्यायाम और साहस इसकी मूल भावना थी। संगठन का मानना था कि ब्रिटिश सत्ता को केवल याचिकाओं या संवैधानिक दायरे में रहते हुए नहीं हटाया जा सकता है, बल्कि इसके लिए सशस्त्र विद्रोह अनिवार्य है। इसके कई अखाड़े थे जहां लाठी चलाना सिखाया जाता था, तलवारबाजी और मुक्केबाजी सिखाई जाती थी। इसके सदस्यों को क्रांतिकारी साहित्य दिया जाता ताकि उसे पढ़कर वो भारत की आज़ादी में अपना योगदान देने के लिए मानसिक तौर पर तैयार हों। अपना अधिकार मांगने की बजाय उसे छीन लेने में इस संगठन का विश्वास था। इसके सदस्यों को गीता पर हाथ रखकर देवी दुर्गा की प्रतिमा के सामने निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती थी। मोहन किशोर नामदास ने इसी संगठन के कठोर अनुशासन में अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उनके लिए ये संगठन एक ऐसे विश्वविद्यालय की तरह था जिसने उन्हें औपनिवेशिक दास्ता की बीड़ियों को तोड़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया। इस तरह उनके जीवन को एक दिशा मिली, एक अटल लक्ष्य जिसके लिए जीने और मरने का उन्होंने संकल्प लिया। 1930 का दशक आते आते क्रांतिकारियों ने अपनी रणनीति में परिवर्तन किया। अब तक वो अत्याचारी अंग्रेज अधिकारियों से बदला ले रहे थे, उनकी हत्या कर रहे थे, लेकिन अब हथियार जुटाने के लिए धन की व्यवस्था वो डकैती से करने लगे। ब्रिटिश दस्तावेजों में उनकी इस कार्रवाई को डकैती कहा गया, जबकि क्रांतिकारी इसे स्वदेशी डाका या राजनीतिक कार्रवाई कहा करते थे।

मोहन किशोर नामदास इसी रणनीति में सघन रूप से सक्रिय थे। सन 1932 में क्रांतिकारियों ने धन और हथियार जुटाने के लिए एक डकैती की योजना बनाई। क्रांतिकारियों ने नेत्रकोना के पास स्थित एक गांव में सशस्त्र डकैती डाली। मोहन किशोर नामदास और उनके कुछ साथी क्रांतिकारियों ने इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना ने ब्रिटिश शासन की नींद उड़ा दी। पुलिस ने धरपकड़ शुरू की। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ और उसके बाद चली सघन तलाशी में मोहन किशोर नामदास गिरफ्तार कर लिए गए।

गिरफ्तारी के बाद मोहन किशोर नामदास का जीवन अत्यंत कठिन रहा। पुलिस संगठन के अन्य नेताओं के नाम और हथियारों के ठिकानों के बारे में जानकारी चाहती थी, इसलिए उन्हें अत्यंत अमानवीय यातनाएं दी गईं। लेकिन मोहन किशोर नामदास न झुके न टूटे। भीषण पीड़ाएं सहने के बावजूद उन्होंने किसी का नाम उजागर नहीं किया। उनके विरुद्ध एक विशेष न्यायाधिकरण के समक्ष मुकदमा चलाया गया। क्रांतिकारियों के त्वरित दमन के लिए विशेष कानून का सहारा लिया गया और उन्हें 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी गई। लेकिन अंग्रेज अब भी चिंतित थे और इस समय एक नीतिगत निर्णय लिया गया। कहा गया कि जिन क्रांतिकारियों को 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा मिली है, उन्हें उनकी जेलों से हटाकर अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया जाए। ब्रिटिश प्रशासन ने तर्क दिया कि ये क्रांतिकारी अपनी भूमि पर जेल में रहते हुए दूसरे सामान्य कैदियों को भी प्रभावित करने का काम कर रहे हैं तथा खतरनाक विचारों का प्रसार कर रहे हैं। इस तरह फरवरी सन 1933 में मोहन किशोर नामदास को महाराजा नामक पानी के जहाज पर चढ़ाया गया। उनके साथ इस जहाज में हरे कृष्ण कोनार, सतीश पाकराशी, डॉक्टर भूपाल बोस, डॉक्टर नारायण रॉय और निरंजन सेन जैसे क्रांतिकारी सवार थे। समुद्र की विशाल लहरों के बीच ये यात्रा जैसे इन क्रांतिकारियों के जीवन की सबसे कठिन और अंतिम संघर्ष की प्रस्तावना थी। सेलुलर जेल में कैदियों का जीवन अत्यंत कठिन था। मोहन किशोर नामदास को सौंपे गए सबसे कठिन कार्यों में से एक था कोल्हू चलाना। एक कैदी को प्रतिदिन 30 पाउंड नारियल तेल निकालना होता था। यदि ये कोटा पूरा नहीं होता तो उसे बेड़ियों से जकड़कर डंडों से पीटा जाता था। भोजन के नाम पर आधा पका चावल, कीड़े लगे गेहूं की रोटियां और उबली हुई सब्जियां दी जाती थीं। इन परिस्थितियों ने कैदियों के भीतर विद्रोह की भावना पैदा कर दी। 12 मई सन 1933 को सेलुलर जेल के इतिहास की एक महत्वपूर्ण भूख हड़ताल शुरू हुई। मोहन किशोर नामदास इस हड़ताल के अग्रणी नायकों में से एक थे। इस हड़ताल में उनके महत्वपूर्ण साथी थे महावीर सिंह और मोहित मोइत्रा। क्रांतिकारी चाहते थे कि उन्हें राजनीतिक कैदी का दर्जा दिया जाए, भोजन की गुणवत्ता में सुधार हो, पढ़ने के लिए समाचार पत्र और पुस्तकें दी जाएं और बुनियादी स्वच्छता की सुविधा दी जाए। ब्रिटिश प्रशासन इसे कैदियों की अनुशासनहीनता मान रहा था और इसीलिए उसने निर्णय लिया कि इन हड़तालियों को जबरदस्ती खिलाकर हड़ताल तोड़ी जाए। 17 मई को जब महावीर सिंह को जबरन दूध पिलाने की कोशिश की गई तो दूध फेफड़ों में चला गया और कुछ ही घंटों में उनकी मृत्यु हो गई। मोहन किशोर नामदास इस घटना के बाद भी पीछे नहीं हटे। क्रांतिकारियों ने अब पानी पीना भी छोड़ दिया क्योंकि हड़ताल तोड़वाने के लिए घड़ों में पानी के स्थान पर दूध रख दिया गया था। मोहन किशोर नामदास की स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई। जेल के डॉक्टरों ने उन्हें जबरन खिलाने का प्रयास किया। रबर की नली को उनके नाक के माध्यम से डाला गया। संघर्ष में ये नली उनके श्वसन तंत्र में चली गई। फेफड़ों में दूध चले जाने से उन्हें निमोनिया हो गया और 26 मई सन 1933 को वो शहीद हो गए। उनके पार्थिव शरीर को पत्थर से भरे बोरों से बांधकर आधी रात को समुद्र में फेंक दिया गया। मोहित मोइत्रा भी 2 दिन बाद शहीद हो गए। इन 3 क्रांतिकारियों के बलिदान ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। सरकार को झुकना पड़ा। क्रांतिकारियों की अधिकांश मांगें

मान ली गईं। इस तरह वो तीनों अपना जीवन पुष्प मातृभूमि के चरणों में समर्पित कर गए। नमन ऐसी महान विभूतियों को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। सवाल एक बार फिर सुन ले, कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, जिसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले कर रही थी। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने ही वाले हैं, अब आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे स्निग्धो जीत भौमिक की आवाज में छिपकली फिल्म का गाना, गीतकार सोहम मजूमदार और संगीतकार मीमो। लीजिए अब सुनिए भूत बंगला फिल्म का गाना, विशाल मिश्रा, नकश अजीज और अंतरा मित्रा की आवाजें हैं, कुमार के बोल और प्रीतम की है तर्ज़।

0: तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं, विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 बीईएसटी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता सुनना न भूलिए, शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में।
1: सुनिए,
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: यसिर देसाई और पवनी पांडे की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे भैया जी सुपरहिट फिल्म का गाना। गीतकार और संगीतकार थे अमजद नदीम। आइए सुनते हैं यह संदेश।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: चित्रलोक, ये कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए सोहेल सेन, रेखा भारद्वाज और साथियों की आवाजों में डबल एक्सएल फिल्म का गाना।

दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुनिए हिमेश रेशमिया और शालमली खोलगड़े की आवाजों में समीर अंजान का लिखा हुआ और हिमेश रेशमिया का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम एक्शन जैक्सन।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
3: और आज के चित्रलोक कार्यक्रम की आखिरी पेशकश ड्रीम गर्ल 2 फिल्म से मीत ब्रदर्स और नेहा कक्कड़ की आवाजें, कुमार के बोल और मीत ब्रदर्स की है तर्ज़।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में सभी दोस्तों को यूनुस खान का नमस्कार। आज उस फिल्मकार की कहानी जिसकी फिल्में इस शेर के साथ शुरू होती हैं।
1: मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।
0: बहुत बरस पहले की बात है, गुजरात में बड़ौदा के पास एक गांव में एक गरीब परिवार में एक लड़का रहता था। उस लड़के को फिल्मों का ऐसा शौक था कि बड़ौदा से निकलने वाली किसी ट्रेन में सवार हो जाता और आसपास के गांव या कस्बे में पहुंच जाता, लाइन से एक दो फिल्में देखता और लौटती ट्रेन से चुपचाप वापस आ जाता। किसी को कुछ पता नहीं चलता। घर वाले ये सोचते कि ये लड़का यहां वहां भटकता रहता है, जाने किन किन के साथ खेलता रहता है। ऐसे ही एक दिन वो ट्रेन में बैठा, मुंबई की तरफ जाने के लिए इरादा ये था कि वो कभी वापस नहीं आएगा। पिताजी को पता चल गया, पिताजी ने जमकर कुटुम्बस की और वापस ले आए। आज के फनकार कार्यक्रम में आज रोचक दास्तान महबूब खान की।

महबूब खान का जन्म 9 सितंबर 1906 को बड़ौदा के पास सरार गांव में हुआ था। बहुत सामान्य सा परिवार था, छोटा मोटा काम था, बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, जिंदगी खुशनुमा थी। जैसा कि हमने आपको बताया, महबूब खान की बचपन की जिंदगी में ट्रेनें चला करती थीं और उन ट्रेनों पर सवार होकर वो आसपास जाते, फिल्में देखते और वापस लौट आते। जहन में बस ये चलता रहता कि किसी तरह से वो खुद को पर्दे पर देख पाए, शौक अभिनय करने का था। तो भाई ये सिलसिला जारी रहा। पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी थी नहीं, इसलिए कायदे से पढ़ाई लिखाई हो न सकी और फिर हुआ यूं कि आसपास के शहरों में फिल्में देखना होता रहा। समय बीतता गया। हुआ यूं कि महबूब खान की दोस्ती एक रेलवे गार्ड से हो गई थी और उस रेलवे गार्ड ने उनको पूरी तरह से यकीन दिला लिया कि उनके भीतर फिल्मी पर्दे पर अभिनेता बनने के गुण हैं और उन्हें भाग जाना चाहिए मुंबई। हुआ यही, 16 बरस की उम्र में महबूब खान मुंबई भाग आए और सिनेमा में अपना नसीब आजमाने लगे। कांस्टेबल पिता को पता चल गया, वो सीधे मुंबई आए, अपने बेटे को ढूंढा, उसका कान पकड़ा और उसको वापस बड़ौदा ले गए। वहां जबरदस्ती महबूब खान की शादी कर दी गई, ये सोचकर कि वो बस यहां बंध जाएंगे और सिनेमा के अपने जुनून को जहन से निकालकर फेंक देंगे। बहुत जल्दी महबूब खान एक बेटे के पिता भी बन गए, लेकिन जिम्मेदारी नहीं आनी थी सो नहीं आई और आखिरकार महबूब खान ट्रेन में सवार होकर आ पहुंचे मुंबई।

लेकिन ये हो नहीं रहा था। दिन पर दिन बीत रहे थे। महबूब खान रातें प्लेटफॉर्म पर सोते हुए गुजारते। तरह तरह की परेशानियां होती। वो हौसला नहीं हारते। हर सुबह ज्योति स्टूडियोज के सामने खड़े हो जाते। एक दिन गार्ड सचमुच इंप्रेस हो गया और उसने महबूब खान की मुलाकात करवाई आर्दशीर ईरानी से, जो उन दिनों भारत की पहली बोलती फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहां से महबूब खान की गाड़ी चल पड़ी क्योंकि आर्दशीर ईरानी ने उन्हें बतौर एक्स्ट्रा काम दिया। सन 1927 में यह फिल्म थी अली बाबा और 40 चोर। इसके बाद वो क्राउड का हिस्सा बनते रहे, फिर जूनियर आर्टिस्ट बने, फिर सपोर्टिंग रोल्स मिलते रहे और फिर ऐसा मौका आया जब भारत की पहली बोलती फिल्म के हीरो के तौर पर आर्दशीर ईरानी ने महबूब खान को बस चुन ही लिया था। लेकिन फिल्मों में पैसा लगाने वाले और तब के विशेषज्ञ ये मानते थे कि ऐसे लड़के पर दांव नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि बोलती हुई फिल्में बनाना अपने आप में एक बड़ा दांव है। महबूब खान को इस रोल से हटा दिया गया। वहीं उन्हें समझ में आ गया कि अभिनय में वो कुछ ज्यादा तीर नहीं मार पाएंगे, उन्हें जिंदगी में कुछ और करना चाहिए। यहां से एक नया जुनून शुरू हुआ, अपनी एक स्क्रिप्ट लिखने और उसका निर्देशन करने का। उन्होंने आखिरकार अपनी एक स्क्रिप्ट पूरी की और अलग अलग स्टूडियोज के चक्कर फिर से काटने लगे। प्रोड्यूसर्स उनकी कहानी सुनते, उन पर हंसते और उन्हें दरवाजा दिखा देते। आखिरकार सन 1935 में एक प्रोड्यूसर को उनकी कहानी पसंद आई और तब आई महबूब खान की निर्देशित पहली फिल्म अल हिलाल। ये फिल्म सीसिल बी डिमेलो की जानी मानी फिल्म साइन ऑफ द क्रॉस से प्रेरित थी। फिल्म चल पड़ी और महबूब खान की गाड़ी भी चल पड़ी। लगभग यही दौर था जब चिमनलाल देसाई के सागर मूवी टोन में महबूब खान बतौर विलेन काम करते थे और अच्छे खासे पैसे बना रहे थे। इसी दौरान सागर मूवी टोन ने उन्हें निर्देशन का मौका दिया। सन 1936 में महबूब खान ने डेक्कन क्वीन फिल्म बनाई। सन 1939 में आई एक ही रास्ता। सन 1940 में अली बाबा। सागर मूवी टोन के लिए उन्होंने सन 1940 में बनाई अपनी फिल्म औरत।

मुंबई में महबूब खान उस जमाने के वीटी स्टेशन के पास ज्योति स्टूडियोज के बाहर खड़े रहते और इस फिराक में रहते कि किसी तरह से स्टूडियो में घुसने का मौका मिल जाए, बाकी का काम वो निपट लेंगे और किसी तरह से अभिनेता तो बन ही जाएंगे।

इसके बाद महबूब खान सागर मूवी टोन और नेशनल स्टूडियोज की फिल्मों का निर्देशन करते रहे। सन 1940 में आई फिल्म औरत महबूब खान के करियर की एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। सन 1942 में महबूब खान ने बनाई फिल्म रोटी और उसके बाद फिल्म नजमा का निर्देशन किया। ये फिल्म साल 1943 में आई थी। इसके बाद उन्होंने तकदीर और हुमायूं जैसी फिल्में बनाई। सन 1946 महबूब खान के निर्देशन में आई फिल्म अनमोल घड़ी।

अनमोल घड़ी के कलाकार थे नूरजहां, सुरैया और सुरेंद्र। इस फिल्म के गाने तनवीर नकवी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था। 11 नवंबर 1946

1949 महबूब खान के करियर की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म आई अंदाज। कलाकार थे दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर फरीदुन ईरानी थे। 26 अगस्त 1949 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। ये फिल्म एक प्रेम त्रिकोण थी। इसके गाने मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था।

सन 1952 महबूब खान लेकर आए अपनी बेमिसाल फिल्म आन। इसके कलाकार थे दिलीप कुमार, निम्मी, प्रेमनाथ और नादिरा। संगीत नौशाद का था। ये फिल्म 4 जुलाई 1952 को रिलीज की गई थी।

सन 1954 महबूब खान की फिल्म आई अमर। 1 अक्टूबर 1954 को रिलीज इस फिल्म के कलाकार थे दिलीप कुमार, मधुबाला और निम्मी। संगीत नौशाद का था।

एक ऐसा कलाकार जिसने अपनी यात्रा बतौर स्पॉट बॉय शुरू की हो और जिसके जहन में हो अनमोल ऊंचाइयों को छूने के सपने। उस कलाकार ने मुंबई फिल्म उद्योग को दिया हॉलीवुड स्टाइल का पहला फिल्म स्टूडियो महबूब स्टूडियोज। महबूब स्टूडियोज का आगाज सन 1952 में हुआ। मुंबई के बांद्रा में स्थित इस स्टूडियोज में आज भी फिल्मों की शूटिंग की जाती है।

0: भारत के इतिहास में 1957 का अक्टूबर महीना बड़ा मायने रखता है। इसी साल 3 अक्टूबर को यानी 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती अस्तित्व में आई थी और विविध भारती पर प्रसारण शुरू होने के कुल 23 दिन बाद रिलीज हुई थी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया। रिलीज डेट है 25 अक्टूबर 1957। भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक कालजयी फिल्म। कलाकार नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार। दिलचस्प बात ये कि ये फिल्म महबूब खान की ही 1940 में आई फिल्म औरत का रीमेक थी। इस फिल्म की पटकथा और संवाद एस अली रजा, वजाहत मिर्जा और महबूब खान ने मिलकर लिखे थे। संगीत नौशाद का था, गीत शकील बदायूनी के। मदर इंडिया भारत की एक बेमिसाल फेमिनिस्ट फिल्म। महबूब खान एक स्त्रीवादी फिल्मकार माने जाते हैं, एक ऐसे फिल्मकार जो महिलाओं के पक्ष में खड़े नजर आते हैं, चाहे उनकी फिल्म आन हो, अमर हो, मदर इंडिया हो या औरत। सशक्त नायिकाओं की भूमिकाओं वाली ये फिल्में सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद की जाएंगी। मदर इंडिया को तो एकेडमी अवार्ड्स के लिए शॉर्ट लिस्ट भी किया गया था। ये अलग बात है कि ये फिल्म पुरस्कार जीत नहीं पाई, लेकिन विश्व स्तर पर जितना हंगामा मदर इंडिया ने उस जमाने में किया शायद ही किसी फिल्म ने किया होगा। कुछ गानों की झलक।
1: हर हर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए।

मदर इंडिया जैसी बड़ी लकीर खींचने के बाद महबूब खान ने ज्यादा फिल्में नहीं बनाई। सन 1962 में आई उनकी निर्देशित फिल्म सन ऑफ इंडिया।

एक फिल्मकार जिसे अभी और आसमान छूने थे, जिसे कामयाबी की और बुलंदियां छूनी थी, जिसके सहन में सपनों की फसल लहलहा रही थी, लेकिन वक्त ने उसकी रफ्तार को रोक लिया। 28 मई 1964 को सिर्फ 56 बरस की उम्र में महबूब खान ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया महबूब खान का सिनेमा और सिनेमा की महबूब खान की विरासत महबूब स्टूडियोज। आज भी महबूब खान को अपने समय से आगे का फिल्मकार माना जाता है। महबूब खान के सम्मान में भारत सरकार ने एक पोस्टल स्टैंप जारी किया था, जो डाक टिकट के संग्रहकर्ताओं के लिए एक अनमोल विरासत है। महान फिल्मकार महबूब खान को हमारा विनम्र नमन।

0: के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था फिल्मकार महबूब खान पर।
1: FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बजे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम जिले की चिट्ठी, जिसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले कर रहे हैं।
2: लीजिए सुनिए गुना जिले की चिट्ठी। आलेख है रोहित गोस्वामी का, वाचन स्वर नवनीत चौबे के।

गुना जिले की चिट्ठी में बात सबसे पहले विकास और उद्योगों की। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुना जिले में अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास किया। करीब 1060 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस फैक्ट्री से 1500 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योग बढ़ेंगे तो युवाओं को अपने ही जिले में रोजगार मिलेगा और इलाके की आर्थिक तस्वीर बदलेगी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी गुना क्षेत्र में सड़क, अधोसंरचना और विकास से जुड़ी कई अहम घोषणाएं की। रोजगार की दिशा में युवा संगम कार्यक्रम भी खास रहा। जिला स्तरीय रोजगार एवं स्वरोजगार मेले में 850 से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें से 529 युवाओं का अलग अलग निजी कंपनियों में शुरुआती चयन हुआ और मौके पर ही ऑफर लेटर भी दिए गए। इसके अलावा कार्यक्रम में 3136 हितग्राहियों को 21,30,00,000 रुपए से ज्यादा के हित लाभ बांटे गए। अब बात पानी और पर्यावरण की। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत गंगा दशहरा पर भुजरिया तालाब में विशेष कार्यक्रम हुआ। लोगों ने सामूहिक

गंगा आरती की, जल संरक्षण की शपथ ली और पानी बचाने का संदेश दिया। वहीं कंजा गांव में कुनो नदी के उद्गम स्थल पर भी बड़ा आयोजन हुआ। महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली और श्रमदान कर लोगों को जल संरक्षण का महत्व समझाया। प्रशासन का कहना है कि कुनो नदी संरक्षण और स्टॉप डैम निर्माण से आने वाले समय में सिंचाई और पर्यटन दोनों को फायदा मिलेगा। खेती किसानी की बात करें तो खरीफ 2026 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। जिले भर में किसान चौपाले लगाई जा रही है। कृषि वैज्ञानिक किसानों को प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, उन्नत बीज और आधुनिक तकनीकों की जानकारी दे रहे हैं। गांव-गांव कृषि रथ भी पहुंच रहे हैं, जो किसानों को नई योजनाओं और खेती के नए तरीकों से अवगत करा रहे हैं। दूसरी तरफ खाद की उपलब्धता को लेकर भी प्रशासन सक्रिय है। किसानों को ई विकास प्रणाली के जरिए खाद वितरण किया जा रहा है। किसान सुबह 7 बजे से ई टोकन बुक कर अपनी जरूरत के अनुसार खाद ले सकते हैं। कृषि विभाग ने किसानों से डीएपी के बजाय एनपीके और नैनो उर्वरकों के उपयोग की अपील भी की है। गेहूं खरीदी का काम भी अब अंतिम दौर में पहुंच गया है। जिले में अब तक 67,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदी की जा चुकी है। किसानों के लिए 176 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मंजूर हुई है और अधिकांश भुगतान सीधे खातों में पहुंच चुका है। अब बात स्वास्थ्य की। जिले में 25 से 31 मई तक

0: कृषि विभाग ने किसानों से डीएपी के बजाय एनपीके और नैनो उर्वरकों के उपयोग की अपील भी की है। गेहूं खरीदी का काम भी अब अंतिम दौर में पहुंच गया है। जिले में अब तक 67,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदी की जा चुकी है। किसानों के लिए 176 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मंजूर हुई है और अधिकांश भुगतान सीधे खातों में पहुंच चुका है। अब बात स्वास्थ्य की। जिले में 25 से 31 मई तक विश्व तंबाकू निषेध सप्ताह मनाया जा रहा है। स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों में जागरूकता कार्यक्रम, रैलियां और शपथ अभियान चल रहे हैं। लोगों को तंबाकू से होने वाले नुकसान और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में बताया जा रहा है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर बीनागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को डेंगू के लक्षण, बचाव और उपचार की जानकारी दी। इस दौरान लोगों से साफ सफाई रखने और पानी जमा नहीं होने देने की अपील भी की गई। वहीं भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने पर लोगों को दोपहर में घर से कम निकलने, ज्यादा पानी पीने और सिर ढककर बाहर जाने की सलाह दी गई है। पेयजल समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष विभाग घर घर योग हर व्यक्ति निरोग अभियान चला रहा है। जिले के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में रोज योग शिविर लगाए जा रहे हैं। ऑनलाइन लाइव योग सत्रों के जरिए भी लोगों को योग से जोड़ा जा रहा है। विशेष जनजाति समूहों यानी PVTG परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, किसान सम्मान निधि और उज्ज्वला योजना जैसी सुविधाएं पात्र लोगों तक पहुंचाई जा रही है। गुना जिला अब अपनी सांस्कृतिक धरोहर को भी सहेजने में जुट गया है। भारत सरकार के ज्ञान भारतम मिशन के तहत जिले की पुरानी पांडुलिपियों और दुर्लभ हस्तलिखित दस्तावेजों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। 70 साल से ज्यादा पुराने दस्तावेजों को मोबाइल ऐप के जरिए सुरक्षित किया जा रहा है। न्याय व्यवस्था की बात करें तो नेशनल लोक अदालत में जिले भर के 1,382 मामलों का आपसी समझौते से निपटारा हुआ। इसमें करीब 2,800 लोगों को फायदा मिला और वर्षों पुराने विवाद खत्म हुए। जिले में शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छी पहल हुई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कार्य विभाग ने उत्कृष्ट छात्रावासों में पढ़ने वाले कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए विशेष कोचिंग शुरू करने की तैयारी की है। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और कंप्यूटर जैसे विषयों की पढ़ाई कराई जाएगी ताकि बच्चों को बेहतर मार्गदर्शन मिल सके। इसी तरह आदिवासी वित्त विकास निगम द्वारा भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना और टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत आवेदन मांगे गए हैं। इन योजनाओं के जरिए युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक ऋण और आर्थिक सहायता दी जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पद के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए हैं। बाल मनोविज्ञान, शिक्षा, कानून और सामाजिक कार्य से जुड़े अनुभवी लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। गुना जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: चिट्ठी आलेख था रोहित गोस्वामी का, वाचन स्वर थे नवनीत चौबे की। ये आकाशवाणी भोपाल।
2: अभी आप सुन रही थी गुना जिले की चिट्ठी। FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत के साथ मैं हूं आपका रेडियो मित्र महेंद्र अमूले। कार्यक्रम की पहली पेशकश है फिल्म कर्ज से। आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं।

घटना। यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली, किसी ने जान

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी
3: कार्यक्रम फिल्म संगीत में आइए सुनते हैं दिल तेरा आशिक फिल्म का गीत। आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की, संगीत नदीम श्रवण ने दिया है और शब्द रचना समीर की है।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: कार्यक्रम में अगली पेशकश है फिल्म हीरो से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मनहर उदास की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीत के बोल आनंद बख्शी ने दिए हैं।

और आइए कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं मुद्दत फिल्म का गीत। आवाजें हैं आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की, संगीत बप्पी लहरी का है और शब्द रचना इंदिवर की है।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी उमंग।

0: हो जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार जो हमें छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल जी ने भेजा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
3: जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
3: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
1: और भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, श्रीमती सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा।
3: ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा।
1: और जीएल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और सतीश अनेजा जी का।
3: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
1: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध सुंदर फूल ट्यूलिप की और जाना था इसकी रोचक बातों को।
3: जी,
1: खास तौर से ये जाना था कि ट्यूलिप नाम कहाँ से आया और ये भी कि ट्यूलिप के फूल अक्सर गंधहीन होते हैं।
3: आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे फूल की जिसकी सुगंध का जवाब नहीं है। ये भी

0: जो प्रसिद्ध फूल है, जिसे अंग्रेजी में ट्यूबरोज कहा जाता है। अजीत जी, इस फूल का नाम हिंदी में भी बहुत सुंदर है।
1: क्या नाम है भला?
0: रजनीगंधा।
1: रजनीगंधा बहुत ही खूबसूरत नाम है विमलेश जी, लेकिन जरा इस शब्द पर विचार तो कर लें। रजनीगंधा ये दो शब्दों के संयोग से बना है ना, रजनी और गंधा।
0: जी, चलिए श्रोताओं, इसे और गहराई से समझते हैं। रजनी यानी रात और रात्रि, और गंधा यानी सुगंधित। इस फूल की रोचक बात यह है कि रात में सबसे अधिक महकता है।
1: जी, दिन की तुलना में इसकी खुशबू रात को कई गुना बढ़ जाती है, इसलिए इस फूल को क्वीन ऑफ द नाइट फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है। देश विदेश में विशेष अवसरों पर, जैसे
0: विवाह, सजावट, पूजा और स्वागत समारोह में इसकी मालाएं और पुष्प गुच्छ यानी बुके बहुत अधिक प्रचलित हैं। अजीत जी, अब जरा ये तो बताइए कि मूल रूप से ये फूल कहाँ का है, यानी इसकी व्युत्पत्ति किस देश की मानी जाती है?
1: विमलेश जी, जहाँ तक इसकी व्युत्पत्ति का प्रश्न है, इस व्युत्पत्ति मेक्सिको की मानी जाती है, जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है।
0: जी, मूल रूप से मेक्सिको का फूल माना जाता है, लेकिन आज ये भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में उगाया जाता है। भारत में इसकी खेती पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में की जाती है। बता दें कि रजनीगंधा फूल भी ट्यूलिप की तरह बीज से नहीं, लेकिन कंद से उगाया जाता है। वैसे बीज बन सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए कंद का ही उपयोग किया जाता है।
1: लेकिन विमलेश जी, मेरे मन में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वो ये है कि रजनीगंधा फूल की सुगंध रात में ही क्यों अधिक होती है? कोई वैज्ञानिक कारण तो होगा?
0: अजीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने।
1: जी,
0: बात यह है कि प्रकृति ने इस फूल को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए विशेष रूप से बनाया है, इसलिए रात के समय इसका सुगंधित तेल अधिक मात्रा में निकलता है। इसका उद्देश्य है रात में सक्रिय रहने वाले कीटों और पतंगों को आकर्षित करना।
1: वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है।
0: इतना ही नहीं, एक कारण और भी है। अपने सफेद रंग के कारण ये अंधेरे में भी चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण रात्रि के कीट इसे आसानी से पहचान लेते हैं। एक बात और है।
1: भला वो और क्या बात है?
0: दिन की गर्मी से सुगंध जल्दी उड़ जाती है, लेकिन रात की ठंडी और नम हवा खुशबू को दूर तक फैलाती है।
1: जी, ये बात तो है।
0: इसकी तेज खुशबू रात में परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करती है।
1: बड़ी सुंदर जानकारी दी आपने विमलेश जी। कई संस्कृतियों में श्रोताओं, इसे शांति और प्रेम का प्रतीक भी माना गया है।
0: जी
1: विमलेश जी, एक और सुंदर जानकारी श्रोताओं से साझा करना चाहता हूँ कि इत्र या परफ्यूम उद्योग में रजनीगंधा फूल का बड़ा महत्व है।
0: जी,
1: इसके तेल से अत्यंत महंगा परफ्यूम तैयार किया जाता है। रजनीगंधा परफ्यूम अंतर्राष्ट्रीय इत्र उद्योग में बहुत लोकप्रिय है।
0: जी अजीत जी, रजनीगंधा की खुशबू इतनी प्रभावशाली होती है कि कुछ लोग इसे मन के तनाव को कम करने वाला प्राकृतिक सुगंध स्रोत भी मानते हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी खुशबू से वातावरण को महकाने वाले फूल रजनीगंधा की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत प्रस्तुतिकरण है, जिसमें पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह।
2: इस कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह की वीर गाथा को विस्तार से बताया गया है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया था।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रकाशित परम वीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित पुस्तक वीर गाथा पर आधारित है।
1: अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। साथियों, ये पंक्तियां महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं, जो भारत भूमि के महात्म्य को बड़ी सजीवता से उजागर करती हैं।
2: सच है कि भारत की मधुमय माटी ने ऐसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, जिनकी वीरता की चर्चा जितनी की जाए कम है। आज हम एक ऐसे ही वीर सैनिक की चर्चा करेंगे, जिसने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया और इस युद्ध में भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
1: भारत माता के वो शूरवीर हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। जिन्हें भारत पाकिस्तान के मध्य लड़े जा रहे कारगिल युद्ध में भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: कहते हैं कि योद्धा इतिहास को नहीं चुनते, लेकिन स्वयं इतिहास योद्धाओं का चयन करता है और उन्हें अपने स्वर्णिम पन्नों में गौरवशाली स्थान देता है। योगेंद्र सिंह यादव एक ऐसे ही इतिहास द्वारा चुने हुए पात्र हैं, जिन पर देश को हमेशा गर्व रहेगा।
1: योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहीर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में पूरी की और आगे की पढ़ाई सन्नोटा श्री कृष्ण कॉलेज बुलंदशहर से पूरी की।
2: उनके पिता रामकरण सिंह 11 कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही थे और 1965 व 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने बड़ी सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो अपने पिता से बहुत प्रभावित थे और प्रतीक्षा करते थे कि कब पिताजी छुट्टी पर घर आएं और वो उनसे भारतीय सेना की वीरता की कहानियां सुनें।
1: एक दिन की बात है, वो घर पर ही थे। उनके बड़े भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे और माता घर पर ही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई।
3: बेटा योगेंद्र, जरा देखो तो कौन आया है। अरे कौन है?
4: बहन जी, डाकिया।
3: अच्छा, खोलते हैं भैया।
5: जी कहिए। आपके भाई के नाम एक जरूरी चिट्ठी आई है रजिस्ट्री से। वो घर में है क्या?
6: नहीं, वो तो भैया तो अभी घर पर नहीं है।
5: तो कोई बड़ा है घर में?
6: हाँ, घर पर माता जी है ना।
5: जी बुलाइए।
7: माँ।
3: हाँ।
7: भैया के नाम से रजिस्ट्री आई है।
3: अच्छा, आ रही हूँ। जी कहिए।
5: ये जरूरी सरकारी चिट्ठी आई है आपके बेटे जितेंद्र के नाम। ये लीजिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए।
3: अरे, ये चिट्ठी तो फौज के दफ्तर से आई है, जरा देखू तो।
7: माँ, माँ।
8: लो माँ, मैं आ गया। आपने जो काम दिया था ना, वो भी हो गया।
3: अच्छा क्या बेटा, तू आ गया। ले बेटा, देख तो जरा, तेरे नाम ये चिट्ठी आई है।
8: चिट्ठी? अरे वाह, ये तो सेना के दफ्तर से आई हुई लगती है माँ, जरा देखू तो।
3: हाँ।
8: माँ, माँ, माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ, सेना में मेरा चयन हो गया है। मुझे कहा गया है कि मैं 1 महीने के अंदर क्षेत्रीय सेना कार्यालय में रिपोर्ट करूं।
7: अरे वाह,
3: बधाई हो बेटा, बधाई हो।
7: ऐसे नहीं, बधाई हो भैया, बधाई हो भैया।

0: अरे बेटा, अब तो ये घर फौजी का नहीं, फौजियों का हो गया है, फौजियों का। तुम्हारे पिता फौज में हैं और अब तुम भी फौज में।
1: हाँ माँ, और माँ इन दोनों के बाद मैं भी फौज में ही जाऊंगा। इस गांव में एक ही घर से तीन तीन फौजी होंगे।
0: हाँ हाँ, जरूर बेटा जरूर, ये तो बड़े गर्व की बात होगी हमारे लिए।
1: ऐसे नहीं, आज तो घर में गुलाब जामुन बनेगा, अच्छा। रसगुल्ला बनेगा, बर्फी मिलेगी खाने को।
2: तो साथियों, बालक योगेंद्र जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, उनके मन में सेना में जाने का चाव बढ़ता जा रहा था। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने सेना में अर्जी दी और पहले प्रयास में ही महज 16 वर्ष की आयु में उन्हें ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की एक महत्वपूर्ण प्लाटून में शामिल कर लिया गया। इस प्लाटून का नाम था घातक प्लाटून।
3: फिर आया 1999 का साल। कश्मीर के कारगिल में स्थितियां बिगड़ने लगी। मई महीने में एक स्थानीय चरवाहे द्वारा भारतीय सेना को सूचना दी गई कि कारगिल और आसपास के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया है।
2: सेना ने जब इस सूचना की जांच की तो पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उनका उद्देश्य था सियाचिन और कारगिल क्षेत्र से गुजरने वाले श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर कब्जा करके शेष भारत को कश्मीर के इस महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र से काट देना।
3: अब युद्ध अवश्यम्भावी हो गया था। 3 जुलाई को भारतीय सेना ने युद्ध की घोषणा की और बड़े पैमाने पर सैन्य कार्यवाही आरंभ कर दी। भारतीय सेना का मकसद था कारगिल, मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों से पाकिस्तानी चौकियों को हटाना। भारतीय वायुसेना को भी चौकस कर दिया गया कि वो हवाई हमलों को अंजाम दे सकें।
2: सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी क्योंकि उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थीं। उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार, मिसाइल, रॉकेट और विमान भेदी तोपें थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने हर जगह बारूदी सुरंगें बिछा रखी थी।
3: इसके विपरीत भारतीय सेना की स्थिति घाटियों में होने की वजह से कमजोर थी क्योंकि ऊंची जगहों से पाकिस्तानी भारतीय सेना को बड़ी आसानी से निशाना बना सकते थे। भारतीय सेना के लिए ऐसी स्थिति में युद्ध करना बहुत कठिन था, इसलिए पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण करने के लिए अधिकांश हमलों में रात का समय चुना गया, जिस समय तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है।
2: ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, कुमाऊं रेजिमेंट की घातक के नाम से जानी जाने वाली कमांडो प्लाटून का हिस्सा थे। दिनांक 4 जुलाई 1999। उनकी कमांडो प्लाटून को टाइगर हिल पर मोर्चा बांधे हुए दुश्मनों की 3 चौकियों पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। टाइगर हिल पर दुश्मनों की चौकियां लगभग 1,000 फुट की ऊंचाई पर थीं।
3: चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़। दुश्मन के बंकरों तक पहुंचने के लिए उनके पास रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उनकी प्लाटून ने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया।
4: साथियों, बहुत संभल के, अभी भी सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत है, इसलिए हम दुश्मनों द्वारा देखे जा सकते हैं। कहीं उन्हें पता चल गया तो हम सीधे उनके निशाने पर आ सकते हैं।
5: जी साहब, जी साहब।
4: चलो, हम पहाड़ी ढाल की दूसरी तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। चलो साथियों।
3: वो धीरे धीरे बर्फ की खड़ी ढाल पर चढ़ ही रहे थे कि तभी दुर्भाग्यवश शत्रु ने उन्हें देख लिया और प्लाटून पर रॉकेट और मशीन गनों से उन पर आक्रमण कर दिया।

0: हमला इतना जबरदस्त था कि कमांडर और दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को भी गले और कंधे में 3 गोलियां लगी और वो बुरी तरह से घायल हो गए। अभी भी 60 फुट की चढ़ाई बाकी थी। अब उन्हें आभास हो गया था कि यही समय है देश के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण की भावना को प्रकट करने का। यही समय है मातृभूमि के प्रति अपना कर्ज और फर्ज अदा करने का। दृढ़ निश्चय के साथ वो ऊपर चढ़ते चले गए।
0: शेष 60 फुट चढ़कर वो टाइगर हिल के शीर्ष पर पहुंचे और रेंगते हुए पहले बंकर में घुस गए और हथगोला फेंककर तुरंत 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
2: कालिका माता की जय।
1: दुश्मन इस आकस्मिक आक्रमण से स्तब्ध रह गया। अब वो दूसरे बंकर की ओर बढ़े और सीधे बंकर में घुस गए। यहां हाथ से हाथ का आमने सामने का युद्ध हुआ। यहां भी राइफल की बट और हाथ गोलों से उन्होंने 4 और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया।
0: घुटने में ग्रेनेड लगने से घायल और कुल मिलाकर अपने शरीर में 15 गोलियां लगने के बाद भी यहां तक कि वो खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थे। इस हालत में भी ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने हिम्मत नहीं हारी और दुश्मनों से अपूर्व शौर्य के साथ लड़ते रहे।

0: इतने में ग्रेनेडियर योगेंद्र के साथी भी शिखर पर पहुंच गए थे। फिर तो जैसे वहां तांडव नृत्य होने लगा। भर के भीषण युद्ध के बाद प्लाटून टाइगर हिल पर कब्जा करने में सफल रही और वहां भारत का परचम लहरा दिया।
1: भारत माता की जय!
2: भारत माता की जय!
0: ये शानदार विजय ग्रेनेडियर योगेंद्र के बिना संभव नहीं थी। इस तरह से ऑपरेशन टाइगर हिल समाप्त हुआ। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह को टाइगर ऑफ टाइगर हिल की संज्ञा दी गई।
3: उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित करने की घोषणा हुई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बाद में पता चला कि वो जीवित हैं और सेना के एक अस्पताल में जख्मों के भरने और स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल टाइगर हिल अभियान में एक और सैनिक शहीद हुए थे, उनका भी नाम योगेंद्र सिंह यादव था। इन शहीद योगेंद्र सिंह यादव को सेना मेडल से सम्मानित किया गया।
0: बाद में तत्कालीन सेना अध्यक्ष वेद प्रकाश मलिक ने आर्मी अस्पताल का दौरा करके ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव से मुलाकात की और उन्हें देश के सबसे

0: बड़े सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने की सूचना दी। मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर यादव सबसे कम उम्र के सैनिक हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ।
1: योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान यश भारती से भी सम्मानित किया है। देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस असीम शौर्य के दृढ़ निश्चयी समर नायक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है।
2: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और RS रघु। ध्वन्यांकन विकास सांगवान और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग जगबंधु जाना। आलेख अजीत होरो। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। FM बैंड 101.3 MHz पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम।

Таранг. विविध भारती से लीजिए पेश है प्रोग्राम रंग तरंग। कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

कैलाश खेर का लिखा ये गीत था झूमेरे एल्बम से। गीत और संगीत थे कैलाश खेर के और आवाज भी थी कैलाश खेर की। आप सुन रहे हैं रंग तरंग।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना करूं।

मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में अमर अकबर एंथनी फिल्म की ये कव्वाली आपने सुनी। आनंद बख्शी के लिखी ये कव्वाली थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।

0: रियाज रहमान सागर का लिखा ये गीत आपने सुना अदनान सामी और आशा भोसले की आवाजों में। एल्बम थी कभी तो नजर मिलाओ।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो
4: कुर्बानी। 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
5: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
4: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
6: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
4: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
6: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
4: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: बंटवारा फिल्म का ये गीत था अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति का गाया, हसन कमाल के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

बेगम अख्तर की आवाज में ये पारंपरिक गीत आप सुन रहे थे। रंग तरंग कार्यक्रम श्रोताओ यहीं संपन्न होता है।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: ये विविध भारती है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल से अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया।
5: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में बनाना होगा।
4: इससे पहले कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। गंगटोक के सिक्किम विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने ये घोषणा की। केंद्र द्वारा उल्लास पहल के अंतर्गत ये घोषणा की गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गृहमंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृहमंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्यूषा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। बिहार के

0: भागलपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में एक एक मौत हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। आज ईद उल अजहा का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद को सुचारू रूप से मनाने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय की प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज न अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 2 दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, इस प्रोग्राम के लिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में आपकी कसम फिल्म का गीत आपने सुना। आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में ये दो गाना मेरे हमसफर फिल्म का था। आनंद बख्शी का लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य वो उनकी जवानी जो

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: इस समय विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: ओपिनियत का ये सुरीला संगीत था मंजूर सुल्तानपुरी के बोल, मोहम्मद रफी, आशा भोसले की आवाजें, फिर वही दिल लाया हूं इस फिल्म का गीत था। और इसके पहले आपने सुना जानवर फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल थे शंकर जयकिशन की तर्ज थी।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, आनंद बख्शी का लिखा गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर की आवाजें थी, फिल्म थी फर्ज।
1: क्या हुआ?
2: हाय, गम का फसाना बन गया अच्छा।
1: अच्छा जी।
2: एक बहाना बन गया अच्छा।
1: अच्छा।

मधुवी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में ये दो गाना आपने सुना अनजाना फिल्म से। आनंद बख्शी के बोल थे। कार्यक्रम यादों की महफिल यहीं संपन्न हुआ।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम सुरीला सफर। आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। अपने सभी श्रोताओं का हम इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओ, आजकल जरूर हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं वो पहाड़ों का रुख कर चुके होंगे। बहुत मुमकिन है कि आप रास्ते में विविध भारती भी सुन रहे हों, तो चलिए हम भी आपके साथ हो लेते हैं। विविध भारती के साथ सुरीले सफर में आज चलते हैं हम और आप साथ साथ। यूं कह लें कि गर्मियों में पहाड़ों का जो मौसम होता है श्रोताओ, आशिकाना होता है। छोटी छोटी सी पगडंडियां ऊंचे आसमान से बातें करते, देवदार के पेड़, खुला खुला नीला आसमान, एक अलग वादियों में खो जाते हैं हम सभी कहीं। और तमाम खुशियां जो हम अपने साथ कर लेते हैं, थोड़े से समय में हम अपनी मुट्ठी में इन खुशियों को भर लेना चाहते हैं। ऐसे में गीतों का साथ हो तो क्या कहने। इबारत की जहां तक बात है श्रोताओं, जो टेक्स्ट हमने इस प्रोग्राम के लिए आपको फेसबुक पेज पर दिया, उसे हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने देखा होगा प्रोग्राम में, तो फिर आप भी शामिल हो जाइए। हमारे नए श्रोताओं के लिए हम बता देते हैं www.facebook.com/vbsmumbai के इस पेज पर लॉगिन कर आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स हम तक भेज सकते हैं। और अब आज का टेक्स्ट या पैसेज, जो भी आप कहें या इबारत कहें, उसे आपके लिए पढ़ देते हैं एक बार फिर। गर्मियों के मौसम में पहाड़ों का हुस्न बेमिसाल होता है। राहत और सुकून से भरे रास्ते पुकारते चले जाते हैं। हर चेहरा यहाँ चांद है, तो कहीं चांद से रोशन चेहरे भी हैं। सादगी से भरपूर जीवन और यहाँ के लोगों की मासूम मुस्कुराहट। मोहब्बत नहीं तो फिर क्या है। धुंध का पर्दा हटा तो पर्वत के पीछे गांव का नजारा था, जहां इस मौसम में सैलानी खूब आया करते हैं। हमारे गांव भी कोई जरूर आएगा और कहेगा प्रीत तोरी सांची। परदेसी ने फल, कपड़े और टोकरियां भी खरीदी। किसी सपने

उनकी रानी के जैसे ये बर्फीले प्रदेश और यहाँ के लोग डोरी बुनकर प्यार बांध लेते हैं। परदेसी एक दिन चले जाते हैं एक और मुलाकात का वादा करके। तो ये थी आज की इबारत और बहुत सारे श्रोताओं ने हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स भी भेजे हैं, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हमने देखी हैं, साथ ही आपने जो गीत चुने हैं वो भी बड़े ही मुकम्मल हैं आज के कार्यक्रम के लिए। तो चलिए देखते हैं हमारे और भी श्रोता इन गीतों के बारे में क्या लिखते हैं।

राम तेरी गंगा मैली, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थीं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की। श्रोताओं, पहाड़ों की सैर को लेकर आप अपनी बातें, आप अपनी यादें, या फिर अगर इस बार भी आप गए हैं घूमने के लिए तो वो बातें भी हमसे साझा कर सकते हैं। और ये तो बताइए कि पहाड़ों की कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगती है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि नमस्कार, आज की इबारत पर्वतीय क्षेत्रों के नैसर्गिक सौंदर्य का विहंगम चित्रण है। सफेद बर्फीली चादरों में सिमटी धुंध के नेपथ्य में लुका छिपी करते पर्वत ऐसे प्रतीत होते हैं मानो धुंध के घूंघट में खूबसूरत हुस्न शर्माते हुए अपने पर इतरा रहा हो। इबारत इन गर्मियों में सैलानियों और प्रेमियों के दिल को सुकून और शीतलता प्रदान करती है, यानी आज की इबारत के बारे में इन्होंने लिखा है। और बेकरारी से इस सफर का इंतजार भी है। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जो ये गद्य है, इबारत से पहाड़ों के हुस्न के साथ साथ परदेसी की बात जो है इस पर है, परिदृश्य के प्रणयात्मक भावनाओं वाले माहौल का एक अच्छा चित्रण खींचा गया है। और इस दृष्टिकोण से ये इबारत इस ग्रीष्म ऋतु के सुख का चित्रण करते रहने में सक्षम है, किंतु वे परदेसी जो परदेश जाने में असमर्थ हैं उनके लिए तो एक उपहार है ये गद्य, किंतु जो असमर्थ हैं उनके लिए अपनी सुरीली धड़कन के सुरीले धुन वाले गीत ही कुछ एक घंटे के लिए इस ग्रीष्म ऋतु में शीतल बयार तो जरूर बहाएंगे। और भी इन्होंने कुछ कुछ बातें लिखी हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के गद्यांश बर्फीले पहाड़ों के हुस्न की बात करते हुए जहां पर्वती गांव के लोगों के सादगी और चेहरे की मुस्कान को उजागर करते हैं, साथ ही में इस गांव की खूबसूरती और वहां आने वाले प्रवासी परदेसी को मिलने वाली ताजगी भरे मौसम को महसूस करने की बात भी कर रहा है। ऐसी ताजगी की अनुभूति हाल ही में खुद मुझे हुई जब पिछले हफ्ते नैनीताल की वादियों में घूमने गया था और पहाड़ों जंगलों घुमावदार रास्ते के बेहतरीन नज़ारा देखकर मन सुकून से भर गया। तो ये तो बताइए कि ये जो रास्ते हैं या ये जो वादियां हैं जहां आप सभी घूमने जाते हैं, हमारे बहुत सारे श्रोता घूमने जाते हैं, तो इनमें बड़े छोटे छोटे से गांव होते हैं श्रोताओं, जो पर्वतों की जो जगह हैं वहां पर स्थित होते हैं, नेपथ्य में या कह सकते हैं थोड़ा पीछे की तरफ होते हैं। तो ऐसे कोई गांव जहां आप घूमने गए जो कुछ खास था उसके बारे में आप हमें लिख सकते हैं जरूर। और आपको बताना है कि गीतकार और संगीतकार इस गीत में कौन थे जो गीत अभी आपने सुना। और इस गीत में आपको ये बताना है कि ये वृक्ष जो हैं वो कौन से हैं।

विश्वजीत और आशा पारेख पर फिल्माया गया ये गीत था मेरे सनम फिल्म का। मोहम्मद रफी की आवाज़ में मंजूर सुल्तानपुरी के बोल थे, उपेन अय्यर का संगीत था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने पिछले गीत के लिए लिखा है कि गीत और संगीत रविंद्र जैन के थे। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि गर्मियों का ये मौसम चाहे कितना भी तपन से भरा हो, मगर हम सबके मन में कभी न कभी बचपन की वो गर्मियां बसी रहती हैं। इन भरी गर्मियों में पहाड़ का हुस्न देखा है कभी, जब सारी दुनिया सूरज के ताप से हैरान परेशान होती रहती है, वो अपनी जगह पर अडिग अचल खड़ा रहता है। यही हुस्न है पहाड़ों का, इसमें बड़ी गहराई छुपी है। खेत में फसलों के बीच बनी पगडंडी से लगा गांव और वहां के लोगों की सादगी, सब कुछ मनमोहक। स्मृति का वो छोटा सा आंचल जहां पहाड़ है, गांव है और कुछ ऐसी ही बातों की यादों में आज भी मन डूबा रहता है, किसी परदेसी की याद में। जी हाँ, ऐसा तो है श्रोताओं। और जब आपने इन जगहों की बात की है तो एक बात आप जरूर बताएं कि क्या पहाड़ों की सैर जरूरी है या फिर कहीं कभी कभी घूमना फिरना जरूरी है? अगर है तो क्यों है? और आज के कार्यक्रम में जो गीत हमने सजाए हैं उसमें एक बड़े प्यारे से एक गीत है, उसमें बड़े प्यारे से एक गांव का नाम आता है जो सर्द वादियों में है। तो उस गांव को अगर आप पहचान सकें तो क्या ही बात है। और आपको बताना है कि ये जो गीत आपको हम सुनवा रहे हैं इसमें एक खास तरह की नाव है, कश्मीर में इसे क्या कहते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि प्रकृति का सानिध्य, हरी भरी पहाड़ियां और वहां का सादगी भरा मासूम सा मोहक लोक जीवन, उन लोगों की छोटी छोटी वाजिब इच्छाएं, मनोकामनाएं, मेहमान नवाजी करते करते प्यार में पूरी तरह समर्पित हो जाना, परदेसियों से दिल के रिश्ते जोड़ लेना, ऐसी दिलकश बातों का सुंदर वर्णन इस परिच्छेद में किया गया है जो इन गांव के लोगों की तरह मन को मोह लेता है। तो आपका मन किसने मोह लिया श्रोताओं, जब आप गए ऐसे किसी जगह पर घूमने के लिए? और हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि रेडियो की हर शय का इतना ही फसाना है, एक विविध भारती सुनना है, दूसरों को सुनाना है।

एसएच बिहारी के बोल ओपी नैयर का संगीत, काश्मीर की कली फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। ये जो छोटी सी नाव दिखाई देती है जिसमें बहुत सारे फूल होते हैं, श्रोताओं हमने आपसे पूछा कि इस नाव को क्या कहते हैं, क्योंकि कश्मीर की बोलचाल की भाषा में इस नाव को कुछ अलग ही कहते हैं, यह आपको बताना है। और कश्मीर के बड़े सारे सुंदर सुंदर जो चीजें होती हैं, बहुत सारी जो हाथ की बुनी हुई होती हैं, क्या आपने उनमें से कोई चीज खरीदी है, या ऐसी जगहों का यानी पहाड़ी अंचलों का कोई मेला आपने देखा है। कुछ एक यहाँ के पारंपरिक पहनावे होते हैं, जैसे केदारनाथ की सुंदर घाटियों की अगर हम बात करें तो वहाँ कुछ गांवों में लवा पगड़ू या फिर ट्रेडिशनल ज्वेलरीज की अगर बात करें तो बुलाक गुलबंद, तो इस तरह की कोई चीज़ क्या आपने इन जगहों से कभी खरीदी है। वैसे हमें खरीदना तो ज़रूर चाहिए क्योंकि ये चीज़ें हाथ से बनी हुई होती हैं, और इन चीज़ों को खरीदने से हमारे दिल को एक खुशी तो मिलती ही है, साथ ही साथ यहाँ के लोगों को जो रोज़गार है वो भी मिलता है, क्योंकि ये चीज़ें बनाना इनका एक घर का कह सकते हैं कि पारंपरिक रिवाज सा हो जाता है, जो इनका इनके जीविकोपार्जन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक श्रोता लिखती हैं कि आज मौसम पहाड़ों चांद रास्ते परदेसी बर्फीले आदि शब्दों की झड़ी लगने वाली है, और कुछ गीत भी इन्होंने सुझाए हैं बताए हैं। और एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि पहाड़ की प्रकृति की सबसे सुंदर कृतियों में से एक है ऊंचे ऊंचे पर्वत, वहां की हरियाली, झरने, बर्फ से ढकी चोटियां और शुद्ध हवा मन को शांति और आनंद देती हैं। पहाड़ों पर सूर्योदय और सूर्यास्त का भी सौंदर्य अद्भुत होता है। जलवायु संतुलन में भी पहाड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अधिकतर नदियां पहाड़ों से ही निकलती हैं, पर्यटन के लिए भी पहाड़ों का बहुत महत्व है। भाग दौड़ वाली जिंदगी से दूर सुकून के दो पल पहाड़ों के संग हमें रिचार्ज कर देते हैं। ये बिल्कुल सही है श्रोताओं, और वहां पर बड़े अच्छे अच्छे खेल भी होते हैं जिनमें हम अक्सर भाग लिया करते हैं, तो ऐसे खेल भी क्या आपने खेले हैं तो आप बता सकते हैं। स्की वगैरह जो होता है वो पहाड़ों का बड़ा ही प्रसिद्ध खेल है, और कुछ एक बाग बगीचे होते हैं जो बड़े सुंदर होते हैं, जहां फूल बहुत ही अलग तरीके के होते हैं, तो वो भी आपने देखे हैं तो वो आप हमें लिख सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है, प्रकृति के नैसर्गिक रूपों का स्वाद चखना हो तो एक याद के रूप में संजोना चाहते हैं आप अगर, तो आम शहरी जिंदगी से बाहर निकल किसी भी पहाड़ पर सैर करना चाहिए। पहाड़ों पर कहीं आपको बर्फ की गिरते फाहों की ठंडक मिलेगी, शुद्ध हवा जो ऊंचे ऊंचे पेड़ों के पत्तों से एक भीनी सी खुशबू लिए आपको ऐसी शीतलता प्रदान करती है, मन मस्ती से झूमने लगता है। तो आप ये बताइए कि जब आपने पेड़ों की बात करी है तो ये ठंडे प्रदेश यानी अगर खास हम कश्मीर की बात करें तो यहाँ एक बड़ा ही सुंदर सा पेड़ होता है जिसके पत्ते बड़े मशहूर हैं, क्योंकि ये पत्ते मौसम के हिसाब से रंग बदलते हैं श्रोताओं, तो इन पत्तों के बारे में बताइए। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने शिकारा लिखा है जो कश्मीर की खास नाव है, और एक और श्रोता लिखते हैं कि गर्मियों में ठंडे और बर्फीले पहाड़ की सैर मानसिक शांति और सुकून के लिए बेहतरीन होती है, ताजी हवा, चांदनी रातें, परदेसियों से मिलना।

जॉय मुखर्जी और साधना पर फिल्माया गया ये गीत आपने सुना एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज थी। एसएच बिहारी के बोलों को सुर में ढाला ओपी नैयर ने। वैसे हम आपसे पूछना चाहते थे कि संगीतकार के बारे में। जी हाँ, ये गीत जब सुनाई देते हैं श्रोताओं तो बड़े ही अच्छे लगते हैं, और ऐसा ही एक चित्रण हमारी ऐसे ही एक बात हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है। एक श्रोता लिखती है, गर्मियों में ठंडे और बर्फीले पहाड़ों की सैर मानसिक शांति और सुकून के लिए बेहतरीन होती है। ताजी हवा, चांदनी रातें, परदेसियों से मिलना, मोहक दृश्य, यकीनन सब कुछ अच्छे लगते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि ये विस्तृत पर्वत श्रृंखलाएं प्रकृति की एक अद्वितीय और मंत्रमुग्ध कर देने वाली कलाकृति है, जो अपनी विशालता, शांत वातावरण और अलौकिक दृश्यों से हर किसी के मन को असीम सुकून और आनंद से भर देती है। इन खूबसूरत पहाड़ों की ढलान घने देवदार, पाइन और ओक के पेड़ों से ढके रहते हैं, जो प्रकृति की मखमली हरी चादर जैसे दिखते हैं। साथ ही पहाड़ों के सीने को चीर कर निकलने वाले जलप्रपात और कलकल बहती हुई नदियां पहाड़ों के शांत वातावरण में एक मधुर और प्राकृतिक संगीत घोल देते हैं, जो भी यहां आता है बस यहीं का होकर रह जाता है। और अमीर खुसरो के बारे में भी इन्होंने लिखा है कि अगर फिरदौस बरवे जमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जी हाँ, ये कश्मीर के बारे में लिख रहे हैं। और एक श्रोता और लिखते हैं कि पिछली गर्मियों में मुझे हिमाचल प्रदेश के सुंदर पर्यटन स्थल खजियार जाने का अवसर मिला। चारों ओर फैली हरियाली, ऊंचे देवदार के पेड़ और ठंडी हवाएं मन को बहुत सुकून दे रही थी। वहां का सुंदर मैदान और छोटी झील देखने लायक थी। शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता ने मेरे मन को मोह लिया। खजियार की ये यात्रा मेरे जीवन की एक यादगार यात्रा

बन गई। आप ये एक बात बताएं श्रोताओं कि आपने इतनी जगहों पर घूमा है, आपने यहाँ की जो सुंदर वादियां हैं वो इसी तरह से रहें और प्रकृति की गोद में ऐसे ही रहें, ये हमें देखने में क्योंकि बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि ये साफ सुथरी रहती हैं, और ऐसी क्या आपने कोशिश की तो ये हमें जरूर बताएं, और कौन सी ऐसी जगह थी जो आपको बहुत अच्छी लगी। एक और श्रोता ने लिखा है, गर्मियों में पहाड़ों की खूबसूरती मन को सुकून देती है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि इस तपती हुई गर्मी में पहाड़ पर जाना बहुत अच्छा लगता है। एक और भी श्रोताओं के बहुत सारे कमेंट्स हैं श्रोताओं, हम शामिल करने की कोशिश करेंगे एक के बाद एक। आप यहाँ की फोटोग्राफी के बारे में कुछ अगर बताना चाहें तो जरूर बता सकते हैं।

नजर आते हैं और ये सेब का बगीचा है श्रोताओ, बड़ा ही सुंदर। और आप एक सवाल का अगर जवाब दे सकें कि कश्मीर में किस चीज की खेती सबसे ज्यादा होती है, तो इस सवाल का जवाब आपको देना है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बाजारों में चहल पहल बढ़ते ही रौनक दुगनी हो जाती है। जी हाँ, इन जगहों के जो बाजार होते हैं श्रोताओं, वो बहुत अलग होते हैं। दूर दराज से आए सैलानी यहाँ की बनी हाथ की कलाकृतियाँ, गर्म शॉल और मीठे पहाड़ी सेब बड़े चाव से खरीदते हैं। हर मोड़ पर मुस्कुराते चेहरे और उनकी मेहमान नवाजी अजनबियों को भी अपना बना लेती हैं। शाम ढलते ही जब पहाड़ों पर दीयों की तरह रोशनी जगमगाती है, तो एक सुहाना रूहानी जुड़ाव महसूस होता है। मुसाफिर यहाँ की अनमोल यादें और कभी न टूटने वाला स्नेह अपने दिल में समेट कर अगले साल फिर लौटने की कसम खाकर विदा लेते हैं। एक श्रोता और लिखते हैं कि पहाड़ों पर यही मौसम सबसे ज्यादा सुकून देता है। जो सर्दी का मौसम सा होता है, वो पहाड़ों पर शोरगुल बिल्कुल थम सा जाता है। आवाज़ आती है तो सिर्फ हवा, नदी के बहते पानी और कलरव करते पक्षियों की। पहाड़ी जीवन शैली सादगी में स्थिरता को सबक देती है। पहाड़ हमें बुलाते ही नहीं, वो पुकारते हैं। जो एक बार चला जाए वो बार बार वहाँ जाना चाहता है। बहुत सारे गीत भी इन्होंने लिखे हैं। और एक श्रोता लिखती हैं कि हिमालय की पीर पंजाल की बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां हो या अरावली की शांत प्राचीन पर्वतमालाएं, हर पहाड़ अपने भीतर अलग कहानी, अलग सुकून और अलग संगीत समेटे हुए है। गर्मियों के मौसम में पहाड़ों की सुंदरता अपने चरम पर होती है। बर्फ की चादर हटने के बाद हरी भरी वादियां, ठंडी और ताजा हवाएं और रास्तों पर पसरा सन्नाटा मन को असीम सुकून देता है। जब सुबह के समय पहाड़ों से धुंध का पर्दा हटता है, तो ढलानों पर बसे छोटे छोटे गांव और चमकती हुई बर्फीली चोटियां किसी जादुई सपने जैसी दिखाई देती हैं। यहाँ की सादगी, प्रकृति वैभव और पहाड़ों का शांत वातावरण मन मोह लेता है। पर्वत केवल धरती का श्रृंगार नहीं, बल्कि भावनाओं का वो संसार है जहाँ हर परदेसी अपना एक हिस्सा छोड़ आता है। आपने पीर पंजाल की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनकी बात करी है, तो लीजिए वहीं का गीत सुनिए।

महबूबा फिल्म का ये गीत था राजेश खन्ना और हेमा मालिनी पर फिल्माया गया है। श्रोताओं, आपने क्या इस गांव को देखा है? क्या ये गांव जिसका जिक्र हो रहा है वो सचमुच है हमारे देश में? अगर आप गए हैं या फिर अगर है तो आप हमें ज़रूर बताएं। और हमने आपसे पूछा था कि क्या आपको ऐसी जगहों पर फोटोग्राफी करना अच्छा लगता है, तो ये भी आप हमें बता सकते हैं, लेकिन फोटोग्राफी में बहुत सारी सावधानियां भी होनी चाहिए। और एक श्रोता ने लिखा है, आज की इबारत में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बर्फीली चादरों में सिमटे बर्फ की चादरें में सिमटी बर्फ की चादरें और हसीन वादियों पर फिल्माए गए गीतों को सुनकर इस तपती हुई गर्मी में मन को ठंडक पहुंचेगी। बर्फीले पहाड़ों में छिपी प्राकृतिक सुंदरता निश्चित रूप से मन को गहरा सुकून और शांति देती है। श्वेत बर्फ, साफ नीले आसमान और पहाड़ों के ऊपर से बहते झरनों का दृश्य और ठंडी हवाओं का झोंका शारीरिक और मानसिक थकान को स्वतः ही दूर कर देता है। और एक और श्रोता लिखते हैं, अब पहाड़ों पर गर्मी के मौसम में बर्फ का अभाव सा है। वहां अब ग्लोबल वार्मिंग से पहाड़ों की बर्फ पिघल रही है और पर्वतीय क्षेत्रों के तापमान जो हैं वो ज्यादा, इन्होंने कुछ लिखे हुए हैं। जी हाँ, इस बात का भी हम सबको ख्याल रखना चाहिए कि जब भी हम ऐसी जगहों पर घूमने जाएं तो यहाँ की सुंदरता को बिल्कुल बरकरार रखें, और ये तभी हो सकता है जब हम प्रकृति के साथ साथ चलें। और जिस गाँव का जिक्र है, वो गांव जो गीत हमने आपको सुनाया, उस गांव के बारे में आपको लिखना है कि क्या ये गांव सचमुच अस्तित्व में है, ये कौन सा गांव है जिसके बारे में गीत में बातें की जा रही थी। पहाड़ों की रानी किस शहर को कहते हैं श्रोताओं?

गीतकार आप बता दें इस गीत के, प्रोफेसर फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर आशा भोसले की आवाजों में। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत के शब्दों से जो गीत उभर कर आ रहे हैं उन्हें हमारे कई बंधुओं ने अपनी सूची में शामिल किया है। जिक्र जब पहाड़ों का हो तो मैं खुद ब खुद शामिल हो जाता हूँ, मुझे पहाड़ों पर जाना, वहां घूमना, वहां के लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। इस क्रम में मैंने भारत के सभी पहाड़ी पर्यटन स्थल का दौरा किया है और अपनी पसंद के हिसाब से अगर नामांकन करूं तो पहलगांव, शिलांग और खजिया बहुत सारी जगहों का इन्होंने जिक्र किया है। तो ऐसी जगहों पर जब आप जाते हैं तो आपको कौन सी बातें बहुत अच्छी लगती हैं श्रोताओ, या कोई यादगार चीज जो आपके साथ रह गई? कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम जाते हैं तो कुछ एक लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ताउम्र याद रहते हैं, तो ऐसा कोई आपके साथ वाकया हो तो आप जरूर बताएं। एक और श्रोता लिखते हैं कि सफर में पहाड़ों के बीच सुकून भरे वातावरण में मधुर गीतों के साथ चलने की तैयारी है और इन्होंने अपने अनुमान के हिसाब से बहुत सारे गीतों को लिखा है, तो देखते हैं कि और कौन से गीत आज शामिल होते हैं। वैसे ये गीत जो अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उस गीत का जो पिक्चराइजेशन है श्रोताओ, वो एक देश है वहाँ के बड़े ही पारंपरिक और प्राचीन बाजार का है। क्या आप कभी यहाँ गए हैं? क्या आपने इस बाजार को कभी देखा है, कभी कुछ खरीदा है?

हरे रामा हरे कृष्णा, इस फिल्म का ये गीत था लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज़ों में। और ये हमने पूछा था कि इसकी शूटिंग कहाँ की है श्रोताओं, तो ये भक्तपुर दरबार स्क्वायर है जो वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है। और ये जो जगह है ये काठमांडू नेपाल में है। तो क्या आप यहाँ गए हैं इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। और यहाँ की जो पारंपरिक चीज़ें हैं, यहाँ हाथ से बुनी हुई चीज़ों की बात अगर हम करें, या फिर वुड कार्विंग्स यानी कि जो लकड़ी के सामान होते हैं जिनमें नक्काशी की जाती है, जैसे कश्मीर में अखरोट की लकड़ी से अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी की जाती है। पॉटरीज भी यहाँ की जो है वो बहुत बिकती है। और भी खाने पीने की चीज़ों के लिए भी ये जगह बहुत प्रसिद्ध है। तो क्या आप इस जगह गए हैं तो हमें ज़रूर लिख भेजें। और ऐसे कुछ एक शहर हमारे देश में भी, कुछ एक नहीं बल्कि बहुत सारे शहर हैं। और अगर हम बात करें शिमले की बात करें, या फिर हम बात करें मसूरी की बात करें, कश्मीर की बात करें, या फिर हम केदारनाथ की घाटियों की बात करें, तो ऐसी जगहों के बारे में भी आप अपनी बातें हमसे बता सकते हैं। टॉय ट्रेन का सफर क्या आपने किया है हमें बताएं।

सुजीत कुमार और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे आराधना फिल्म से। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि 3 साल पहले जब कोंकण से वापस आ रहे थे तब ट्रेवलर फोड़ा घाट से आ रही थी, बीच में रुकी, सब बाहर निकले, हाय वो क्या नजारा था, बेमिसाल हरा भरा हुस्न सह्याद्री का वो पहाड़, उस पे वो बड़े बड़े पेड़, नीचे गहरी खाई। और एक और श्रोता ने लिखा है कि पहाड़ों नदी पर जब जाते हैं, घर से खाना लेकर जाते हैं, ये सब एक साथ मिलकर खाते हैं तो बड़ा मजा आता है और वहां की शीतलता मन को सुकून पहुंचाती है। ऐसी यादगार यात्राएं हमेशा याद रहती हैं। श्रोता, हमने आपसे चंबा नाम के गांव के बारे में पूछा था और उसके बारे में हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है। ये गांव पीर पंजाल की जो पर्वत श्रेणी है उसके बीच बसा हुआ है, बड़ा ही सुंदर सा गाँव है और महबूबा फिल्म की शूटिंग भी यहाँ पर हुई है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मसूरी को कहते हैं पहाड़ों की रानी, दूसरे चंबे का गांव भी है। वैसे चंबा घाटी में बहुत से छोटे छोटे गांव हैं लेकिन गाने में जिस गांव की बात है वो बड़े ही दुर्गम क्षेत्र में है। एक और श्रोता ने लिखा है कि शीतल शीतल पवन झकोरे, हरे भरे ऊंचे जो पेड़ों से सजी पहाड़ों की ऊंची चोटियां, उनसे लिपटा उदक से, पानी से यानी कि भरे काले बादल का मंडल, ये सुंदर दृश्य देखा है नीलगिरी पर्वत के उत्कमंड नगरी में, जी हाँ दो डब्बा बेटा शिखर का, जिसने हमेशा के लिए मेरे मन को मोह लिया है।

आप कलाकार बता दें श्रोताओं, और मेरे सनम फिल्म का जो सवाल हमने आपसे पूछा था वो गीत में जो किनारे वृक्ष दिखाई देते हैं देवदार के हैं, ऐसा हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है।

ये रात फिर ना आएगी इस फिल्म का गीत था विश्वजीत और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया। आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्रोताओं। कार्यक्रम सुरीला सफर यहीं

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में उमराव जान फिल्म की ये गजल।

आशा भोसले की ही आवाज में आइए अब सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है जीने की राह। इस गीत में आशा भोसले के साथ आप सुनेंगे उषा मंगेशकर और हेमलता की आवाज।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष पहल पर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सांची स्तूप के पवित्र अवशेष मंगोलिया भेजे जा रहे हैं। यह अवशेष भगवान बुद्ध के दो प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र और मौदगल्यायन से संबंधित है। इन अवशेषों को आज भोपाल के राजा भोज हवाई अड्डे से राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली लाया जाएगा। नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में कल इन्हें सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद 30 मई को भारतीय वायुसेना का एक विशेष विमान इन्हें मंगोलिया ले जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। केंद्र सरकार द्वारा सार्थक पीडीएस फेज टू के लिए 25,530 करोड़ रुपए मंजूर किए जाने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस योजना में एआई और आधुनिक तकनीक के जरिए राशन वितरण पहले से ज्यादा पारदर्शी और बेहतर होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में केंद्र, राज्य सरकारें, ICAR और कृषि संस्थान मिलकर आने वाले खरीफ सीजन की तैयारियों पर विचार कर रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि
1: कहने के लिए नहीं, कह देश के लिए सबसे जरूरी चीज है हमारे खाद्यान्न के भंडार भरे रहे। 140 करोड़ का देश हमारा आज दुनिया पर डिपेंड नहीं रह सकता, और वो खाद्यान्न के भंडार भरने का, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व हमारे किसान भाइयों और बहनों का है। और इसलिए मैं कहता हूं अन्नदाता मतलब जीवन दाता, और हम उनको सहयोग करने वाले। अभी सेक्रेटरी एग्रीकल्चर ने आपके सामने प्रेजेंटेशन किया, 2 दिन का ये कार्यक्रम केवल कर्मकांड नहीं है, प्रधानमंत्री जी के संकल्प और देश की जनता का सपना पूरा करने का सबसे प्रभावी माध्यम है।
0: देश के विभिन्न हिस्सों में आज ईद उल अजहा धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। सुबह ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। बाद में लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये पर्व हमें वंचितों की सेवा करने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी है। प्रदेश में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी के साथ आंधी और बारिश का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिनों से कई जिलों में बारिश दर्ज की गई, इसके बावजूद लू और तेज गर्मी का असर कम नहीं हुआ। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 46 जिलों में हीट वेव और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव लगातार 10 दिनों से प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। दोनों शहरों में आज भी तीव्र लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग और रोजगार विभाग द्वारा कल युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झाबुआ जिले में पड़ रही भीषण गर्मी और पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को देखते हुए कलेक्टर ने पेयजल आपूर्ति कार्य में लगे अधिकारी और कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया। और गुना में दिव्यांग जन जागरूकता, संवेदनशीलता एवं समावेशी अभिषण योजना विषयक 3 दिवसीय कार्यशाला का शुभारम्भ हुआ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर समाचार थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक

0: जीने की राह फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: जागृत और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमरीका और ईरान हुआ कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही, इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
3: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धारमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोकभवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली

0: लेका डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं, इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यांची ने किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिच सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्बारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के 2 व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
2: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहाँ 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बग्घी में ईदगाह तक पहुँचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
3: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज 2 सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से कश्फीन नहार।
0: श्रीलंका से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईद उल अज़हा का त्यौहार वहाँ हर्षोल्लास के साथ

0: मनाया जा रहा है।
1: आज श्रीलंका में ईद उल अजहा यानी बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादिसनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मुइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासात निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनके जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एन टी रामाराव को उनके जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एन टी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। उड़ीसा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुस जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर के युगल स्वरों में शागिर्द फिल्म का गीत आपने सुना। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

ಮಾಡ್ತೇವೆ.

خیر خیر خیر خیر.

0: आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजों में लाड साहब फिल्म का ये गीत था हसरत जयपुरी का, लिखा तर्ज थी शंकर जयकिशन की।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: फिल्म औरत में आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें। शकील बदायूनी के बोलों को सुरों में ढाला रफी ने। श्रोताओं, सदाबहार नगमे कार्यक्रम संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: धन्य जवानियों अपनी थी, धन्य वो उनकी जवानी जो

0: की सहेली सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। आरती आपको भी मेरा नमस्कार।
1: सोनाली आपको और सभी सखियों को सभी सखाओं को श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: और आरती कैसी हैं आप?
1: बस ठीक है, गर्मी में जितना ठीक हो सकते उतना ही ठीक है क्योंकि जो धूप के हाल है गर्मी के हाल है ना, बस पूछिए मत।
0: नहीं पर हम अगर गर्मी की बातें करते हैं तो गर्मी ज्यादा लगती है।
1: हाँ ये बात भी है,
0: इसलिए हमें ना गर्मी की बात ही नहीं करना है, बस
1: सोचना ही नहीं है कि हाँ। गर्मी है, अरे बिल्कुल गर्मी नहीं है
0: तभी तो हम खुश रह सकते हैं ना, क्योंकि खुश रहने के लिए हमें बस वजह ढूंढना चाहिए, है ना।
1: तो है।
0: क्योंकि खुशियों की वजह अगर हम ढूंढते हैं तो सचमुच जिंदगी हमारी बहुत खुश हो जाती है।
1: बिल्कुल, और मैं तो कहती हूँ वजह भी ढूंढने की क्या जरूरत है, बस हंसिए मुस्कुराइए खुशियां मनाइए।
0: बहुत प्यारे प्यारे गाने सुनिए, विविध भारती सुनते रहिए, है ना। और आज के विषय बता दें।
1: आज के विषय हैं, हम बात करेंगे आज अपने बच्चों की जो झूठी झूठी प्रशंसा करते हैं उनके ऊपर। देखिए ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम बहुत सभी लोग अक्सर करते हैं, क्योंकि अपने बच्चे सभी को प्यारे होते हैं तो वो आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। तो इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि आप तो नहीं है या आप हैं तो आप भी कितनी मतलब इस चीज को करते हैं कि झूठी प्रशंसा करते हैं, कितना करते हैं, तो इसके बारे में आप बताइए। या कोई आपको ऐसा कुछ अनुभव हुआ हो, किसी पड़ोसी ने कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा बोल दिया हो। और आज हम बात करेंगे कहानी पद्मश्री के अंदर किसके बारे में,
0: के चल्लमल नारियल अम्मा, उनके बारे में हम जानकारी देंगे। और साथ ही मुझे कुछ कहना है, इसमें हमें श्रोताओं से हम गुजारिश करेंगे कि भाई आप लिखिए कि गेमिंग का दलदल क्या है, इसमें आपके इर्द गिर्द के आसपास के लोग इस दलदल में क्या फंसे हुए हैं या आप इससे दूर है, इस विषय पर हमें लिखिए कमेंट्स, क्योंकि ये सिर्फ श्रोताओं का सेगमेंट है ना।
1: और एक बात मैं आपको बता दूं सोनाली, इस दलदल में थोड़े से पहले मैं खुद भी फंस गई थी बिल्कुल। और मुझे ऐसा हो गया था ना कि मैं बस खेलती चली जा रही हूँ और एक लेवल दो लेवल मैंने कहा कि बस किसी तरह से अगले लेवल पहुंच जाऊं, फिर मैंने कहा ये मुझे हो क्या रहा है, मैं पूरे टाइम सिर्फ इसी को कर रही हूँ। तो ये चीज से आप बाहर निकले, तो इसके बारे में बात करेंगे विस्तार से बाद में। और भी तो विषय है,
0: और आज एक खास दिन है आरती, ईद उल अजहा, यानी बकरी ईद भी है आज, तो उस बारे में भी हम बहुत सारे सखियों को श्रोताओं को शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। और साथ ही उपयोगी टिप्स, ये बहुत जरूरी टिप्स है आज की,
1: ताकि हमारा नेट जो है वो एकदम चलता रहे और हम अपना आराम से विविध भारती बिना उसके रोक टोक के सुन सके आराम से। और साथ ही और भी अगर हम कुछ देखना चाह रहे हैं, कुछ मनोरंजन करना चाह रहे हैं तो कर सकें, तो उसके लिए जरूरी है वाईफाई, क्योंकि डेटा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, तो वाईफाई होता है ना वो बहुत आराम से चलता है, पूरी फैमिली भी उससे कर सकती है, लाभ उठा सकती है। तो उसकी स्पीड अगर धीमी है तो हम कैसे उसको सही कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे।
0: और आप क्या करें,
1: एक गीत सुनते हैं।
0: तो सुनते हैं गीत।

0: तो भाई
1: सच में बहुत महके हुए से आज कभी देखो ना किसी को कि कोई अपनी फ्रेंड है तो बहुत मुस्कुरा सी रही, तो हमें पता चल जाता है कुछ तो राज उसने छुपा के रखा है। जैसे अभी मुझे लग रहा है सोनाली को देख के कि कुछ राज तो है, कि यानी वो पढ़ने वाली है, कोई कमेंट या कुछ बताने वाली है।
0: जी नहीं, आज हम सबसे पहले तो हमारे सभी सखियों को, श्रोताओं को बकरीद या ईद उल अजहा की हम
1: बहुत बहुत
0: मुबारक।
1: मुबारकबाद देते हैं जी।
0: जी, और ये जो इस्लाम का दूसरा सबसे प्रमुख और पवित्र त्यौहार है, जो पैगंबर हजरत इब्राहिम की अटूट आस्था, त्याग और समर्पण की याद में मनाया जाता है। ये त्यौहार इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। ये रमजान के खत्म होने के लगभग 70 दिन बाद आता है। ये चांद के देखने पर निर्भर करता है, इसलिए देश और स्थान के अनुसार इसकी तारीख में थोड़ा अंतर हो सकता है।
1: जी बिल्कुल। और बकरीद के दिन सुबह ईदगाह या मस्जिदों में विशेष ईद की नमाज भी अदा की जाती है, और नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। इस दिन घरों में खास तौर पर बिरयानी और अन्य लजीज पकवान बनाए जाते हैं, और गरीबों और जरूरतमंदों को दान या जकात देना इस त्यौहार का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है।
0: तो सारे हम सखियों को, श्रोताओं को ईद की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देते
1: जी।
0: हैं।

0: हाँ तो सुनाली, कुछ सच में इतना बढ़िया लगता है ना गाना ये.
1: जब है ना, जब कोई भी त्योहार हो तो वे अलग ही एक ना आनंद की अनुभूति होती है ना,
0: बिल्कुल.
1: फिर घर में सब लोग मिलते हैं और खुशियों की बरसात होती है।
0: सच में.
1: वैसे ही कुछ शख्सियत भी ऐसी होती है ना जिनके व्यवहार के कारण, जिनके कार्यों के कारण हमें ना हर बार एकदम खुश खुश रहते हैं हमें ना उनके
0: बिल्कुल.
1: काम में।
0: हमें एक प्रेरणा मिलती है, कुछ
1: जी
0: ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिनके वजह से हमें प्रेरणा मिलती है, हम भी कुछ आगे करने का सोचते हैं या हम ये निर्णय लेते हैं कि हमें अपने लिए आगे क्या करना चाहिए. हम ऐसे बैठे हैं तो हमें और कुछ, हम क्या कर सकते हैं, हम अपने टैलेंट को किस तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं. तो बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं, उनमें से आज हम एक व्यक्तित्व के बारे में बात करने वाले हैं.
1: जी
0: आज हम बात करेंगे
1: के चेलम्मल
0: जी.
1: जी, जिनका जन्म 6 फरवरी 1957 को उनका हुआ था जन्म, और उनका नाम है श्रीमती चेलम्मल, जिन्होंने कक्षा 6 तक की पढ़ाई की और नारियल अम्मा के नाम से जो मशहूर है। और चेल्लम्मल दक्षिण अंडमान के रंगा चांग की रहने वाली है, और चेल्लम्मल 10 एकड़ जमीन पर एकदम अलग तरह से उन्होंने खेती की, यानी जैविक तरह की उन्होंने
0: जी
1: खेती की।
0: बिल्कुल. और वो जैविक खेती के माध्यम से अनानास, केला, लौंग और अदरक की खेती करती हैं. इसके अलावा वो अपने बगीचे में अनोखे तरीके से नारियल की खेती करती हैं, जिसके कारण वो किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गई और लोग उन्हें नारियल अम्मा कहने लगे.
1: और उन्होंने 150 से अधिक किसानों को जैविक खेती के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने कई सरल तरीके निकाले जिससे नारियल की खेती बहुत आसानी से की जा सके, इसमें लागत भी कम आती है और पेड़ों को भी नुकसान से बचाया भी जा सकता है।
0: बिल्कुल. और उन्होंने नारियल और ताड़ के पेड़ों को नुकसान से बचाने के लिए सस्ते तरीके खोजे हैं. वो हमेशा दूसरे किसानों के साथ अपने विचार साझा करने के लिए तैयार रहती हैं. उन्होंने आसपास के गांवों के 170 से अधिक किसानों को प्रशिक्षण भी दिया है.
1: और कृषि कॉलेज और संस्थान अपने छात्रों को अध्ययन के लिए उनके खेत पर भेजते हैं जहां वे नारियल के पेड़ उगाती है। उन्हें दालचीनी, तेज पत्ता, काली मिर्च, पान का पत्ता, रतालू, सुपारी, अदरक, हल्दी, पपीता, केला, चीकू, हेलिकोनिया फूल और गेंदा और बहुत सारी सब्जियों की फसलों को उगाकर उन्होंने अपनी आमदनी में भी बढ़ाई की।
0: बिल्कुल. कितनी ज्यादा चीजों को उन्होंने, वो भी देखिए आज के समय में जब फसलों को इतना ज्यादा जब नुकसान पहुंचता है या इस रासायनिक चीजों से, उस समय वो जैविक खेती कर रही, कितनी अच्छी बात है. और श्रीमती

0: बेलमल ने नारियल को चूहों से होने वाले नुकसान पर काबू पाने के लिए नए उपाय विकसित किए। वो अपने खेत में जैविक कृषि तकनीकों को अपनाती हैं, साथ ही कीटों से फसलों को होने वाले रोगों और नुकसान से बचाव के लिए भी उन्होंने बहुत से कारगर उपाय विकसित किए जो बहुत काम के साबित हुए।
1: और चल्लमल ने अपने खेत में हरित खाद और गोबर की खाद का उपयोग किया है, साथ ही वो परागण के लिए मधुमक्खी पालन करती है और लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करती है। अंडमान में खेती करते हुए श्रीमती चल्लमल ने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है।
0: बिल्कुल, देखिए कितनी बड़ी बात है। वो मधुमक्खी जो जिसके बारे में कहा था कि बहुत जरूरी है ना इस पृथ्वी को जीवन को बचाए रखने के लिए,
1: जी
0: तो वो परागण के लिए कि बहुत सारी फसलों का परागण वो करती है मधुमक्खी, तो
1: देखिए।
0: उसके लिए भी उन्होंने कितना किया। तो बहुत ज्यादा वो समझ लीजिए पर्यावरण की रक्षा की तरीके से एक तरह से। और लेकिन उनका अब जो खेत है वो लोगों के लिए, कृषि और छात्रों के लिए एक आदर्श मॉडल बन चुका है। उनका खेत फसलों और मिट्टी की उत्पादकता को बनाए रखते हुए बहुत अच्छी आय का साधन है। उन्होंने अंडमान में एग्रो टूरिज्म के क्षेत्र में एक अवसर देखा, इसलिए उन्होंने अपने खेत में एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा भी दिया है।
1: अब स्थानीय और पूरे देश के अलावा विदेशों से पर्यटक उनके खेत को देखने समझने आते हैं और श्रीमती चिल्लमल को अब तक बहुत से पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं। उन्हें केरल के नारियल विकास बोर्ड से सर्वश्रेष्ठ नारियल किसान का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है।
0: बिल्कुल, और मसालों और फूलों की खेती के क्षेत्र में प्रगति के लिए इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च फाउंडेशन अवार्ड, साथ ही इनोवेटिव फार्मर अवार्ड, ICAR और CIARI पोर्ट ब्लेयर द्वारा आयोजित किसान मेले में उन्हें सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार भी मिला है।
1: और द्वीप पर्यटन महोत्सव 2014 के दौरान कृषि विभाग द्वारा राज्य स्तर पर आयोजित फल फूल और सब्जी के लिए प्रथम पुरस्कार और वर्ष 2016 में केंद्रीय द्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर की ओर से प्रगतिशील सर्वश्रेष्ठ कृषक का पुरस्कार भी आपको मिला है।
0: बिल्कुल, और उनके अनोखे जैविक कृषि तरीकों, नवाचार और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए उन्हें 2024 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया।
1: और सचमुच ऐसी जब महिलाएं हमारे इर्द गिर्द होती हैं तो हमें कितना इन्हें गर्व महसूस होता है कि हमारे भारतवर्ष में इतनी सारी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए और हमारी सरकार उन्हें पद्मश्री से
0: बिल्कुल,
1: सम्मानित
0: पढ़ाई
1: कर।
0: ना होने का रोना भी नहीं रोती है।
1: बिल्कुल,
0: पढ़ाई सिर्फ देखिए हमें एक डिग्री देती है और हमें थोड़ा हमारा ज्ञान हमारा विकसित करती है, लेकिन जो हमारे अंदर जो जो एक कला होती है ना, वो
1: जी
0: हर चीज को, वो जो कला होती है जो मिट्टी को भी छू ले तो सोना बन जाए, तो वो कला को अपने निखारना चाहिए।
1: और अब एक संदेश सुन ले।
0: बिल्कुल,
2: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
3: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
2: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
4: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
2: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
4: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
2: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
1: तो आरती, हमारी अपना कार्यक्रम सखी सहेली, उसका जन्मदिन है तो हमारे मन में भी बहुत खुशी है कि हम बहुत धूमधाम से पूरे श्रोताओं के संग, सखियों के संग ये हमारा जन्मदिन मनाएंगे। तो आप आ रही है ना?
0: बिल्कुल आ रहे हैं, आना ही है भाई, जन्मदिन मनाना है तो जश्न में शामिल तो होना ही है।
1: और हमारे बहुत सारे श्रोता है, हमारी सखिया वे भी आएंगे, पर इससे पहले हम एक गाना सुन ले।
0: बिल्कुल, सुनते
1: सुनते हैं गीत।

0: तो आंखों ही आंखों में हम पता कर लेते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है सच बोल
1: हाँ बिल्कुल, वो तो
0: रहा
1: पता चल ही जाता है चेहरे को देख के।
0: है कि देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना, हाल ही में रिजल्ट आए बच्चों के, तो कुछ कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है कि भले उनके 57% हो तो कहेंगे कि हमारे बच्चों को 75%
1: हाँ ये तो
0: आए
1: होता है, ये तो होता है।
0: और वो ये भी नहीं, वो उन्हें मालूम होता है कि कोई थोड़ी मार्क लिस्ट देखने आने वाला है, उन्हें तो नहीं मालूम पड़ेगा। पर देखिए एक झूठ के पीछे हमें 100 झूठ
1: सौ
0: बोलना
1: झूठ बोलने
0: पड़ता है।
1: पड़ते हैं।
0: और क्या होता है ना, बच्चों को जब ये झूठ सुनने की आदत हो जाती है ना, तो उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि उनकी झूठी तारीफ हो। और फिर आगे चल के जब उन्हें आगे की दुनिया में जाके अगर किसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो वे टूट कर बिखर जाते हैं,
1: सही
0: क्योंकि
1: बात है।
0: उन्हें जो है ना असफलता का सामना करने की आदत ही नहीं होती है
1: नहीं
0: उन्हें।
1: उनको लगता है कि नहीं, अब हमारे साथ जब आप उनके सामने उनकी तारीफ कर देते हैं झूठी ना, तो उनको लगता है नहीं कोई बात नहीं, हमारे अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मेरी मम्मी या मेरे जो परिवार वाले हैं वो कह ही देंगे, किसी ना किसी से कुछ तो कह ही देंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फिर वो उतनी मेहनत भी नहीं करते, वो अपनी पढ़ाई को लेकर उतना सीरियस भी नहीं होते, और फिर अपने वो खेल में उसी तरह से अपने दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं। जबकि आप उन्हें जब समझाएं चीजें, वो चीजों को कि नहीं तुम्हें आगे अच्छा करना है, और वो जो चीज उनकी रिजल्ट है वही आप सबको बताएं, तो
0: जी
1: उनको लगेगा नहीं हमें अब आगे करना पड़ेगा कुछ।
0: जी एक हमारे साथी ने लिखा है, बच्चों की झूठी या बढ़ा चढ़ाकर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के बजाय उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। इससे बच्चों में अहंकार आ जाता है, वे वास्तविक चुनौतियों का सामना करने से डरने लगती है और माता पिता की विश्वसनीयता भी कम हो जाती है।
1: बिल्कुल
0: बिना किसी खास वजह के तारीफ करने से बच्चे खुद को हर चीज में परफेक्ट समझने लगते हैं। जब वे असल दुनिया में असफल होते हैं तो गहरे गुस्से या निराशा में चले जाते हैं। जब बच्चों को लगता है कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं और हमेशा सर्वश्रेष्ठ है, तो उनके भीतर नई चीजें सीखने, मेहनत करने की ललक कम हो जाती है। उनके प्रयास की तारीफ करें, परिणाम की नहीं, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें तो फर्स्ट आना ही है। कहना तो ये चाहिए कि मुझे अच्छा लगा तुमने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितनी मेहनत की। प्रयास अपना होता है, परिणाम दूसरों के हाथ में होते हैं। इससे बच्चों में लगन बढ़ती है। और बहुत बार बच्चों के टीचर अभिभावकों को शिकायत करते हैं, कुछ भी करने पर कहता है तो मैं कर लूंगा, पर बहुत

0: तेज हो, करता कुछ नहीं है, तो ये टीचर की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी है, उन्हें
1: बिल्कुल
0: सिखाए। और हर काम परफेक्ट हो कोई जरूरी नहीं है, उस काम में निराशा भी नहीं होना चाहिए।
1: बिल्कुल। और लेकिन उस चीज को लेके इतना ज्यादा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए कि सामने वाले को आप कहें कि इस तरह से, तो बच्चे का वो जो मनोबल है ना, वो जो उसकी ललक होती है वो कम
0: जी
1: हो जाती है। इसलिए एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बात अगर झूठी प्रशंसा की हो तब बच्चे तो क्या बड़ों की भी नहीं करनी चाहिए, और अरे विविध भारती की भी झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, हालांकि वो हमें ऐसा मौका कभी देता नहीं कि हमें उसकी झूठी तारीफ करनी पड़े। तो झूठी प्रशंसा खासकर बच्चों की तो नहीं करनी चाहिए, इससे उनकी सीखने की क्षमता कम हो सकती है, आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। इसलिए झूठी तारीफ के बजाय उनके द्वारा किए गए प्रयासों की सच्ची सराहना करनी चाहिए और उन्हें सकारात्मक फीडबैक देना चाहिए
0: क्या बात है।
1: ताकि
0: एक
1: वो और
0: हमारे
1: आगे कर सकें।
0: जी एक हमारे साथी लिखते हैं, तुम सबसे होशियार हो, तुम कभी गलती नहीं कर सकती है, तुमसे अच्छा कोई नहीं। ऐसी बातें सुनकर बच्चा धीरे धीरे वास्तविकता से दूर होने लगता है। जब बच्चे को बिना मेहनत के बार बार प्रशंसा मिलती है तो अपनी कमियों को समझ नहीं पाता। अतः माता पिता को चाहिए कि बच्चों की तुलना कभी दूसरों से ना करें और ना ही झूठी प्रशंसा करके उन्हें भ्रम में रखें। सच्चाई, प्रोत्साहन और सही मार्गदर्शन ही बच्चे के अच्छे भविष्य की नींव बनते हैं। इसलिए बच्चों से प्रेम करें, उनका उत्साह बढ़ाएं, लेकिन प्रशंसा हमेशा सच्ची और उचित होना चाहिए।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है, इन्होंने बहुत बहुत बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो कुछ चीजें हम पढ़ लेते हैं इसमें से। तो उन्होंने लिखा है कि बच्चों की झूठी ये अत्यधिक प्रशंसा उनके विकास के लिए हानिकारक हो सकती है, ये उन्हें आत्ममुग्ध बना सकती है, असफलता से डरने वाला बना सकती है, और उनमें वास्तविक क्षमताओं के प्रति संदेह पैदा कर सकती है। सच्ची और विशिष्ट तारीफ जैसे कि मेहनत, प्रक्रिया या व्यवहार की, इनकी आप तारीफ करिए, उनके आत्मविश्वास और लचीलेपन की तारीफ करिए। झूठी प्रशंसा के जो दुष्प्रभाव है वो ये देखने को मिलते हैं कि वो बच्चा अहंकारी भी हो जाता है, आत्ममुग्ध भी हो जाता है, और साथ ही अनावश्यक तारीफ बच्चों को अपने साथियों से ज्यादा श्रेष्ठ महसूस कराती है, जिससे वो उनमें अहंकार पैदा हो जाता है और वो विफलता से डरने भी लगते हैं और उनमें लगता है कि मैं बेहतरीन हूं, तो वो एक झूठ उनके अंदर आ जाता है।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है आरती, कि अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा, वैसे देखा जाए तो मैं कभी अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा नहीं करती, लेकिन हाँ जब भी वे कोई अच्छा काम करते हैं तो मैं उनकी दिल से तारीफ जरूर करती हूँ। मैं उन्हें कहती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। मेरी बात सुनकर बच्चे खुश भी हो जाते हैं और उन्हें आगे और अच्छा करने का मोटिवेशन भी मिलता है। मेरा मानना है कि बच्चों की सही समय पर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और उन्हें बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ बच्चों की हौसला अफजाई जरूर होनी चाहिए, बस झूठी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए।
1: बिल्कुल। एक और श्रोता है जो कुछ इस तरह की बात लिखते हैं, लिखते हैं कि तुम सबसे होशियार हो, तुम कभी गलती नहीं कर सकते हो, इस तरीके की चीजें वो उन्होंने लिखी हैं। और साथ ही बच्चों की, एक और जो श्रोता है जो लिखते हैं कि बच्चों की झूठी प्रशंसा करना उनके विकास के लिए नुकसानदायक हो सकता है, और असफलता मिलने पर बच्चे जल्दी टूट जाते हैं, जोखिम लेने से डरने लगते हैं, वो नई चुनौतियां लेने से बचते हैं, और उनको तारीफ की लत लग जाती है, वो केवल दूसरों को खुश करने के लिए काम करने लगते हैं, और उनके अंदर सीखने की इच्छा खत्म होने लगती है, उन्हें लगता है कि वो पहले से ही सर्वश्रेष्ठ है, उन्हें और मेहनत की जरूरत ही नहीं है। और परिणाम की बजाय अगर बच्चे की मेहनत की हम तारीफ करें तो ज्यादा बेहतर होगा, कि तुम बहुत अच्छे हो की बजाय कहें कि तुमने ये चित्र बहुत ध्यान से बनाया है, तो और साथ ही गलती होने पर उसे प्यार से सुधारने की प्रेरणा भी दें।
0: बहुत अच्छी बात। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि मैंने अपने जान पहचान परिवार में देखा है कि जिसका बच्चा औसत दर्जे का छात्र है, बहुत मेहनती भी नहीं है, इसमें कोई शिकायत नहीं, हर बच्चा अपना अपना व्यक्तित्व होता है, उसके गार्जियन अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा बेटा जब 12 तक अच्छे नंबर नहीं लाया तो मेहनत भी नहीं करना चाहता, तो क्यों उसे IAS IPS का ख्वाब दिखाया जाए। एक दिन कुछ ऐसा ही उसके साथ हुआ और वो डिप्रेशन में चला गया, पर भगवान का शुक्र है लड़का आज सही सलामत है और अपने साधारण सी नौकरी और जिंदगी में खुश है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि भाग्य चमत्कार कभी कभी ही होते हैं, सब चमत्कार एक साथ नहीं होते। ये भी सही बात कही है। और आरती, अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो लेते हैं एक ब्रेक।

0: ब्रेक
1: सच
0: के
1: में।
0: बाद हम हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी
1: सहेली,
0: सहेली।
1: सच में सोनाली, जो बच्चों की अगर हम जब तारीफ करते हैं ना, तो उनकी अगर हम सकारात्मक तारीफ करें ना, कि कहें कि ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करता है या बहुत मेहनत करता है, तो बजाय नंबर बताने की हम ये इस तरीके की अगर तारीफ करें, तो बच्चे के अंदर भी सकारात्मक जो एक एनर्जी आती है वो आएगी, और
0: जी
1: वो भी सोचेगा कि नहीं, अब मुझे और मेहनत करनी है ना, और मेहनत करके आगे बढ़ना है, ना कि मुझे सिर्फ अब झूठी तारीफ पे रहना है। इसलिए बहुत जरूरी है
0: और
1: इस
0: अब
1: तरह
0: क्या
1: से।
0: करें,
1: एक गीत सुनते हैं।
0: सुनते हैं गीत।

0: आरती
1: दिल की बात.
0: सचमुच दिल की बात असली नकली चेहरा बता ही देता है। एक हमारे साथी लिखते हैं आरती कि बच्चों की तारीफ तो कीजिए परंतु उन्हें चने के झाड़ पर मत चढ़ाइए। अक्सर झूठी प्रशंसा करने से वे आत्म मूल्यांकन नहीं कर पाते और आभासी दुनिया में जीते हैं। ये
1: जी
0: बहुत सही बात लिखी है
1: बिल्कुल.
0: ना।
1: और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बच्चों की हर बात पर झूठी प्रशंसा करना सही नहीं होता, क्योंकि इससे वो अपनी असली मेहनत और काबिलियत को समझ नहीं पाते. और मुझे लगता है कि जब हम बिना वजह हर काम की तारीफ करते हैं तो बच्चे धीरे धीरे सच और दिखावे का फर्क भूलने लगते हैं. सच्ची और सही प्रशंसा बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाती है, लेकिन झूठी प्रशंसा उन्हें केवल दूसरों की तारीफ पर निर्भर बना सकती है. इससे वो असफलता को स्वीकार करना भी मुश्किल समझने लगते हैं. और मेरे अनुसार बच्चों को उनकी मेहनत, ईमानदारी और कोशिशों के लिए सराहना मिलनी चाहिए, न कि सिर्फ खुश करने के लिए. इससे वो जीवन में सच्चाई, आत्मविश्वास और मेहनत की असली कीमत को समझ पाते हैं.
0: एक साथ ही लिखते हैं कि बच्चों की झूठी या बढ़ा चढ़ाकर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास और मानसिक विकास को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे बच्चे वास्तविकता से दूर हो सकते हैं और आलोचना को स्वीकार कर

0: में असमर्थ हो सकते हैं। सच्ची
1: बिल्कुल
0: और सही तारीफ करने के लिए उनके प्रयासों पर ध्यान दें, ना कि उनके परिणामों पर। यानी मिलजुल कर हमारे सभी साथियों ने इसी तरह की बात लिखी है। एक साथ ही लिखते हैं कि बच्चों की परवरिश करना आसान नहीं है, उनके लालन पालन में हमेशा सकारात्मक रवैया जरूर रवैये की जरूरत होती है, जिससे कि वो प्रोत्साहित महसूस हो। बच्चों को जब माता पिता से प्रोत्साहन मिलता है तो उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और वे एक कामयाब जीवन जीते हैं। लेकिन जरूरी ये है कि वो प्रोत्साहन कैसा हो, जरूरी है कि प्रोत्साहन भी सही तरीके से किया जाए, जिससे कि वो पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करे और साथ में अपने मनपसंद क्षेत्र में भी सफलता पाए।
1: बिल्कुल
0: यानी मिलजुल कर हमारे सभी साथियों ने इसी तरह की बात लिखी कि भैया अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा ना करें,
1: बिल्कुल
0: जैसे हैं बच्चे, और उन्हें उनके बारे में बताए कि भैया इतने ही नंबर मिले हैं उन्हें,
1: जी,
0: उसमें कोई भी बुराई नहीं है। देखिए ना, कभी ऐसा नहीं है कि
1: नंबरों से उनकी काबिलियत को आप नहीं बता सकते
0: कभी
1: कि
0: कभी ऐसा भी
1: जी
0: होता है कि कुछ कुछ लोगों को बहुत परीक्षा में कम नंबर मिलते हैं पर अपनी जिंदगी में खूब आगे बढ़ते हैं।
1: बिल्कुल। आप आइंस्टीन वगैरह इतने बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हुए उनको देखिए। तो आप एक छोटा सा कमेंट उसको ले लेते हैं। एक श्रोता जो लिखते हैं कि आप बच्चों की झूठी तारीफ करेंगे तो घर पर अगर कोई मेहमान आए तो उनके सामने बहुत लंबी लंबी फेंकेंगे कि हमारा बच्चा इतने नंबर लाता है, अरे ये तो क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लाया, और इसके बहुत सारे दोस्त हैं, इससे अच्छे नंबर तो उसके स्कूल में कोई लाता ही नहीं है। लेकिन मैं कहूंगी ऐसा मत कीजिए, क्यों ऐसा, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनकी आदत भी होती है, उनकी आदत भी यही होती है कि वो सोचते हैं कि हमारे माता पिता तो हमारी तारीफ कर ही देंगे, हम कुछ भी करें हम तो बोल तो हमें तो बोलना नहीं है, तो इससे बच्चे की आदत बन जाती है, तो इससे जो बच्चा है ना वो बिल्कुल झूठ में जीने लगता है। तो इसलिए उनको कहने का मतलब है कि आप इसलिए बच्चों की जो झूठी तारीफ है वो मत करिए।
0: और है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना आरती, कि वो बच्चा बहुत ज्यादा गेम में उलझा हुआ है तो भी जो है ना, बहुत सारे घर के सदस्य जो होते हैं, मम्मियां होती हैं, पापा होते हैं, घर के लोग है ना, छुपाते हैं कि नहीं नहीं नहीं वो तो पढ़ाई करता है, वो तो मोबाइल में
1: बिल्कुल
0: लगा रहता है, तो टीचर ने प्रोजेक्ट दिया, आजकल तो मोबाइल में देख के प्रोजेक्ट करना पड़ता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जाने अनजाने में गेमिंग के दलदल में फंस जाते हैं।
1: बिल्कुल
0: ये आज का युग जो है ना, तकनीक और इंटरनेट का युग है, जैसे
1: बिल्कुल
0: मोबाइल, कंप्यूटर, वीडियो गेम ने बच्चों से लेकर युवाओं तक सभी के जीवन में जगह बना ली है। मनोरंजन के साधनों में गेमिंग सबसे लोकप्रिय
1: बहुत
0: माध्यम
1: ज्यादा
0: है आरती, और थोड़ी देर का खेल मन को ताजगी देता है, पर लेकिन जब यही मनोरंजन आदत और फिर लत बन जाए तो ये गेमिंग का दलदल ये बन जाता है, और इसमें व्यक्ति धीरे
1: बिल्कुल।
0: धीरे धीरे धीरे फंसता ही चला जाता है।
1: और इस गेमिंग की वजह से इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, जो बच्चे हैं उन्होंने कितने बड़े बड़े क्राइम कर दिए इन
0: जी
1: गेमिंग में के चक्कर में फंस के। तो अपने माता पिता या किसी से रिश्ते में भी जो भी उनके अपने हैं उनको भी वो नहीं समझते, सिर्फ गेम के अंदर इतने ज्यादा वो लग जाते हैं कि वो कितने बड़े बड़े क्राइम कर जाते हैं, और साथ
0: यानी
1: ही बहुत बड़े अपने जो जो माँ बाप की जो कमाई होती है
0: जी
1: उसको भी गेम के चक्कर में, वो गेम को खरीदने के चक्कर में वो भी पूरा गंवा देते हैं।
0: यानी कहने का मतलब है कि वो ये जो दलदल है इसमें फंसने से हमने अपने बच्चों को बचाना है।
1: बिल्कुल
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि इस बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आजकल बच्चे दिन रात मोबाइल गेम्स में लगे रहते, पढ़ाई और बाकी जरूरी चीजों से उनका ध्यान हटता जा रहा है। मेरी बेटी ने अभी अभी 10वीं के एग्जाम दिए और उनकी छुट्टियां चल रही है। आजकल उसकी सबसे बड़ी डिमांड ये है कि मम्मा मुझे गेमिंग वाला फोन चाहिए। सच कहूँ तो मुझे समझ ही नहीं आता कि जो बच्चा अभी 11वीं में जाने वाला है उसे इस उम्र में गेमिंग के फोन की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। फिर मुझे अपना समय याद आता है कि हमारे समय में तो मोबाइल दूर की बात थी, घर में सिर्फ लैंडलाइन फोन होता था। मेरे पिताजी तो इतना डांटते थे कि किसी से 1 मिनट से ज्यादा बात नहीं करनी है, लेकिन आज के बच्चों की दुनिया ही बदल गई है, उन्हें बस गेम खेलना है। तकनीक अच्छी है लेकिन उसका सही और सीमित उपयोग बहुत जरूरी होता है, वरना
1: बिल्कुल
0: धीरे धीरे बच्चे गेमिंग की ऐसी आदत में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि गेमिंग का दलदल ऐसा खतरनाक भंवर है जिसमें व्यक्ति चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकता, ये एक ऐसी स्थिति है जहां गेमिंग जो है वो मनोरंजन नहीं एक मानसिक बीमारी बन जाती है जो मकड़ी के जाल से भी बदतर जाल है। इसमें फंसने वाला अपने करियर, सेहत और पैसों से पूरी तरह बर्बाद हो जाता है, थोड़ा मुनाफा होने के बाद ज्यादा मुनाफे के लालच में अपनी जिंदगी बर्बाद करने में देर नहीं लगता।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि गेमिंग के दलदल एक टाइप का नशा है, एक ऐसी स्थिति है जहां कोई व्यक्ति वीडियो गेम, मोबाइल गेम या ऑनलाइन गेम खेलने का इस हद तक आदी हो जाता है कि वो अपनी असल जिंदगी, पढ़ाई, नौकरी और सेहत को पूरी तरह से नजरअंदाज करने लगता है। ये दलदल की तरह इसलिए है क्योंकि शुरुआत में सिर्फ मनोरंजन लगता है, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति इसमें ऐसा फंसता जाता है कि चाहकर भी बाहर निकल पाता। सोशल मीडिया, समाचार पत्र में आए दिन ये खबरें पढ़ती हूँ कि ऐसा नहीं, कम पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे डिग्रीधारी सारे लोग इस माया जाल में फंसते जा रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: और जब आप बुरी तरह से फंस जाते हैं तब उनका एक ही परिणाम होता है कि अपने को दुनिया से खत्म कर लेते हैं, और उन्हें भुगतना पड़ता है कि परिवार को निराशा और पूरा परिवार जो है दुखी हो जाता है, ऐसा उन्होंने
1: बिल्कुल
0: लिखा है।
1: बिल्कुल। और एक और

0: जोश होता है हमारे, वो लिखते हैं कि जो गेमिंग का दलदल है उसमें जो यानी कि जो खेल कूद है, और उसमें भी अरे ये गेम मतलब जो गेम है जो जो बाहर हम गेम खेलते हैं, जब आउटडोर गेम्स खेलते हैं घर के बाहर, तो वो गेम होते हैं उसको कहते हैं खेल। वो आपके शारीरिक और मानसिक विकास को भी बढ़ाते हैं,
1: जी
0: और उसके लिए हमारे दिमाग के जो विकसित विकास होता है उसके लिए बहुत जरूरी होते हैं। बल्कि जबकि गेमिंग जो होता है उसमें स्क्रीन पे पूरे समय देखते रहने से आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है और मानसिक विकास पे भी बुरा असर
1: और
0: पड़ता
1: ये
0: है।
1: जो गेमिंग जो है ना, जो होते हैं ना, इसमें ना हमेशा हम जीतते ही हैं। पानी में गिर जाए तो भी
0: तो
1: उन्हें
0: भी
1: कुछ पॉइंट्स
0: हाँ
1: अगर हमारे पास है तो उससे हम फिर से जिंदा हो जाते हैं।
0: जी
1: तो ये बच्चे, और कुछ कुछ बच्चे तो वो वीडियो गेम देख के वैसे ही रास्ते पर भी उसी तरह से कार वगैरह चलाते हैं, तो उसके साथ उनकी जान के साथ साथ दूसरों की जान को भी बहुत खतरा होता है।
0: बिल्कुल
1: एक हमारे साथी ने लिखा है, दीपा
0: हाँ जी कोई
1: सॉरी
0: नहीं।
1: समय सीमा निर्धारित करें, गेम खेलने के लिए अलार्म लगाए या माता पिता दोस्तों की मदद से एक निश्चित समय तय करें, नई आदतें अपनाएं, ऊब से बचने के लिए कोई नया शौक पाले, व्यायाम करें या किताबें पढ़ें।
0: बिल्कुल। और एक कुछ होता है जो लिखते हैं कि आज के जो जो बच्चे जो गेम में लगे रहते हैं, उसमें कंप्यूटर गेम में या मोबाइल में लगे रहते हैं, वो वास्तविक दुनिया से उनका जुड़ाव कम होने लगता है, और शुरुआत में ये गेम मनोरंजन और तनाव दूर करने का साधन लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही आदत गेमिंग का दलदल बन जाता है जिससे निकलना कठिन हो जाता है। जब व्यक्ति गेम खेलने की लत में इतना डूब जाता है कि वो अपनी पढ़ाई, काम, परिवार और सामाजिक जीवन को नजरअंदाज करने लगता है, तो ये आदत धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालने लगती है। और याद रखिए, गेम्स खेलना बुरा नहीं है, लेकिन संतुलन बहुत जरूरी है। पढ़ाई, खेलकूद और परिवार के समय के साथ गेमिंग को सीमित रखिए ताकि हम इस दलदल में ना फंसे और अपने भविष्य को सुरक्षित रख सके।
1: और अब क्या करें,
0: एक गीत सुने
1: सुनते हैं गीत।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अरे अच्छे हम अकेले
1: जब कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

करोगे समझ

0: भारती एक साथी लिखते हैं कि आजकल गेम खेलने की लोगों में लत सी लगी है। लोग देर रात तक जागकर मोबाइल या लैपटॉप पर गेम खेलते हैं। कई बार तो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, ना तो खाने की चिंता होती है, ना उन्हें कुछ काम की चिंता होती है। कुछ ऐसे गेम तो उन्हें ऐसे टास्क देते हैं जिसके कारण लोग अपने जीवन को भी समाप्त कर
1: बिल्कुल,
0: लेते
1: बहुत
0: हैं।
1: से ऐसे गेम आ गए हैं खतरनाक।
0: जी
1: और साथ ही एक श्रोता जी लिखते हैं कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति ऑडियो या ऑनलाइन गेमिंग में इतना उलझ जाता है कि उसका अपनी दैनिक दिनचर्या, नींद और मानसिक स्वास्थ्य पर से नियंत्रण हट जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसे आधिकारिक तौर पर गेमिंग डिसऑर्डर के रूप में वर्गीकृत किया है।
0: और वैसे आरती ऐसी बात है कि ये जो मोबाइल गेम है, या फिर मोबाइल कह लीजिए, लैपटॉप कह लीजिए, या फिर जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, इनमें अगर वाईफाई ना हो, इनमें अगर नेट ना हो, तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही
1: सही बात है, फिर हम
0: है।
1: एकदम फोन लेके बैठे रहते हैं कि क्या करें इस डिब्बे काम।
0: नहीं, पर अगर हमें बहुत इन्हें ऑफिशियल काम करना है, हमें अगर कुछ काम करना है, तो बात समझ सकते हैं। पर अगर हमें सिर्फ टाइम पास नहीं हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है कि हम पढ़ना भूल रहे हैं, खेलना भूल रहे हैं, परिवार के साथ बैठना भूल रहे
1: बिल्कुल
0: हैं, तो हमें इन सब बातों का भी ध्यान रखना है कि कोई भी मनोरंजन का साधन होना, वो सिर्फ सीमित मात्रा
1: बिल्कुल,
0: तक
1: वो
0: हो।
1: मनोरंजन तक ही रहना चाहिए,
0: जी
1: बाकी रिश्तों के बीच में या हमारे स्वास्थ्य के बीच में उसको नहीं आना चाहिए।
0: जी और अब वाईफाई की रफ्तार अगर धीमी हो जाए तो क्या करना
1: जिंदगी
0: चाहिए?
1: की रफ्तार, ऐसा लगता है कि हमारे जीवन की रफ्तार जब वो धीमी हो गई है,
0: धीमी हो गई
1: क्योंकि
0: है।
1: बहुत कभी कभी बहुत जरूरी काम होते हैं, क्योंकि
0: जी
1: हमें उसको करना होता है, लिखना होता है या कुछ
0: जी
1: हमें पढ़ना है, बहुत जरूरी चीजें देखनी है। तो आजकल तो न्यूज भी आप मोबाइल पे देख सकते हैं, कहीं बाहर हैं तो हमें किसी कुछ जरूरी देखना है तो वो अगर नेट नहीं सही से चल रहा है, या हम अपने जैसे कि हम लोग जब जब देखते हैं, सब पूरी फैमिली जो होती है, अगर पूरी फैमिली ले रखी है उसने वाईफाई से चला रहे हैं, तो उसकी रफ्तार अच्छी होनी जरूरी है।
0: जी
1: तो कभी कभी ये होता है ना, कुछ चीजों को हम सावधानियां करें तो उससे हम उसकी रफ्तार को बढ़ा भी सकते हैं। तो जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि राउटर को अगर हम सिर्फ बंद करके 2 मिनट बाद उसको स्टार्ट करें तो उससे भी स्पीड बेहतर हो जाती है।
0: तो यानी जो मोबाइल, टीवी या लैपटॉप उपयोग में नहीं हो, उन्हें नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर दीजिए। कमजोर पासवर्ड होने पर भी लोग जो है नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं, जिससे
1: कोई
0: स्पीड
1: आपके घर के सामने से जा रहा है, निकल रहा है, थोड़ी दूर
0: कम।
1: तक है, तो वो आपके नेट का आसानी से उपयोग कर सकता है, तो वहीं खड़े होकर अपना उपयोग करता रहेगा, लेकिन आपकी वाईफाई की जो स्पीड है वो धीमी हो जाएगी।
0: साथ ही पुराने राउटर नई तकनीक के अनुसार सही गति नहीं दे पाते, जरूरत पड़ने पर नया राउटर ले। ऑनलाइन पढ़ाई के समय वीडियो डाउनलोड या भारी गेमिंग से बचे, ताकि इंटरनेट की गति स्थिर बनी रहे। फोन में चल रहे उन ऐप्स को बंद करें जो बैकग्राउंड में डेटा जैसे ऑटो अपडेट या सिंक का उपयोग कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, ये जो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं ना, जितने भी पेजेस, उनको आप बंद करेंगे ना, तो फिर उसकी आपके फोन की स्पीड पे बहुत असर पड़ेगा।
0: यानी हमने अभी खोला फेसबुक, फिर थोड़ी देर में खोला व्हाट्सएप, फिर उसके बाद में हम चले गए यूट्यूब पे। तो अगर सारे ऐप्स खुले हुए हैं,
1: हाँ,
0: अगर हम इस्तेमाल तो सिर्फ एक ही का
1: एक ही
0: करेंगे
1: कर रहे
0: की
1: हैं,
0: टाइम, तो सारे अगर ऐप्स खुले रहेंगे तो भी हमारे इंटरनेट की स्पीड कम हो सकती है।
1: बिल्कुल, तो आप उसका भी ध्यान रखें। और साथ ही थोड़ी सावधानी और है, जैसे कि अपना जैसे कि अगर जो आपका राउटर है वो घर के बीचों बीच में और ऊंची जगह पर होना चाहिए, और साथ ही जो मोटी दीवार और माइक्रोवेव जैसे बहुत ज्यादा चीजें ऐसी मत रखिए, जैसे टीवी है, टीवी के पास एकदम से आपने रख दिया उसे पीछे, तो उसका जो सिग्नल है वो सिग्नल तोड़ता है, तो उस वजह से भी आपका स्पीड धीमी हो जाती है। तो उसे थोड़ा सा अलग करके रखें और थोड़ा ऊंचा ही रखें उसे, उसी जगह पर ही लगाएं, जिससे कि और बाकी उपकरण उसके आसपास नहीं होंगे, तो बहुत बढ़िया स्पीड मिलेगी आपको
0: और
1: इंटरनेट की।
0: राउटर का जो एंटीना होता है उसे भी अच्छे से सेट करें। यदि दो एंटीना है तो एक को वर्टिकल इन्हें खड़ा रखें, और दूसरा एंटीना को हॉरिजेंटल इन्हें आड़ा रखें। यह सिग्नल का दायरा बढ़ा देता है।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही एक है ना, फ्रीक्वेंसी के बैंड बदलते रहना चाहिए हमें, कि जो तेज फ्रीक्वेंसी का राउटर हमें लेना चाहिए ना।
1: बिल्कुल, उससे क्योंकि अगर ज्यादा फोन चलाने हैं उसको, उससे आपको कंप्यूटर वगैरह ज्यादा चीजें चलानी है, तो आप उसी हिसाब से आप लीजिए अपना राउटर, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपकी चल सकें, वाईफाई और उसकी स्पीड भी अच्छी रहे। और
0: अब एक गाना सुन ले,
1: बिल्कुल, एक गीत सुन
0: सुनते
1: लेते
0: हैं
1: हैं।
0: गीत।

0: तो अब हम बात करते हैं वही जो हम बात कर रहे थे, यानी कि राउटर की। तो जैसे कि बताया कि हमने कि आप राउटर को बंद करें और फिर दोबारा चालू करें, तो उससे ये उसकी जो मेमोरी होती है उसको साफ करता है, और साथ ही राउटर की जगह को भी बदलें। जैसे कि हमने बताया था कि आप उसको EMI श्रोता लिख के भेज रहे हैं, उसको घर के बीच में रखें और इसे ऊंचाई पर स्थापित करें, और कई सारी बाधाओं से, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उसको दूर रखें, और अनचाहे डिवाइस जो भी रखें उसके आसपास उनको हटा दीजिए, और वाईफाई का पासवर्ड बदलें और ताकि और कोई उसका इस्तेमाल ना कर सके। साथ ही बैकग्राउंड लोड जो डाउनलोडिंग बंद करें। ये वही चीज़ें जो हैं जो हमने अभी बताई, वही हमारे श्रोता ने भी लिख कर भेजा है। तो एक और हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि धीमी वाईफाई की स्पीड को बढ़ाने के लिए सबसे आसान और असरदार तरीका है अपने राउटर को रीस्टार्ट करना, और इसके अलावा वही उनका है कि ऊंची जगह पर लगाने से भी इसकी स्पीड बेहतर होती है।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं आरती कि ज्यादा गेम खेलने से मेरा भी स्कूल का रिजल्ट बिगड़ा था, मुझे भी कंप्यूटर गेम की लत लगी थी लेकिन अब छूट गई है। क्या
0: अरे
1: बात है
0: वाह
1: तो
0: देखा,
1: पढ़ाई हो
0: बिल्कुल बधाई हो आपको अपने, क्योंकि गेम की लत लग जाती है, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है।
1: जी
0: आपने उस चीज को छोड़ा, बहुत अच्छी चीज करी है आपने। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि देर रात तक गेम खेलने से नींद का चक्र बिगड़ जाता है, जिससे डिप्रेशन और एनजाइटी का खतरा बढ़ जाता है, और साथ ही एकाग्रता में कमी भी आती है। लंबे समय तक स्क्रीन पर वर्चुअल गेम खेलने से वास्तविक दुनिया से या पढ़ाई पर या काम पर ध्यान लगाने में परेशानी हो सकती है।
1: ये तो है ना, टेक्नोलॉजी के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं,
0: बिल्कुल
1: तो हमें उसके फायदे लेना चाहिए और नुकसान को हमें बाय बाय कहना चाहिए, है ना।
0: बिल्कुल, उसको ध्यान रखिए, इतना मत किसी चीज में लग जाइए कि वो आपको नुकसान पहुंचाने लगे,
1: जी, और
0: क्योंकि
1: अभी
0: अति हर चीज के लिए भी
1: अब
0: बुरी होती है।
1: बिल्कुल अति सर्वथ वर्जित, तो भाई अति से दूर रहे कि बस वो इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, हम इतने इसके माध्यम से हम लोगों से जुड़ रहे हैं, हमें
0: बिल्कुल
1: कितना ज्यादा फायदा हो रहा है इन टेक्नोलॉजी की बदौलत, तो उसका हमें फायदा उठाना चाहिए, उसके जो नुकसान है उससे हमें बचना चाहिए। और अब क्या करना चाहिए हमें,
0: एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।
1: तो सुनते हैं गीत।

0: तो रहती है आज की
1: आज की
0: मुलाकात
1: मुलाकात बस
0: बस
1: इतनी।
0: इतनी, और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है, तो आप सभी को सोनाली
1: और
0: पाठक
1: आरती श्रीवास्तव का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: नमस्कार दोस्तों, हेलो फरमाइश कार्यक्रम एक ऐसा लोकप्रिय कार्यक्रम है जहां आप अपने पसंदीदा गाने सुनना पसंद करते हैं, हमसे बातचीत करना पसंद करते हैं, अपनी भावनाएं, अपने संदेश दूसरे श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं, क्यों है ना? तो आज इस हेलो फरमाइश में ऐसी ही हल्की फुल्की बातें हमने की हैं हमारे श्रोताओं से। तो शुरू करते हैं आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम और देखते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ जी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: जी हमारा नाम नरेंद्र कुमार पटेल है, हम बजहा गांव प्रयागराज उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं।
0: हाँ नरेंद्र जी, स्वागत है आपका।
1: जी हम विविध भारती जो है सन 2000 सुन रहे हैं, कक्षा 2 में थे तब से।
0: अरे वाह क्या बात है, कक्षा 2 में थे तब से लेकर अभी तक सुन रहे हैं।
1: जी हमारे घर में ऐसा संस्कार था कि रेडियो हमारे चाचा लोग सुनते थे, जब हम लोग बैठते थे, खड़े खड़े चलते थे, परे परे चलते थे, तब से रेडियो सुनते थे, तो उसी माहौल में थे इसलिए सुनने लगे। खाना पीना बनता था, सभी लोग कम्बाइंड परिवार था, खाते थे और उधर टहलते थे, वहीं खेलते थे, तो रेडियो चलता रहता था।
0: तो आज तक सुनते हैं आप रेडियो?
1: जी जी अब रेडियो तो नहीं रह गया, अब मोबाइल ऐप से सुनते हैं, हमेशा सारा दिन सुनते रहते हैं।
0: कैसा लगता है उस समय आप जब कक्षा 2 में सुनते थे या थोड़े बड़े हुए?
1: वो तब जी हम जो क्लास वर्क होता था शाम के करते थे, रेडियो चलता रहता था, अपना फेयर पूरा करते रहते थे, फिर खेत में टहलने जाते थे, गाँव के अगल बगल पूरा हमारे चरी लगे हुए, भिंडी उर्दी, इतने समय गेहूँ कट गया है, बढ़िया हरियाली चारों तरफ है।
0: तो अब आप हरियाली के बीच में बैठकर रेडियो सुनते हैं मोबाइल ऐप के जरिए?
1: जी जी वो रेडियो हम लेकर खेत के मेड़ों पर टहलते थे शाम समय, जो गाय भैंस चराया करते थे स्कूल से आने के बाद, तो बड़ा अच्छा लगता था पूरा कार्यक्रम जितना चलता है, भाते शुरू से सुबह से लेकर हम 11 बजे रात तक का आपको बता सकते हैं।
0: तो हमारी पक्की लिस्नर हैं आप।
1: यही जान लीजिए हम इतनी समय 36 साल के हैं, मान लीजिए हम 6-7 जब से यानी हम बहुत संभाल हैं, सबसे सुन रहे हैं।
0: क्या बात है, और हमें हमारे इन सभी श्रोताओं पर फख्र है जो इतनी शिद्दत के साथ कार्यक्रम सुनते हैं और उसका जिक्र भी करते हैं। तो बताइए नरेंद्र जी, वैसे आप क्या करते हैं, खेत में काम करते हैं?
1: पढ़े लिखे हैं लेकिन अब इतने समय डेली वेज मजदूरी काम करते हैं, काम करने जाते हैं, इतने समय गर्मी का टाइम है, सुबह 6 बजे जाते हैं, 10 बजे चले आते हैं, फिर 3-6 बजे तक उस टाइम हमारा जो है मोबाइल ऐप से विविध भारती हमेशा बजता रहता है, सुनते रहते हैं। अभी दोपहर में हम लगाने लगे।
0: काम कहाँ करते हैं?
1: गांव में अगल बगल में जो घर पक्के मकान बनते हैं उसी में।
0: बहुत अच्छा लगा नरेंद्र जी आपसे बात करके, बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: जी हमें जो है थानेदार पिक्चर का एक गाना है, जीना है तो हंस के जो जीवन में एक पल भी रोना ना।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम।
1: हेलो मंदा किनी जी।
0: नमस्कार
1: मैडम, खांजीपीर से जब्बार मोहम्मद।
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: ये मैडम खांजीपीर उदयपुर से, झीलों की नगरी है उदयपुर, वहाँ से बोल रहा हूँ मैडम
0: जी। कैसे हैं आप, बताइए उदयपुर के बारे में बताइए। अभी गर्मी के मौसम में उदयपुर का क्या हाल है?
1: मैडम क्या कह रहे हैं, उदयपुर तो वैसे बहुत अच्छी नगरी है, झीलों की नगरी है
0: जी।
1: अभी 40 और 45 डिग्री के आसपास गर्मी है उदयपुर में।
0: अच्छा, गर्मी इतनी पड़ रही है?
1: जी मैडम, गर्मी तो है उदयपुर में, लेकिन यहाँ झीलें हैं, चारों तरफ झीलें फैली हुई है और हरियाली बहुत है, तो इससे कुछ गर्मी का असर कम रहता है
0: जी।
1: और काफी टूरिस्ट वगैरह आते हैं यहाँ, कई अच्छी जगह देखने लायक जगह है, यहाँ झीलें हैं काफी, क्या कह रहे धार्मिक नगरी भी, कई दर्शनीय स्थल है, श्रीनाथ जी का मंदिर है, जगदीश जी का मंदिर है और दो दरगाहें भी देखने लायक है यहाँ, मस्तान बाबा की दरगाह फतेह सागर के आसपास और एक अंबावगढ़ पे भी एक गन शहीदा की दरगाह है, पहाड़ी पे काफी अच्छी दरगाह है, काफी जायरीन वगैरह आते हैं। उदयपुर से कुछ दूर श्रीनाथ जी का मंदिर भी बहुत फेमस है, यहाँ भी टूरिस्ट आते हैं और झीलें भी अच्छी है
0: जी। आपने उदयपुर की सारी दुनिया हमारे सामने साकार कर दी है कि टूरिस्ट
1: जी।
0: जब आते हैं तो किन किन चीजों को देख कर जाते हैं।
1: जी
0: तो मुझे बताइए कि बकरीद का जो त्योहार है वो असल संदेश उसका त्याग है। आपने अपनी जिंदगी में कभी कोई ऐसा अपनों की खुशी के लिए त्याग किया?
1: मैडम त्याग तो ये है कि गरीबों की मदद करना चाहिए, जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए, करते हैं क्या
0: जी।
1: बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है और मैं फिल्म मर्यादा का गीत सुनना चाहता हूँ।
0: कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मोहम्मद रफी साहब का है, मोहब्बत के सुहाने दिन।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत चुना है आपने। चलिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: मैम नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: जी मैम, मैं कृष्ण कुमार डाबी बोल रहा हूँ, गांव टोंकिया, जिला बालोतरा, राजस्थान से।
0: अरे वाह,
1: तीसरी बार बात हो रही है।
0: क्या बात है।
1: नियमित सुनते हैं बस आपके प्रोग्रामों को। अभी मनसा गीत शुरू हुआ उसको भी मैं नियमित सुनता रहता हूँ।
0: हाँ।
1: और अभी दो दिन पहले ही आपकी प्रस्तुति को सुना हूँ मैं।
0: जी क्या बात है। तो सुरीला सफर के लिए आप लिखते हैं कि नहीं लिखते फेसबुक पेज पर?
1: हाँ लिखता हूँ मैम, पर क्या कि दिन को एक बजे जो प्रोग्राम आता है उस समय क्या थोड़ा काम में बिजी होता हूँ, तो सोशल मीडिया पे थोड़ा कमेंट कम कर पाता हूँ। बाकी जब भी पोस्ट देखता हूँ तो उसके बारे में प्रोग्राम सुनता हूँ तो लिखता जरूर हूँ।
0: लिखा कीजिए ताकि हमें क्या उन संदेशों को पढ़ने में बड़ा आनंद भी आता है और श्रोताओं के विचार।
1: और पत्र भी भेजे अभी विविध भारती के स्टूडियो में।
0: अच्छा,
1: धीरे धीरे जैसे समय मिलेगा वैसे भेजते रहेंगे तो शामिल होते रहेंगे।
0: जी मनचाहे गीत के लिए बिल्कुल आपका स्वागत रहेगा हर कार्यक्रम में।
1: बिल्कुल दीदी, बिल्कुल बहुत अच्छा।
0: जी बताइए थोड़ा मौसम के बारे में कि बालोतरा में कितनी गर्मी हो रही है।
1: बताइए कि मरुस्थली इलाका है तो इन दिनों तो गर्मियों के दिनों में मौसम कैसा होगा। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और तेज आंधी और गर्म लू से भरी हवाएं चल रही है, बस वही मौसम है रेगिस्तान में।
0: जी तो दिन भर जो गृहिणी है उनका वक्त तो घर की सफाई करने में निकल जाता होगा, क्योंकि जब हमारे
1: देखो
0: राजस्थान में जब आंधी तूफान आता है तो वो पूरा छप्पर फाड़ आता है। फिर
1: वही बात है कि सुबह जब घर की साफ सफाई होती है और शाम तक होते होते पूरा घर वापस रेत के कणों से और धूल से भर जाता है, क्या करें। सफाई तो करनी पड़ेगी सुबह शाम दोपहर, क्या है ये तो। दिन को थोड़ी गर्मी तेज रहती है, बाहर इधर उधर निकलना नहीं होता है क्योंकि गर्मी का मौसम है। और टेम्परेचर भी अभी अपने यहाँ इधर हमारे बाड़मेर, जैसलमेर और ये सब बालोतरा साइड का कम से कम 46 से 47 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। बस वही बात है,
0: गजब चल रहा है और भयंकर गर्मी के इसमें। अपना ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का और सब चीजों का।
1: और वैसे प्रोग्रामों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि जो भी प्रोग्राम इन दिनों आ रहे हैं बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, और ये फोनिंग प्रोग्राम भी आ रहे हैं, आपने जो नए कुछ प्रोग्राम शुरू किए हैं उनका भी स्वागत है। और मैंने खास करके मैं छायांकित प्रोग्राम का बहुत सुबह और शाम को फिर ये वापस आता है 5 बजे रिपीट, तो मैं उसको सुनना जरूर पसंद करता हूँ क्योंकि मैं दो बार सुनता हूँ, कभी कभी नहीं सुन पाऊँ तो मिस हो जाता, तो फिर वापस से यूट्यूब पे जाकर कहीं ना कहीं मिल जाता तो सुन लेता हूँ।
0: क्या बात है, इतना पसंद है आपको छायांकित।
1: छायांकित में दीदी आप जो ये प्रोग्राम अपनी भावनाओं जो व्यक्त करती है और उस हिसाब से गीत भी उसी अनुरूप होते हैं, तो वो क्या कि फिर थोड़े दिल को छू लेने वाले होते हैं। और आपके समय जब प्रोग्राम आता है तो उसकी बात ही कुछ अलग है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको।
1: दीदी आज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, उनका अपने जो संगीतकार जुड़ी थी उनका दिन है, तो उस उपलक्ष्य में मैं उन्हीं के संगीतबद्ध किया एक गाना सुनना चाहूंगा। हम जोली फिल्म से
0: हम
1: आशा जी और रफी साहब की बुलंद आवाज में गाना है, ढल गया दिन हो गई शाम जाने दो जाना।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ नमस्ते।
0: नमस्ते,
1: ग्राम सुराना जिला रतलाम से शेख हैदर खान बोल रहा हूँ।
0: जी स्वागत है आपका हैदर साहब।
1: और क्या हाल चाल मैडम?
0: अच्छे हैं, आप बताइए।
1: बस बढ़िया है, यहाँ भी मतलब अभी तो थोड़ी गर्मी का प्रकोप ज्यादा है एमपी में, तो लो बहुत चल रही है मैडम अभी फिलहाल। तो
0: जहाँ बात की जा रही है वहाँ पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा तापमान है, और अलग अलग जगहों पर पता चलता है कि किस तरह से लोग जो इस गर्मी में बेहाल हुए जा रहे हैं।
1: हाँ
0: तो बताइए हैदर साहब, अभी जो बकरीद है, बकरीद को किस तरह से मना रहे हैं आप, और क्या संदेश देना चाहते हैं बकरीद के मौके पर?
1: संदेश तो ये देना चाहते हैं मैडम के मतलब ये जो अपना भारतवर्ष ये तो त्योहारों का देश है, और सभी को मतलब अपने अपने त्योहार मनाने का अधिकार है, तो शांति और मतलब स्वभाव से त्योहार मनाएं।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आप अपना त्योहार सुख और शांति के साथ मनाएं, हम ये उम्मीद करते हैं। और आप हमारे पुराने श्रोता हैं, क्या क्या सुनना पसंद करते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों में?
1: विविध भारती के प्रोग्राम तो मैडम जो अभी 90 साल पूरे हुए हैं, तो हम तो 1980 से आकाशवाणी जुड़े हुए हैं मैडम।
0: 1980 से सुन रहे हैं?
1: हाँ 1980 से ही सुन रहे हैं, वो रेडियो पे प्रोग्राम सुनते ज्यादातर, तो अभी भी मेरे पास रेडियो ही है।
0: तो आप बताइए कौन सा गीत सुन रहे हैं आपको?
1: ये रंजा फिल्म का गीत है, रफी साहब की आवाज में, ये दुनिया में फिल्म मेरे काम की नहीं।
0: बहुत ही सुंदर गीत सुनना चाहते हैं आप, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार।
1: कभी कभी खामोश रहकर भी नेक काम किए जा सकते हैं, मैंने देखा है अक्सर पेड़ों को छांव देते हुए।
0: क्या बात है, क्या बात है, नाम तो बताइए अपना।
1: मोहम्मद रफी मंसूरी, इंदौर से। कैसे हैं आप?
0: हम अच्छे हैं, आप बताइए।
1: हम भी अच्छे हैं मैडम।
0: अच्छा होना ही चाहिए
1: जी,
0: हमारे कार्यक्रम सुनते हैं लगातार।
1: हाँ हाँ सुनते ना मैडम
0: जी। तो आप बताइए, बकरीद मनाएंगे आप
1: जी, जी, जी।
0: तो बकरीद का असली महत्व क्या है, ऐतिहासिक महत्व क्या है आपकी नजरों में?
1: मैडम इसका ऐतिहासिक महत्व है कुर्बानी और आपस में मिलजुल कर रहना और प्यार बांटना और दूसरों को भी खुशियाँ देना।
0: जी बहुत सही कहा आपने। और इसी भावना को मद्देनजर रखते हुए हम अपना हर त्योहार मनाते हैं। क्यों
1: जी,
0: बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: हम सिलाई करते हैं मैडम।
0: अच्छा, सिलाई करते हैं घर पे या किसी दुकान में जाके?
1: नहीं, बाहर गोडाउन पे जाके।
0: दिन भर सिलाई का काम होता है?
1: हाँ दिन भर सिलाई का काम भी होता है और अपना रेडियो भी चलता रहता है।
0: रेडियो तो खैर आप लोगों की खुराक में शामिल है।
1: हाँ खुराक में ही है।
0: भाई मुझे लगता है हमारे श्रोता खाना भले ही कभी खा लेते होंगे लेकिन विविध भारती सुनना नहीं भूलते।
1: जी
0: तो क्या सिलते हैं आप?
1: मैडम हमारा घनी बैग का जूट का काम, बारदान बारदान जिसमें अनाज भराता है, गेहूँ दाल, उसको रिपेयर करते हैं हम सुबह और पीसते हैं।
0: अच्छा, जूट के जो बैग हैं जिन्हें हम बोरा कहते हैं लोकल भाषा, उसको आप जूट के उससे सिलाई करते हैं?
1: जी जी।
0: तो नए बनाते हैं या पुरानों को रिपेयर करते हैं?
1: मैडम पुराने जैसे कोई कट लगी रहती है या चूहे काट देते हैं तो उसको रिपेयरिंग करते हैं हम।
0: तो ये अच्छे से रिपेयर हो जाता है क्या? क्योंकि वो तो सुतली जो होती है वो कहीं ना कहीं से कट जाती है, उसको सिलना आसान होता है? पैबंद लगाते समय ध्यान रखते हैं?
1: हाँ मैडम, थोड़ा पक्की सिलाई करना पड़ती है और फिर बाद में तो फिर वैसे उठा पटक होती है, अनाज भराता है तो फिर वो फट जाते हैं, तो फिर हमारे पास डबल से आते हैं, फिर हम रिपेयरिंग करते हैं उसको।
0: इस तरह से उसको बना के रखते हैं ना, क्योंकि बोरी है वो फट भी जाती है कई जगह से।
1: जी,
0: कट फट जाती है। अच्छा बताइए।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो मैडम जी, नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: हाँ जी मैडम जी, हमारा पहली दफा कॉल लगा है विविध भारती में।
0: स्वागत है आपका फिर तो।
1: बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा कॉल अटेंड किया, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: नाम बताइए अपना, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नाम मैडम जी सरवण कुमार रणवा, गांव हीरावाली, जिला फाजिलका, पंजाब से।
0: कैसे हैं आप, बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं?
1: बहुत बढ़िया है मैडम जी, मालिक की दया है, बाकी हम तो खेती बाड़ी का काम करते हैं, जमींदार आदमी है।
0: बिल्कुल अच्छी बात है ये तो।
1: हाँ जी,
0: तो अभी क्या पैदावार हो रही है खेतों में? मौसम इतना गर्म है, आपके पंजाब में भी तो गर्मी हो रही होगी।
1: बिल्कुल जी, गर्म दिन बहुत चल रहे हैं, बाकी धान का पौध बोआ है, वो अब 20 दिन के बाद में पटकर दोबारा लगाएंगे।
0: क्यों, मतलब इसको हटा देंगे?
1: अभी वो जैसे संगना बीजा हुआ है, संगना थोड़ी दूर में,
0: हाँ।
1: उसको फिर उखाड़ कर फुट फुट की खेती पर लगाएंगे दोबारा।
0: अच्छा, दोबारा लगेगा, तो इस दोबारा लगाने की प्रक्रिया में थोड़ी मेहनत ज्यादा हो जाती है?
1: मेहनत तो है मैडम जी।
0: हाँ, और गर्मी के इस मौसम में क्या ख्याल रखना?

0: पड़ता है फिर।
1: मैडम जी, हम तो बागड़ी आदमी है, ये राबड़ी हमारे बनाते हैं।
0: बाजरी के आटे की?
1: हाँ, बाजरी का, मोठ का।
0: अच्छा, मोठ का भी?
1: हाँ, उसमें छाछ डालकर सुबह पीते हैं, 10 बजे शाम को दलिया बनाकर रख देते हैं, वो सुबह ठंडा होता है, वो छाछ दही के साथ में खाते हैं। ये गर्मी का बहुत बढ़िया उपाय है ठंडे के लिए।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो रात को आप मोठ का दलिया बना देते हैं और उसको सुबह खाते हैं छाछ के साथ?
1: हाँ जी, हाँ जी, सवेरे ठंडा मिलेगा, रात
0: हाँ,
1: को वो बनकर तैयार हो जाता है।
0: क्या बात है, बहुत स्वादिष्ट बनता होगा फिर तो, है ना?
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। वैसे खेत के अंदर मकान बना है, वहाँ थोड़ा सब्जी वगैरह लगा रखा है, कोई ककड़ी मिल जाती है, कभी खरबूजा मिल जाता है, कभी कोई तर वगैरह हरी मिर्ची मिल जाती है, वो बहुत बढ़िया है।
0: बिल्कुल, बहुत सही कहा। बहुत ही अच्छा जीवन बिता रहे हैं प्रकृति के बीच में और शुद्ध खाना खा रहे हैं अपने
1: बिल्कुल,
0: ही खेत का।
1: हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल।
0: जी चलिए, तो अब बता दीजिए आपकी पसंद का कोई गीत।
1: मैडम जी, रवार की फिल्म से सुना देना है मेरे साथ यह गीत, तू कोई गा, लता और मोहम्मद अजीज की आवाज।
0: आइए सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: ग्राम कटारिया खेड़ी, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से विविध भारती का नीमे श्रोता मैं राम नरेश बोल रहा हूँ। मैम
0: स्वागत है आपका राम नरेश जी।
1: जी जी, और हम विविध भारती को बहुत पसंद करते हैं, इससे आने वाले प्रोग्राम चाहे हेलो फरमाइश हो, सेलोलाइट के सितारे हो, आज की फनकार हो, यह नया प्रोग्राम शुरू किया गया है।

0: मंच है गीत। हम विविध भारती से सन 2000 से जुड़े हुए हैं, जब सुबह 9:15 पर पॉप हंगामा प्रोग्राम आया करता था।
1: तो 26 साल हो गए आपको इस कार्यक्रम से, इस सभा से जुड़े विविध भारती से।
0: जी, विविध भारती से जुड़े हुए और कई दौर देखे हैं, देखा जाए तो 2 दशक से अधिक समय हो गया है।
1: कैसा लगता है आपको इतने समय से विविध भारती सुन रहे हैं, अपने जीवन में कोई परिवर्तन होता लगा आपको?
0: विविध भारती सुनने से हमें जानकारियाँ मिली और ज्ञानवर्धक बातें मिली, किस तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए अपने से बड़े लोगों से, उस तरह की सीख मिली। अपने से छोटे लोगों को किस तरह का प्रेम करना चाहिए, इस तरह की सीख मिली। विविध भारती ने हमें जानकारियों के साथ में जीवन जीने का तरीका, नजरिया सब कुछ सिखाया। और शुक्रिया विविध भारती, जो आपके सहारे हम 26 वर्षों तक अभी लगातार प्रोग्राम सुन रहे हैं। और विविध भारती से सुन सुन कर सीखा, ये जो सिंगर गा रहा है ये मोहम्मद रफी है, ये जो सिंगर गा रहा है ये किशोर कुमार है, अब जो सिंगर गा रहा है वो कुमार सानू है, ये आवाज उदित नारायण की है। क्योंकि सिंगरों की आवाज पहचानना हमने विविध भारती के कार्यक्रमों में गीतों के माध्यम से सुन सुन कर ही सीखा। चाहे उद्घोषक सिंगर का नाम नहीं ले तो भी हम पहचान लेते हैं फला फला सिंगर गा रहे हैं। उद्घोषक कहते हैं सिंगर की आवाज है तो हम करेक्ट कहते हैं, बिल्कुल हमने सही पहचाना।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत कुछ सीखा आपने।
0: जी,
1: तो चलिए अपनी पसंद का गीत बताइए।
0: फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन, और गाने के बोले आज हमारे दिल में अजब सी हलचल है, सामने समधन है, इस तरह से गाने की लाइन है।
1: चलिए तो सुनते हैं इस गीत को।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार
1: जी मैडम, मैं रघुवीर से राजपूत बोल रहा हूँ, महाराणा प्रताप चौक छिपावड़ तहसील खिरकिया जिला हरदा मध्य प्रदेश से।
0: रघुवीर जी बोल रहे हैं, कैसे हैं रघुवीर जी?
1: जी मैडम हम अच्छे हैं, आप लोग कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं, आप बताइए क्या करते हैं?
1: मैडम हमारे खेती किसानी का काम है और होटल वगैरह है।
0: अभी क्या चल रहा है आपके खेत में?
1: मैडम अभी गेहूं के बाद तो खाली रहता खेत, तो कुछ नहीं लगाते, पानी की व्यवस्था नहीं है। और 2019 के बाद आज मेरा कॉल पहली बार लगा, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: चलिए अच्छी बात है।
1: और पुराने कार्यक्रम जो SMS के बहाने, VVS के तराने और सुहाना सफर कार्यक्रम, हवा महल, आज के फनकार, सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं मैडम।
0: सुरीला सफर में आप अपनी बात लिखते हैं हमारे फेसबुक पेज पर?
1: मैडम मैं अभी 2019 के बाद मैंने रेडियो सुनना बंद कर दिया था।
0: क्यों?
1: दोबारा चालू किया कोरोना काल से मैंने बंद कर दिया था।
0: तो इतना लंबा समय क्यों लिया बंद करने के बाद शुरू करने में?
1: कार्यक्रम बंद हो गए थे विविध भारती से, तो फिर धीरे धीरे मैंने भी सुनना बंद कर दिया था मैडम।
0: चलिए अब लगातार सुनिए और अपनी राय देते रहिए और फेसबुक पेज से जुड़िए, अपने विचार व्यक्त कीजिए ताकि आपकी टिप्पणियों को हम स्थान दें, पढ़ें।
1: जी जी मैडम,
0: हमारे श्रोताओं से ही हमारे कार्यक्रम है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत, बताइए।
1: आम्रपाली फिल्म का नील गगन की छाव में दिन रैन गले से मिलते हैं।
0: क्या बात है, गर्मी के इस मौसम में बड़ा सुंदर गीत सुनना चाहते हैं।
1: अच्छा गाना है और शंकर जयकिशन का संगीत भी बहुत अच्छा है, लता जी के आवाज के साथ।
0: जी सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्ते मैम, मेरा नाम टिंकू दास, जिला कासाराम से बोल रहा हूँ मैम।
0: अरे वाह, क्या प्यारा नाम है आपका टिंकू। ये तो घर का नाम होगा।
1: जी मैम, घर का नाम है।
0: तो बाहर का नाम क्या है आपका?
1: मेरा बाहर का नाम है राजदास।
0: अरे वाह, दोनों नाम बहुत अच्छे हैं आपके। टिंकू जी, अपने बारे में बताइए, कैसा चल रहा है आपका जीवन?
1: जी मैम, बहुत अच्छा चल रहा है, स्वस्थ है, मस्त है, बहुत मजे में है। आप कैसी हो मैम?
0: अच्छे हैं हम भी। तो बताइए, आप कहाँ रहते हैं?
1: जी मैं सिलचर पे रहता हूँ।
0: वहाँ मौसम कैसा चल रहा है इन दिनों?
1: मौसम 4 दिन से बारिश हो रही है मैम।
0: अरे बारिश आ गई है?
1: जी मैम।
0: तो कुछ ठंडा हुआ मौसम?
1: जी मौसम अच्छा है, सुहाना है मैम मौसम।
0: अच्छा, तो इस बारिश आने से क्या फायदा हुआ वहाँ?
1: जी पहले तो बहुत धूप था, आप राहत मिली है गर्मी की।
0: कुछ गर्मी से राहत मिली है ना?
1: जी मैम।
0: क्या काम करते हैं आप टिंकू जी?
1: जी मैम, मैं तो फिलहाल घर का काम काज करता हूँ, और अभी तक तो कुछ तो करना पड़ेगा आगे से।
0: अरे क्यों नहीं करते अभी तक? क्या उम्र है आपकी?
1: जी फिलहाल तो मेरा 19 साल की उम्र है।
0: अच्छा, पढ़ाई की है आपने?
1: जी मैम, मैंने तो ओनली 10 कंप्लीट किया है। मेरा एक उद्देश्य भी है, मैं TRPF कमांडू में जाना चाहता हूँ।
0: हाँ हाँ,
1: फिलहाल यही तैयारी चल रहा है।
0: क्या तैयारी कर रहे हैं? फिजिकल फिटनेस का ध्यान रख रहे हैं आपने?
1: जी मैम, अच्छे से रख रहे हैं मैम।
0: बिल्कुल, खाना पीना और सब कुछ आपको सही तरीके से करना पड़ेगा।
1: जी मैम,
0: तभी तो कमांडो बन पाओगे, है ना? कितना मुश्किल होता है वो फिजिकल फिटनेस, मेंटली इतना मजबूत बनना पड़ता है।
1: जी मैम।
0: बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप युवा हैं और कार्यक्रम सुनते हैं, कौन सा गाना सुनवाएं आपको टिंकू जी?
1: जी मैम, मुझे सिर्फ तुम अभी से पहली पहली बार ये गाना सुना दीजिए मैम।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं कश्मीर सोनामर्ग से लतीफ अहमद रैना।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा मैडम, आप ठीक है?
0: हाँ हम ठीक है। और कश्मीर के मौसम बताइए।
1: कश्मीर के मौसम अभी सुहाना है, मौसम ठीक है। अभी ठंडे ठंडे मौसम है यहाँ पे, सुबह शाम ठंडे, दिन में गर्मी रहता है।
0: काफी टूरिस्ट आ रहे होंगे घूमने इन दिनों।
1: हाँ, पर्यटक तो बहुत सारे आते हैं यहाँ सोनामर्ग में। अब लगभग 15,000 से ऊपर तो पर्यटक आते हैं यहाँ पे।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा एक बात बताइए मोहम्मद रैना साहब, बकरीद पर आप क्या कहेंगे? अब तो बकरीद का जो असली मकसद है, असली संदेश क्या है, क्या सोचते हैं आप? जो हजरत साहब है उनकी परंपरा, उनकी कुर्बानी की परंपरा हमें क्या सिखाती है?
1: हमें सिखाता है वो ईमानदारी, ईमानदारी हर चीज में, जो भी ईमानदारी करेगा वो आगे बढ़ेगा।
0: अच्छा एक बात बताइए, जो बकरीद का त्योहार है, हमें समाज में जरूरतमंदों की मदद और दान करना, सहायता करना सिखाता है।
1: ये तो गरीबों के बांटना है, हर किसी को भी बांटना है ये।
0: आपसी प्रेम और भाईचारे का बनाए रखने का एक बहुत बड़ा त्योहार है ये।
1: हाँ हाँ, ये तो बड़े त्योहार है।
0: आप ऐसा सोचते हैं कि सभी समुदायों के बीच आपसी प्रेम और भाईचारा बना रहे?
1: हाँ सही बात, हिंदू मुस्लिम तो एक ही भाई भाई है।
0: चलिए तो इस त्योहार को अच्छे से मनाइएगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: हमें सुना है गाना पत्थर की फूल, लता मंगेशकर की आवाज में, कभी तो छल्ले लगता है।
0: सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। कभी तू

0: था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के कॉल आज लग चुके हैं उनसे हमारा करवत अनुरोध कि कृपया आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें। हेलो फरमाइश से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर है 4002466228602888 और हमारा STD कोड नंबर है 022, यानी आप हमें 022400024662 साथ ही 022286702888 पर कॉल कर सकते हैं। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम का सफर आज आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो
2: हेलो फरमाइश।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रमों को। FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। शाम के 5 बजे हैं, श्रोताओं प्रस्तुत है युवा साथियों का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी।

0: क्या आप किसी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं जो आपको न सिर्फ शिक्षण दे बल्कि साथ में दे रोजगार?
1: तो अब आपकी तलाश हुई पूरी, चले आइए AICTE से मान्यता प्राप्त और RGPV भोपाल से संबद्ध सतपुड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां BTEC कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में डिग्री और साथ ही पॉलिटेक्निक के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में।
0: हमारा पता है सतपुड़ा कैंपस, लालबारा रोड, गर्रा, बालाघाट।
1: मोबाइल नंबर 6262604111 और 9425836824।
2: हर बैंक के अलग अलग KYC पेपर्स, काश एक चाबी होती।
3: एक चाबी है CKYC ID।
2: CKYC मतलब?
3: बैंक आपके KYC रिकॉर्ड CKYC रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14-डिजिट CKYC ID। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह KYC अपडेट तो सब जगह अपडेट।
2: वाह, RBI कहता है
3: KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
4: दोस्तों, आपका एक बार फिर कार्यक्रम युवाणी में स्वागत है। दोस्तों, आज है महान स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और हिंदुत्व के प्रणेता विनायक दामोदर सावरकर जी की जयंती। भारत में इस दिन को स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। आप भाषाविद, बुद्धिवादी, कवि, अप्रतिम क्रांतिकारी, दार्शनिक, समाज सुधारक और ओजस्वी वक्ता थे। वीर सावरकर जी का जन्म 28 मई 1883 को भगोर, नासिक, महाराष्ट्र में हुआ था और आपने 26 फरवरी 1966 को मुंबई में अंतिम सांस ली थी। आपने किशोरावस्था में ही देश को आज़ाद कराने की शपथ ली थी। वीर सावरकर जी ने देश की आज़ादी के लिए कई यातनाएं सही, जिसमें उन्हें जेल में कोलू का बैल की जगह जोता गया, एकांत कारावास में रखा गया। हम ऐसे देश के वीर सपूत सावरकर जी को सादर नमन करते हैं।

0: पटाखा एंड पटाखा एयर आर्म्स,
1: शादियाँ और अन्य अवसरों पर पटाखों की विशाल रेंज,
0: बालाघाट में एयर गन के अधिकृत विक्रेता,
1: एयर गन के प्रयोग से फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जानवरों को आंशिक आहत और डर से भगाएं, अपनी फसलों की रक्षा करें।
0: स्कूल कॉलेज गन शूटिंग के लिए भी संपर्क करें। पटाखा एंड पटाखा, सरेखा बाईपास रोड, बालाघाट।
1: मोबाइल नंबर 9406788702।
2: दोस्तों, आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्य दिवस, जो कि हर साल 28 मई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 28 मई 1987 को कोस्टा रिका में हुई थी। इस दिवस का उद्देश्य है हर महिला को अपनी सेहत और शरीर से जुड़े फैसले खुद लेने का अधिकार मिले। सरकारें महिलाओं की सेहत पर बजट बढ़ाएं और बेहतर पॉलिसी बनाएं। साथ ही मासिक धर्म, प्रजनन स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व पर खुलकर बात हो। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्य दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

0: पच पच पच के रहना रे बाबा।
1: हर बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स, काश एक चाबी होती।
2: एक चाबी है सीकेवाईसी आईडी।
1: सीकेवाईसी मतलब?
2: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह अपडेट।
1: वाह, आरबीआई कहता है
2: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
3: दोस्तों अब सुनिए रोजगार सूचना। रेलवे भर्ती बोर्ड ने असिस्टेंट लोको पायलट के 11,127 रिक्त पदों की भर्ती हेतु आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 14 जून 2026 है। तो दोस्तों ये थी रोजगार सूचना। और दोस्तों आज ही है मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, जिसकी शुरुआत 28 मई 2014 को जर्मन एनजीओ वाश यूनाइटेड ने की थी। दोस्तों 28 मई ही क्यों, इस तारीख के पीछे लॉजिक है। औसत मासिक चक्र 28 दिन का होता है, मई पाँचवा महीना, औसतन पीरियड्स 5 दिन चलते हैं, यानी तारीख खुद ही मासिक धर्म का सिंबल है। मासिक धर्म स्वच्छता का उद्देश्य महिलाओं की चुप्पी तोड़ना, जिसमें पीरियड्स पर शर्म झिझक खत्म करना, ये बीमारी नहीं प्राकृतिक है। 2026 की थीम है एक पीरियड्स फ्रेंडली दुनिया के लिए साथ आए।

श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम युवाणी FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हो चुके हैं। अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

श्रोताओं, कार्यक्रम का शुरुआती गीत था दिलवाले फिल्म से। आवाज से दी थी कुमार सानू और अलका याग्निक ने। गीत था समीर का, संगीत था नदीम श्रवण का। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अब सुनते हैं राजा भैया फिल्म का ये गीत। आवाज से आप सुनेंगे उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की।

अभी आपने सुना उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में राजा भैया फिल्म का गीत। शब्दकार थे समीर, संगीतकार थे नदीम श्रवण। आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, अब सुनते हैं फैज अनवर का लिखा गीत, बिज्जू शाह के संगीत निर्देशन में आवाज़ें दी हैं उदित नारायण, अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति ने। फिल्म का नाम है हमसे बढ़कर कौन।

श्रोताओं, ये गीत था फैज अनवर का लिखा, बिज्जू शाह के संगीत निर्देशन में आवाज से दी थी उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति और अभिजीत ने। फिल्म का नाम था हमसे बढ़कर कौन। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाते हैं मोहरा फिल्म का ये गीत। आवाज से दी है उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों ने। बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की है बिज्जू शाह ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अपने ज़माने की सुपरहिट फिल्म मोहरा से ये गीत। आवाज़ से आप सुन रहे थे उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की। बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की थी विजू शाह ने। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में और एक हम गीत शामिल करते हैं जो अपने ज़माने की सुपरहिट फिल्म है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। आवाज़ से आप सुनेंगे अभिजीत, उदित नारायण और अनु मलिक की। शब्दकार हैं माया गोविंद, संगीतकार हैं अनु मलिक।

0: तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम का अंतिम गीत जिसे हमने लिया था मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म से। आवाज़ें दी थी अभिजीत, उदित नारायण और अनु मलिक ने। शब्दकार थे माया गोविंद, संगीतकार थे अनु मलिक। अब हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है। FM बैंड 101.3 MHz पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। शाम के 6 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट।
1: गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट।
0: आवाज़ की दुनिया के सभी श्रोताओं, इस सुहानी सांझ में कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट के नए अंक का सफ़र आप तय करने जा रहे हैं आशीष सेंद्री के साथ। आप सभी श्रोताओं को ईद उल जुहा पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।

0: पटाखा एंड पटाखा एयर आर्म्स,
1: शादियां और अन्य अवसरों पर पटाखों की विशाल रेंज,
0: बालाघाट में एयर गन के अधिकृत विक्रेता,
1: एयर गन के प्रयोग से फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जानवरों को आंशिक आहत और डर से भगाएं, अपनी फसलों की रक्षा करें।
0: स्कूल कॉलेज गन शूटिंग के लिए भी संपर्क करें। पटाखा एंड पटाखा, सरेखा बाईपास रोड, बालाघाट।
1: मोबाइल नंबर 9406788702।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट। आज श्रोताओं, तारीख है 28 मई और हमने कार्यक्रम युवाणी में बात की थी अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्य दिवस की, साथ ही बात की थी मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पर। अभी अब हम इस कार्यक्रम में कल 29 मई की बात कर रहे हैं। कल 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस है। इसकी शुरुआत 29 मई 2003 को हुई थी। इस दिवस का उद्देश्य है लोगों को बताना कि

साथ ही बात की थी मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पर। अभी अब हम इस कार्यक्रम में कल 29 मई की बात कर रहे हैं। कल 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस है। इसकी शुरुआत 29 मई 2003 को हुई थी। इस दिवस का उद्देश्य है लोगों को बताना कि शांति सैनिक युद्ध रोकने और आम जनता की जान बचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शांति सैनिक को नीली टोपी वाले भी कहते हैं। ये आर्मी, पुलिस और सिविलियन होते हैं। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस 2026 की थीम है शांति स्थापना का भविष्य।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या आप किसी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं जो आपको न सिर्फ शिक्षण दे बल्कि साथ में दे रोजगार?
4: तो अब आपकी तलाश हुई पूरी, चले आइए AICTE से मान्यता प्राप्त और RGPV भोपाल से संबद्ध सतपुड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां बीटेक कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में डिग्री और साथ ही पॉलिटेक्निक के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में।
3: हमारा पता है सतपुड़ा कैंपस।

0: लालबरा रोड गर्रा बालाघाट।
1: मोबाइल नंबर 6262604111 और 9425836824।
2: श्रोताओं एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट में। श्रोताओं आज है भारतीय सिनेमा के अग्रणी निर्माता निर्देशक महबूब खान की पुण्यतिथि। आपका जन्म 9 सितंबर 1907 को बिलीमोरा गुजरात में हुआ था और आपने 28 मई 1964 को मुंबई में अंतिम सांस ली थी। महबूब की पहचान भारतीय सिनेमा के शोमैन और महबूब स्टूडियो से है। महबूब के शुरुआती जीवन का संघर्ष बहुत ही गरीबी में बीता। महबूब की वर्ष 1980 इसे फिर से सुन लीजिए। महबूब की वर्ष 1920 में भीड़ वाले सीन में काम करने से फिल्म में शुरुआत हुई। आपने स्टंट फिल्मों में एक्टिंग की, फिर 1935 में अल हिलाल से डायरेक्शन शुरू किया। यानी कि महबूब खान की पहली निर्देशित फिल्म अल हिलाल थी जो कि वर्ष 1935 में आई थी। श्रोता हम आपको बता दें कि अल हिलाल का मतलब होता है नया चांद। महबूब खान को इस फिल्म से पहचान मिली और उसके बाद 1936 में आई क्वीन और मनमोहन फिल्म, फिर 1960 में औरत जैसी क्लासिक फिल्म बनाई। श्रोता हम आपको ये भी बता दें कि वर्ष 1935 में बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुए 4 साल हुए थे। आलम आरा पहली बोलती फिल्म 1931 में आई थी। अल हिलाल में भी गाने थे, भव्य सेठ थे। महबूब ने यहीं से अपना शोमैन स्टाइल शुरू किया जो बाद में आन और मदर इंडिया फिल्म में दिखा। हम महबूब खान की पुण्यतिथि पर सादर नमन करते हैं आप ही की फिल्म मदर इंडिया के इस गीत से।

0: सतपुड़ांचल की वादियों में गूंजती आपकी अपनी आवाज
1: आकाशवाणी बालाघाट,
0: शिक्षा सूचना और मनोरंजन की त्रिवेणी,
1: हर पल हर दम आपके साथ, यूं ही बना रहे आपका हमारा साथ।
0: रोजाना सुनते रहिए आकाशवाणी बालाघाट। करनी हो तरक्की, बढ़ाना हो व्यापार, तो आकाशवाणी बालाघाट से कराओ प्रचार प्रसार।
2: आकाशवाणी बालाघाट सदैव आपके विकास में अग्रणी।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट कार्यक्रम में अब एक गीत हम शामिल करते हैं जो मुझे भी पसंद है, जिसे हमने लिया है राजा बाबू फिल्म से। खूबसूरत आवाज़ आप सुनेंगे पूर्णिमा की।

0: तो श्रोताओं, ये था आज का हमारा कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट। श्रोताओं, आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि इस भीषण गर्मी के मौसम में आप अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा और अपने इस दोस्त को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी आज की सुहानी शाम आपको खुशियाँ दे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम से आशीष सेंद्रे को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ संध्या।
1: गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट,
0: गुड इवनिंग बालाघाट। श्रोताओं, अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का प्रसारण। शाम के 6:30 हो चुके हैं। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम।

श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में सबसे पहले आपने सुनी उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की गई गज़ल। अब हम शामिल करते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल।

श्रोताओं, ये खूबसूरत आवाज आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की कार्यक्रम सुगम संगीत में। आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से भी आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम, और एक बार फिर हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल।

तो श्रोताओं, ये थी कार्यक्रम की अंतिम पेशकश जगजीत सिंह की आवाज़ में गई गजल। अब इस कार्यक्रम से आशीष सेंद्रे को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। अब सुनिए आज की प्रसारण सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। श्रोताओं, अब से थोड़ी देर बाद 7:05 पर हम आपके लिए ले श्रोताओं इसे फिर से सुन लीजिए। अब से थोड़ी देर बाद 7:05 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अंग्रेजी में समाचार। 7:10 पर आकाशवाणी भोपाल से प्रादेशिक समाचार दिए जाएंगे, हम रिले करेंगे। 7:21 पर हमारे केंद्र से आप सुनेंगे कार्यक्रम चौपाल और 7:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। रात 8 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम और 8:30 पर पॉप म्यूजिक का प्रोग्राम आप हमारे केंद्र से सुन सकते हैं। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आज पॉप म्यूजिक के प्रोग्राम में हम आपको सुनवाएंगे लक्की अली के गाए कुछ पॉप सॉन्ग।

रात 8:45 पर समाचार संध्या और 9:15 पर स्पॉटलाइट समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 9:30 से आप सुनिएगा विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रमों को। रात 10:30 पर हमारे केंद्र से आप सुन सकते हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। रात 11:00 हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार का अनुप्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात 11:10 पर हमारी प्रसारण सभा समाप्त होगी। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी आज की प्रसारण सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण अब संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी बालाघाट है, 7:05 होने जा रहे हैं। श्रोताओं, अब हम कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे अंग्रेजी में समाचार।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भगवान बुद्ध के परम शिष्यों के अस्थि कलश आज भोपाल से दिल्ली भेजे गए, सांची में दिया गया गॉड ऑफ ऑनर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, देश के हर राज्य का कृषि रोड मैप बनेगा। देश के विभिन्न हिस्सों में आज ईद उल अजहा धार्मिक उत्सव और उमंग के साथ मनाई गई और प्रदेश में भीषण गर्मी जारी, आज 46 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। भगवान गौतम बुद्ध के परम शिष्यों अरिहंत सारिपुत्र और महामोदयान के पवित्र अस्थि कलश आज विशेष विमान से दिल्ली भेजे गए। रायसेन जिला मुख्यालय स्थित विश्व धरोहर बौद्ध तीर्थ सांची में इन अस्थि कलश को सशस्त्र सुरक्षा बलों ने गॉड ऑफ ऑनर दिया। पवित्र अवशेष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष पहल पर मंगोलिया भेजे जा रहे हैं। रायसेन जिले के कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि
1: आज मॉर्निंग में ही जो भगवान शिष्य थे उनके पवित्र जो अस्थियां हैं दर्शन के लिए मंगोलिया ले जाने के संबंध में आज भारत सरकार के प्रतिनिधि भी और साथ में ही जो हमारे यहाँ सोसाइटी है महाबोधि सोसाइटी उनके प्रतिनिधि सभी उपस्थित थे और उनकी सबकी उपस्थिति में आज पवित्र अस्थियों को इसको बाहर निकाला गया डबल लॉक से। और एक जो परंपरा यहाँ है, जब भी पवित्र अस्थियाँ बाहर निकाली जाती हैं, रिलिक्स बाहर आते हैं, तो सबसे पहले जो स्थानीय स्तर पर दर्शन के लिए श्रद्धालु रहते हैं वो दर्शन करते हैं, उसके बाद पूजा अर्चना के बाद एक गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने बताया कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि और किसान कल्याण पर विशेष जोर दिया है। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि
2: हर एक राज्य का हमें कृषि रोड मैप बनाना है। हर एक राज्य, हम पूरा सहयोग करेंगे। यहां आपके कृषि का रोड मैप बनाइए, आपकी एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए, माटी माटी में उपस्थित तत्वों को ध्यान में रखते हुए कौन सी फसल आपके लिए उपयुक्त है, डाइवर्सिफिकेशन के लिए कौन सी उपयुक्त है, और उसके साथ साथ फसलवार भी रोड मैप बनेंगे। खेत बचाओ अभियान के बारे में आज आपको गंभीरतापूर्वक सोचना है। प्रधानमंत्री जी विजनरी लीडर हैं, उनको धरती के स्वास्थ्य की भी चिंता है, भारत की जनता के लिए उनकी हर सांस चलती है।

0: किसानों के हित ऐसी है, लगातार खेत बचाओ अभियान पे जोर दे रहे हैं। उस पर कल प्राकृतिक खेती पर भी चर्चा होगी, संतुलित फर्टिलाइजर के उपयोग पर बात करना है। जैसे विकसित कृषि संकल्प अभियान में हम लोग जुटे थे, सारे हमारे वैज्ञानिक जाएं।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री अमित शाह ने देश के हर अवैध अप्रवासी की पहचान करके उसे निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। आज गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सरकार सीमाओं की सुरक्षा और देश में अवैध अप्रवासन को समाप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी है। मशहूर शायर डॉक्टर बशीर बद्र का आज भोपाल में निधन हो गया। उन्होंने 91 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हिंदी फिल्मों के गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र जी के निधन पर गहन दुख जताया और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर बद्र ने अपनी शायरी के माध्यम से मानवता के साथ जीने का संदेश दिया। समाचारों में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देश सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों में ईद उल अजहा का पर्व अकीदत, भाईचारे और सौहार्द के वातावरण में मनाया गया। सुबह से ही लोगों ने विशेष नमाज अदा कर देश में अमन, चैन और तरक्की की दुआ मांगी। नमाज के बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी। देवास जिले में ईद का पर्व हर्षोल्लास, भाईचारे और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया गया। धार में नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि CBSE की कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में कुछ कमियां आने के बाद अब पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई दिल्ली में संवाददाताओं से श्री प्रधान ने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यार्थियों की शिकायत का समाधान किया जाए और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। श्री प्रधान ने बताया कि लगभग 4 करोड़ स्कैन किए गए प्रश्नों का मूल्यांकन पहली बार CBSE द्वारा OSM प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की परीक्षा की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 और 7 जून को आयोजित की जाएंगी। आज होने वाली परीक्षा ईद उल अजहा के कारण पुनर्निर्धारित की गई थी। NTA ने बताया कि रविवार को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और इन्हें NTA की आधिकारिक वेबसाइट CUET.NTA.NIC.IN से डाउनलोड किया जा सकता है। 6 और 7 जून को परीक्षा देने वाले शेष उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। प्रदेश में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी के साथ आंधी और बारिश का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिनों से कई जिलों में बारिश दर्ज की गई, इसके बावजूद लू और तेज गर्मी का असर कम नहीं हुआ। मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया है कि
2: अभी आगे आने वाले मौसम की बात की जाए तो फिलहाल अभी 2 दिनों के अंदर जो है वो सीवियर हीट वेव का रेड अलर्ट जो है वो डे 1 के लिए निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर जैसे जिलों के अंदर दिया गया है। साथ ही दतिया और भिंड जैसे जिलों के अंदर डे 1 के अंदर ऑरेंज हीट वेव का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। डे 2 के अंदर भी हीट वेव जो है वो प्रदेश के जो नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट से हैं उसके ऊपर देखने को फिलहाल अभी मिलेगी, लेकिन साथ ही एक पश्चिमी विक्षोभ भी हमारे उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित करने जा रहा है कल से, तो उसके होते हुए जो है वर्षा की गतिविधि हमारे प्रदेश के संभागों के डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो काफ़ी बढ़ेगी। और कल जो ऑरेंज अलर्ट जो है वो शिवपुर, मुरैना जैसे जिलों के अंदर हेल स्टॉर्म का भी, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग और हेल स्टॉर्म का 50-60 KMPA के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
1: भारतीय टीम कल से 6 जून तक जापान के काकामिघारा में शुरू होने वाले अंडर 18 एशिया

कप हॉकी 2026 में खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। पुरुषों के वर्ग में भारत को पूल ए में रखा गया है। पूल ए में मेजबान जापान, कोरिया, चीनी, ताइपे और कजाकिस्तान की टीमें सम्मिलित हैं। भारत कल कजाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगा। इसके बाद 31 मई को जापान, 1 जून को कोरिया और 3 जून को चीनी ताइपे के खिलाफ मैच होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल की ट्विसर शर्मा मौत मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट द्वारा रिटायर्ड जज गिरीवाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द किए जाने के बाद सीबीआई ने उन्हें आज गिरफ्तार कर लिया है। राजगढ़ में श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के दौरान 109 श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। प्रदेश शासन द्वारा बच्चों की रचनात्मक प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से समर कैंप 2026 का आयोजन किया जा रहा है। शहडोल जिले में मध्यप्रदेश को शत प्रतिशत साक्षर बनाने के लिए उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा है और कटनी द्वारा नगरवासियों को निमित्त एवं सुचारू पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। 7:21 हुए हैं। श्रोताओं, अब सुनिए कार्यक्रम चौपाल।

0: चौपाल कार्यक्रम सुन रहे समस्त किसान भाइयों को अपने किसान मित्र तूफान सिंह अरिन खेड़े
1: और दीपेश मोहारे का नमस्कार।
2: जैसा कि हमारी चौपाल प्रतिदिन की तरह आज भी है और दीपेश भाई हमारे किसान भाइयों के साथ आज रूबरू हमको होने का मौका मिल रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल तूफान भैया, और हमेशा ही हम अपने किसान साथियों से आकाशवाणी के माध्यम से मिलते ही रहते हैं और नई नई जानकारियों से अवगत कराते हैं।
2: बिल्कुल,
1: जैसे कि तूफान भैया अभी जो मौसम है हमारे किसान साथियों के लिए बेहद ही गर्म मौसम है, और सभी के लिए गर्म मौसम है, लेकिन किसान साथियों के लिए हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो खेतों में ऐसी धूप में भी काम करना होता है उन्हें।
2: बिल्कुल,
1: किसान साथियों का जो अभी काम चल रहा है हमारे किसान साथियों का खेतों में, जो रबी की फसल कटी है उसका अपना जो है अपना जहाँ बिक्री करते हैं हमारे किसान साथी सोसाइटी में या किसी ठेकेदारों को या फिर जो भी बिक्री खरीदते हैं उन्हें हमारे किसान साथी खेतों से अपना जो धान की फसल है विक्रय कर देते हैं, और अच्छा मुनाफा भी जैसे तैसे उन्हें मिल ही रहा है क्योंकि धान की फसल भी हमारे किसान साथियों को अच्छी हुई है। साथ ही साथ मैं अभी देखता हूं कि खेतों में सफाई का भी काम हमारे किसान साथी कर रहे हैं।
2: बिल्कुल, और इस तरह हमारे किसान भाइयों का मिला जुला काम जो है यह चल रहा है, और यह जो समय है हमारे किसान भाइयों के लिए बड़ा प्रमुख समय है क्योंकि रबी धान की फसल की लगभग गहाई का काम जारी है, कुछ किसान भाइयों का हो रहा है, कुछ लोगों का होने वाला है। साथ ही साथ आगामी जो हमारी खरीफ की फसल है उसकी तैयारी के लिए खेतों की जो तैयारी है इसी समय में की जाती है, और बिल्कुल सही है कि तापमान बहुत बड़ा हुआ है तो क्यों ना हम जो भी काम कर रहे हैं खेतीबाड़ी के तो थोड़े से काम तो जरूर करें, काम करना भी जरूरी है, थोड़ी सावधानी रखें। भाई धूप में काम कर रहे हैं तो कम से कम सर पर गमछा वगैरह बांधे, टोप वगैरह का उपयोग करें, हो सके तो काले चश्मे का भी उपयोग कर सकते हैं ताकि तेज रोशनी हमारे आंखों पर प्रभाव न डाले।
1: बिल्कुल तूफान भैया, हमारे किसान साथियों की एक चीज और मैंने देखा कि हमारे किसान साथी को पहले रबी की फसल को भी ऐसी कटाई करके गहाना होता था, लेकिन अभी बहुत अच्छा हो गया कि तकनीकी का जो दौर है और हमारे किसान साथियों के लिए कटाई का यंत्र यहाँ उपलब्ध हो जाता है, हार्वेस्टर जिसे कहते हैं हम, और समय एक घंटे में लगभग उनके जो एक दो एकड़ की कटाई कर देते हैं हमारे किसान साथियों की, और बकायदा जो बीज है एक जगह

0: भी हो जाता है। तो
1: जी
0: हमारे किसान साथियों का यहाँ पर एक समय बचा हुआ है और अच्छा खासा उन्हें खेतों की तैयारी के लिए समय मिल जाता है और अच्छी तैयारी कर लेते हैं।
1: बिल्कुल। तो इस तरह किसान भाइयों, आज के समय और हालात के हिसाब से हमें अपने कृषि कार्यों में परिवर्तन करना भी बहुत ज़रूरी है। अब परंपरागत कृषि कार्य जो करते आ रहे थे उसमें कहीं ना कहीं तकनीकीय रूप लेना बहुत ज़रूरी है। तो दीपेश भाई, बातचीत जानकारियां तो चलते ही रहेगी और होती ही रहेगी। हम किसान भाइयों के साथ करते हैं मनोरंजन इस लोकगीत के माध्यम से।
0: बिल्कुल।

0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लोकगीत तूफान भैया हमारे किसान साथियों को सुनाए, जिसका इंतजार हमारे किसान साथी कर रहे हैं, झिमिर झिमिर बारिश का इंतजार हमारे किसान साथी इस समय बिल्कुल निगाह लगाकर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे किसान साथियों का अगला पड़ाव बारिश का ही होता है और बारिश की खेती की होती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और बारिश का इंतजार कहें तो एक बोए बेसब्री से होता है, और यह दौर कुछ हद तक कुछ हल्की फुल्की बारिशें हमारे कुछ स्थानों पे हो भी चुकी है। साथ ही साथ यह संदेश भी है कि भाई

0: आगामी हर व्यक्ति चाहता है कि बारिश जल्दी से जल्दी हो जाए। क्या है, गर्मी का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, साथ ही साथ किसानों की अपेक्षाओं के हिसाब से ये जो क्रम चल रहा है खेती से बाड़ी से, यह बिल्कुल उनका सुझाव अपने जगह में है।
1: बिल्कुल, और हम तूफान भैया अपने किसान साथियों को हमारा जो अगला क्रम होता है किसान वाणी, उस क्रम में लेकर चलते हैं, क्योंकि अब चौपाल का जो कार्यक्रम है अब यहीं पर हमें समेटना होगा और लेकर चलते हैं अपने किसान साथियों को अगले कार्यक्रम किसान वाणी में।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: पुनः स्वागत करते हैं अपने किसान साथियों का कार्यक्रम किसानवाणी में। तूफान भैया, जैसे कि हम अपने किसान साथियों को किसानवाणी में भेंट वार्ता के माध्यम से नए नए किसानों से मिलाते हैं और नई नई जानकारियाँ अपने किसान साथियों को हम उनके कृषि कार्य में उपयोग करने के लिए बताते रहते हैं।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, और किसान भाइयों का बेसब्री से इंतज़ार भी होता है कि आज क्या नई बातें, नई जानकारियाँ मिलेगी। साथ ही साथ किसानवाणी का जो क्रम है किसानों के लिए बड़ा प्रमुख है, और इस क्रम में जैसे अभी बात करें वर्तमान मौसम की, तो सही में शीत के साथों साथ बात आती है ग्रीष्मकाल की, तो ग्रीष्मकाल का असर हमारे लिए बहुत तकलीफमय तो हो रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: है ना, हर व्यक्ति चाहता है कि थोड़ा सा ठंडक कहीं ना कहीं से हो।
1: बिल्कुल,
2: और यह दौर वर्तमान को देखते हुए, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों ने हल्का तो बचाव करना।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तूफान भैया, और मैं देखता हूँ अपने किसान साथियों में जो पशुपालक भाई है उन्हें भी बहुत इस मौसम का सामना करना होता है कठिनाइयों के साथ। हाँ। क्योंकि जो हरा चारा होता है हमारे पशुओं के लिए वे पूरे तरह से समाप्त हो जाते हैं, खेतों में भी हरा चारा नहीं होता, जंगलों में हमारे किसान साथी पशु चराने जहाँ जाते वहाँ भी उन्हें हरा चारा नहीं मिलता। तो ये जो अभी का जो माह होता है, इस माह में हमारे किसान साथियों को तो होती ही है तकलीफ, लेकिन पशुपालकों को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। जो पशुपालक भाई जो दूध व्यवसाय करते हैं उन्हें ज़्यादा अंतर पड़ता है, क्योंकि उन्हें अब इसकी जो भरपाई है दाना, और जो हमारे किसान साथी अच्छा संतुष्ट आहार खिलाते हैं अपने पशुओं को, तो यहाँ कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा सा नुकसान उठाना होता है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में उन्हें खरीदी करनी होती है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, और मतलब यह हुआ कि हमें खर्चे ज़्यादा करना पड़ता है, दूध का उत्पादन कम होता है, और गर्मी के समय में अक्सर दूध का उत्पादन कम हो जाता है। तो इसके लिए अगर अपन दूध का उत्पादन बनाए रखना चाहते हैं तो इसके संतुलित आहार का उपयोग करें, कोशिश करें कि पशुओं का नहलाना धुलाना कम से कम दिन में एक बार तो हो ही जाना चाहिए। उसके बाद पानी पिलाने वाली जो सुविधाएं हैं, कुएं का ठंडा पानी हो और वह पानी कम से कम 2 से 3 बार दिन में दिखाएं, ताकि पशु की इच्छा अनुसार वह पानी को पी सके और अपने शरीर का संतुलन को बनाए रखे।
1: बिल्कुल, और पशुपालकों को मैं एक और सूचना देना चाहूँगा कि यदि पशु को हम बार बार पानी पिलाते हैं तो कहीं ना कहीं वो पीने में कमी करता है, तो ऐसे स्थिति में अगर हम उनके पानी में थोड़ा सा नमक की मात्रा डाल दें और थोड़ा सा स्वादिष्ट हो जाता है तो हम पशु उसको चाव से फिर उसको ग्रहण कर लेते हैं।
2: बिल्कुल, और नमक की जो मात्रा है वह पशुओं के लिए बड़ी प्रमुख होती है, क्योंकि पहले जो पशुओं को चारा खिलाया जाता था अक्सर हमारे यहाँ पैरा खिलाई जाती है, तो परंपरागत रूप से गाय का कार्य होता था, तो बैलों के द्वारा और साथ ही साथ जो पशुओं को उसके पीछे बांध दिया करते थे गाड़े के, तो वो पशु चलते थे और उसमें यूरिन पेशाब करते थे, इसके माध्यम से भी पैरा में एक प्रकार से यह जो कुछ कमियां थी वह पूरी हो जाती थी, क्योंकि हार्वेस्टर की पैरा में यह चीज़ें नहीं मिलती। तो नमक का प्रयोग बहुत ज़रूरी रूप से हमारे किसान भाई अपने पशुओं के लिए करें। हम बातचीतें और भी करेंगे, जानकारी क्यों ना हम किसान भाइयों को दें इस भेंट वार्ता के माध्यम से।
1: बिल्कुल
3: किसान भाइयों, जैसा कि हमारा कृषि कार्य के साथ पशुपालन का बहुत लंबा रिश्ता है और कृषि का एक रीढ़ की हड्डी का रूप भी माना जाता है, तो साथियों अपन पशुपालन तो करते ही हैं, लेकिन अगर कुछ जानकारियों के अभाव में कुछ चीज़ें हमें लाभ नहीं मिल पाती है तो उसका हम ज़रूर पूरा लाभ ले सकते हैं। तो इसी क्रम में हमारे बीच हमारे

0: एक साथी हैं जी, हम जाने आपका परिचय।
1: गिरधारी तीतर मारे गौ सेवक, हाँ। वरिष्ठ
0: ग्राम
1: डोरली, ग्राम पंचायत बमने
0: जी। जैसे आप गौ सेवक हैं, तो गौ सेवक के क्या कार्य होते हैं, क्या काम करते हैं आप?
1: गौ सेवक के कार्य है लोगों को सुझाव देना, सबसे पहले पशुओं के बारे में टीकाकरण, बध्याकरण और अन्य जो जानकारियां आती हैं, चाहे शासन की हो, उनसे अवगत कराना।
0: तेतर मारे जी, जैसे तो अभी आपको ग्रामीण अंचलों में ऐसी पशुओं से संबंधित कुछ समस्याएं दिख रही है?
1: हाँ, दिख रही ना। सबसे पहली बात तो पशुओं में जो है न्यूट्रिशन, मिनरल्स की सबसे ज़्यादा समस्या है। अब लोगों को क्या है उसके बारे में, जो आम जो है नागरिक है या मान लो पशुपालक, उसमें उनको उस बारे में जानकारियाँ बहुत कम हो जाती। उनकी जो देखभाल करते हैं उनमें सबसे बड़ा होता है मिनरल्स, मिनरल्स डिफिशेंसी होती है, और उसमें जो होता है आपका परजीवी, चाहे गाय हो भैंस हो, पेट पशुओं के पेट में परजीवी पैदा होती है, और पैदा होने के साथ साथ पेट में, जिगर में ये जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा विकराल रूप में होते हैं।
0: जैसे कृमि अगर हो गए हैं तो आप पशुपालकों को ऐसे समझाएंगे कि उसकी पहचान क्या है और उसमें क्या लक्षण आते हैं?
1: पशुओं में जब कृमि हो जाते हैं तो पेट बड़ा होने लगता है ना, हाथ पर छोटे छोटे हो जाते हैं और बाल खड़ी हो जाती है और चमड़ी उखड़ी उखड़ी होती है ना,
0: तो इस तरह से लक्षण इसके होते हैं। तो इसका क्या उपाय निकालते हैं आप?
1: अब उपाय में तो ऐसा है कि देसी अगर मान लो उपाय में है तो पशुपालक को हर सप्ताह में हर पशुओं को नीम की पत्ती खिलाना जरूरी चाहिए, और बाजार में जो आते हैं कृमिनाशक दवाइयाँ वो भी देना जरूरी है, और उनकी चमड़ियों के लिए ये जो है अपना साबुन वगैरह जो लगाते हैं ना सोप, वो भी लगाना बिल्कुल ज़रूरी है। तो उससे क्या है परजीवी पेट के, तो क्या है एक लोकल भाषा में आपका नीम से कड़वा होता है तो उससे वो मर जाती है, और ऊपर वाली जो परजीवी है तो जो है लोग सामान्य भाषा में लोग क्या है नीम बहुत सी जो है जो साबुन वगैरह है कीटाणु के लगाने के लिए तो वो नष्ट हो जाता है।
0: जैसे साबुन लगाने के पूर्व या साबुन के बाद ऐसी कौन सी सावधानी रखना चाहिए पशुपालक ने?
1: सबसे पहली बात तो क्या है पशुओं को साफ सुथरा नहला देना चाहिए, है ना। नहला देने के बाद में उसको साबुन लगा देना चाहिए, और लगाने के बाद में अगर हो सके तो अगर मान लो कोई साबुन है कभी कभी क्या है हानि भी पहुंचा देता है, उसको दो चार घंटे रख देना चाहिए, उसके बाद में नहला देना चाहिए।
0: तो ये कृमिनाशक दवा पिलाने या बौझने के पहले सावधानियां ऐसी कौन सी रखना चाहिए?
1: अब क्या है अगर आप पशु को अगर कृमि पिलाते हैं कृमि की दवा तो उसको एक तो सुबह खाली पेट में पिलाना चाहिए, है ना, और ऐसा पिलाए कि उसमें आने जो गले में अगर जाती है, अगर मान लो ज़्यादा अगर आप गले को दबा देते हैं तो पशु की दुर्घटना भी हो सकती है, तो इसलिए सावधानी बिल्कुल ज़रूरी है। और उसके साथ साथ में पशुओं को रख रखाव के लिए आपको क्या है विटामिन से यानी कृमि की दवा देने के बाद में आपको लीवर के लिए भी दवा पिलाना है, आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वगैरह है फीडिंग मिनरल्स देना जरूरी है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, जैसे कृमि अगर पेट में बने हुए हैं, जड़ बने हुए हैं, तो कृमि की दवा पिलाने से क्या वह क्या लक्षण फिर दिखाते हैं कि इसमें यह कृमि की समस्या थी या किसी पिशी में नहीं थी, इस बारे में
1: क्या है? सबसे पहली बात

0: जिस पशु में अगर कृमि की समस्या है तो सबसे पहली बात तो उसके आँखों से आंसू आएगा, कीचड़ आएगा, अच्छा। है ना, और पेट फिर बड़ा होना चालू हो जाता है, गोबर में भी अगर कभी पतला करेगा कभी हार्ड करेगा गोबर,
1: अच्छा।
0: हाँ, तो ये लक्षण है उसके। अच्छा।
2: दवा पिलाने के बाद गोबर में कुछ परिवर्तन आता है या पशुओं में कुछ परिवर्तन आता है?
0: नहीं, दवा पिलाने के बाद कभी कभी पशुओं में परिवर्तन आ जाता है। अच्छा। परिवर्तन कैसा आता है कि अगर आपने दवा पिलाई, दवा पिलाने के साथ साथ क्या हो जाता है कि लूज मोशन हो जाता है। अच्छा। लूज मोशन होने के बाद में जो जितने भी है वर्म्स है वो सब बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकलने के बाद पशु सुस्त भी हो जाता है।
2: तो स्वस्थ होने की स्थिति में ऐसा लग रहा है तो फिर कुछ क्या और खाद्यान्न देना चाहिए ताकि वो सुस्ती कम हो जाए?
0: तो क्या सुस्त होने के बाद में क्या है, मार्केट में बहुत से ऐसे आते हैं कि एनर्जी बूस्टर आता है ना, तो एनर्जी बूस्टर को पिला सकते हैं। उसके बाद हम लीवर वाली जो दवा बिल्कुल देना जरूरी है, नहीं तो क्या लीवर डैमेज हो जाता है।
2: तो इस तरह किसान भाइयों यह जो बातें हैं हमारे पशुपालक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारे गौशक भाई तितरमारे जी ने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: इधर क्या कर रहा है?
1: इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
2: परम तो सभी डाले।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परम्परा है, परम्परागत खेती।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: किसान साथियों, आज हम ग्राम कुम्हारी में, जो कि बालाघाट के समीप है, यहाँ पर हम आपको एक ऐसी महिला कृषक से मिलाने जा रहे हैं जो अपने खेतों में फूलों की खेती करते हैं। सबसे पहले आपका नाम बताइए।
7: अंबिका बिसाने।
6: आप अंबिका बिसाने हैं, और जैसे कि आप फूलों की खेती करते हैं, तो ये फूलों की खेती करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
7: मेरे मायके में खेती करते थे फूलों की, वहीं पे सब फूल वगैरह खेती लगा रहे थे, तो वहीं से मैं सब कुछ सीख के आई। यहाँ पे आने के बाद, शादी के बाद, थोड़ी सी जगह में हमने फूल लगाए। फूल में अच्छी उपज आने के बाद उसको धीरे धीरे बढ़ाते गए, और इससे हमने उसे बढ़ाते बढ़ाते और भी बढ़ाने की इच्छा है।
6: जैसे कि आप फूलों की खेती करते हैं, तो सबसे पहले आपको तैयारी में क्या करना होता है?
7: सबसे पहले तो जमीन की जुताई करनी पड़ती है, कैलरी बनानी पड़ती है, और जैसे कि गोबर खाद है उसको डालना पड़ता है उसके अंदर में गड्ढे वगैरह करके, और रोपाई सबसे मेन तो है, रोपाई डालना पड़ता है। बिजाई जैसे वाफे वाफे बना के उसमें बिजाई डालना पड़ता है। जैसे भट्टे और टमाटर के रोप तैयार करते हैं, उसी तरह फूल के रोप भी तैयार करना पड़ता है।

0: रोपा तैयार करने के बाद जैसे कि जमीन की आप तैयारी करते हैं, तो जमीन की तैयारी में हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है?
1: जमीन जैसे जोताई करके उसमें खाद डाल देना चाहिए, उसके बाद है तो उसको एकदम नरम यानी भुरमुरी करके उसकी घाड़ तैयार करके फिर उसको लगानी पड़ती है रोपा को।
0: सिंचाई की व्यवस्था, हमें सिंचाई किस तरीके से करना होता है?
1: गर्मी में जैसे 8 दिन के 8 दिन सिंचाई करनी पड़ती है, और ठंडी का मौसम हो तो 15 दिन में करना चाहिए।
0: मतलब कि सिंचाई का हमें इस प्रकार ध्यान रखना है कि खेतों में नमी बनी रहे, और जैसे कि कुछ कीट व्याधि भी, इसका भी प्रकोप फूलों की खेती पर होता है, तो इसका समाधान आप कैसे करते हो?
1: कृषि केंद्र जाके वो सलाह लेते हैं अपने वैज्ञानिकों से जी। और उसके आधार पर जैसे दुकानों से कीटनाशक लाके फवारा करके मार देते हैं।
0: ये आपके खेतों में मैं देख रहा हूँ कि ये अलग अलग प्रकार की प्रजातियाँ दिख रही है, तो किन किन प्रजातियों का आप उत्पादन करते हैं और खेती करते हैं फूलों की?
1: ग्लांडी है और गेंदा है, डेजी है।
0: इसके साथ साथ जैसा मार्केट व्यवस्था कहाँ करते हैं? बालाघाट में करते हैं तो कहाँ करते हैं?
1: बालाघाट में दुकानों में साथ में संपर्क उनको जिस तरह के यानी मार्केट में आज जितना फूल लग रहा है उतने ही मार्केट में ले जाके उनको देते हैं, दुकानों में ले जाके दे देते हैं। वो है तो खुद कॉल करके हमको मंगा लेते हैं कि हमको इतना चाहिए उतना चाहिए, उसी हिसाब से हम लोग को देते हैं। हम लोग
0: कितनी आय आप एक साल में फूलों की खेती से प्राप्त कर लेते हैं?
1: करीब करीब 70 या 80 हज़ार हो जाती है सीजन में।
0: आप हमारे और भी किसान भाइयों जो कि खेती करते हैं, तो उनको आप क्या प्रेरणा देना चाहोगे कि वो फूलों की खेती करें?
1: हम तो ये जो भी हमें पूछने आते हैं या देखने आते हैं तो उन्हें यही प्रेरणा देते हैं कि आप भी लगाओ, इस तरह से खेती करो, मार्केटिंग अच्छी मिलेगी, अच्छी आमदनी मिलेगी। जैसे हम बता रहे हैं आप वैसे करो, ऐसे कई लोग भी आते हैं, पूछ के चले जाते हैं और वो भी लगाते हैं, करते हैं कोशिश वो लोग। मैं जिस तरह से खेती कर रही हूँ वैसे ही और भी किसान लोगों को मैं बताना चाहूंगी, भाई लोगों को, कि वो भी करे और आगे बढ़े, अपनी आय को दुगनी करे।
0: इसी के साथ किसान भाइयों हमारे साथ है, किसान भाई आपका नाम बताइए।
2: द्वारका प्रसाद बिसाने।
0: द्वारका जी, आप फूलों की खेती के बारे में हमारे किसान भाइयों को क्या बताना चाहेंगे?
2: क्या है, मैं जो डेजी लगाता हूँ वो जनवरी के महीने से चालू हो जाती है
0: जी।
2: वो 3 महीने चलती है, जनवरी फरवरी मार्च, और एंडिंग में 10 तारीख अप्रैल तक के ख़त्म हो जाती है। ये ठंडी का हो गया डेजी।
0: हाँ।
2: उसके बाद में सातों सात में हम लगा देते हैं कलर, जिसको ग्लांडी बोलते हैं।
0: अच्छा।
2: वो ग्लांडी चलती है जनवरी से तुम्हारे सितंबर तक के चल सकती है।
0: अच्छा।
2: सितंबर तक के, और पानी अधिक हुआ तो पेड़ खराब होने लगता है।
0: अच्छा।
2: हाँ,
0: जिनके लिए आप जैसे आपको बीज की आवश्यकता होती होगी, तो बीज कहाँ से प्राप्त करते हैं?
2: बीज मैं नागपुर, पुणे और इंदौर से लाता हूँ।
0: मार्केट व्यवस्था की बात करें तो आपको अच्छी कीमत फूलों की मिल जाती है?
2: हाँ, मार्केट कीमत अच्छी है, एक ही रेट रहता है अपना चंडी का, साल में एक रेट बनता है अपना।
0: अच्छा।
2: हाँ।
0: किसान भाइयों को आप फूलों की खेती करने के लिए और ऐसी ध्यान रखने योग्य बातें क्या क्या बताना चाहेंगे? जैसे कि हम फूलों की खेती अगर कर रहे हैं तो हमें और किन किन बातों का ध्यान रखना होता है कि हमारे अच्छी उपज हो और अच्छा उत्पादन हमें मिले?
2: मैं तो किसान भाइयों से यही कहूँगा कि जैसे हम लोग करते हैं वैसी खेती करें, खाद पानी सोडा और उसकी देख रेख करे। हम सलाह सभी को वही देते हैं जो हम लोग करते हैं।
0: जैसे सावधानी की बात करें तो हमें ऐसी कौन कौन सी सावधानी बरतना होता है ताकि अच्छा उत्पादन हो?
2: क्या है, समय पे खाद पानी, और जैसे बीमारी लग गई, माऊ लगती है और इल्ली का रहता है प्रकोप, तो एक बार छिड़काव करो, फिर दोबारा कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ खाद और पानी देने का रहता है। 15-15 दिन में खाद पानी देते जाओ
0: जी।
2: मैं यही कहूँगा कि आप जैसे ही मैं कर रहा हूँ खेती फूल की, इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है, लागत कम है, तो किसान भाइयों से यही कहूँगा कि वो भी ऐसा ही करें कि उनको भी प्रॉफिट मिले।
0: बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने फूलों की खेती के बारे में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: दीपेश भाई, इसी लोकगीत के साथ हमारा आज का किसानवाणी कार्यक्रम का सफर यहीं पर समाप्त होता है। तो हम किसान भाइयों से लेते हैं अनुमति, किसान भाइयों स्वीकारे अपने साथी तूफान सिंह हरिणखेड़े
1: और दीपेश मोहारे का नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का प्रसारण। रात के 8 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने चुना था हकीकत फिल्म से। युगल स्वर दिया था कुमार सानू और अलका याग्निक ने। गीत था गुलशन बावरा का, संगीत दिलीप सेन समीर सेन का। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आप सुनिए शंकर महादेवन और साथियों की आवाज़ों में हम आपके दिल में रहते हैं फिल्म का ही गीत। गीतकार हैं समीर, संगीतकार हैं अनु मलिक।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना शंकर महादेवन और साथियों की आवाज़ों में हम आपके दिल में रहते हैं फिल्म का गीत। गीतकार थे समीर, संगीतकार थे अनु मलिक। आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। अब सुनते हैं विनय बिहारी की शब्द रचना निखिल विनय के संगीत में। आवाज़ें दी हैं उदित नारायण, पमिला जैन और खामोश ने। फिल्म का नाम है दुश्मनी।
1: अरे शादी बनारस का लड्डू है,

तो श्रोताओं, ये थी शब्द रचना विनय बिहारी की। संगीत तैयार किया था निखिल विनय ने, आवाज़ें दी थी उदित नारायण, पमिला जैन और खामोश ने। फिल्म का नाम था दुश्मनी। आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। अब आपको सुनवाते हैं थानेदार फिल्म का वो गीत जिसमें बोल लिखे हैं अनजान ने, संगीत से संवारा है बप्पी लहिरी ने, आवाज़ें दी है अमित कुमार और साथियों ने।

0: शादी मत करना, शादी है बर्बादी। दी दी दी एंड। शेर था चूहा हो गया।
1: श्रोताओं, ये गीत था अमित कुमार और साथियों की आवाज़ों में, जिसे हमने लिया था थानेदार फिल्म से। बोल लिखे थे अनजान ने, धुन तैयार की थी बप्पी लाहिरी ने। कार्यक्रम का हम समापन करते हैं मेजर साहब फिल्म के इस गीत से। गीत है आनंद राज आनंद और देव कोहली का। संगीत तैयार किया है आनंद राज आनंद ने, आवाज़ दी है कुमार सानू ने।

श्रोताओं, कुमार सानू के गाए मेजर साहब फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी बालाघाट है। इस समय रात के 8:30 हुए हैं। अब आपको सुनवाते हैं पॉप म्यूजिक का प्रोग्राम। श्रोताओं, पॉप म्यूजिक के प्रोग्राम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं लक्की अली के गाए कुछ पॉप सॉन्ग।

इंद्र से अभी आप सुन रहे हैं पॉप म्यूजिक का प्रोग्राम, और आप इस कार्यक्रम में सुन रहे हैं लकी अली के गाए कुछ पॉप सॉन्ग।

0: सतपुड़ांचल की वादियों में गूंजती आपकी अपनी आवाज
1: आकाशवाणी बालाघाट,
0: शिक्षा सूचना और मनोरंजन की त्रिवेणी,
1: हर पल हर दम आपके साथ, यूं ही बना रहे आपका हमारा साथ।
0: रोजाना सुनते रहिए आकाशवाणी बालाघाट। करनी हो तरक्की, बढ़ाना हो व्यापार, तो आकाशवाणी बालाघाट से कराओ प्रचार प्रसार।
2: आकाशवाणी बालाघाट सदैव आपके विकास में अग्रणी।

श्रोताओं, यह है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश। कार्यक्रम है पॉप म्यूजिक और आज के कलाकार आप जान ही चुके हैं, लकी अली।

श्रोताओं, ये था आज का हमारा पॉप म्यूज़िक का प्रोग्राम। और पॉप म्यूज़िक के प्रोग्राम में आज हम आपको सुनवा रहे थे लकी अली के गाए कुछ पॉप सॉन्ग। ये आकाशवाणी बालाघाट है, इस समय रात के 8:45 होने जा रहे हैं। श्रोताओं, कुछ ही पलों में हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र समाचार संध्या के लिए।

0: समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठी की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धारमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धारमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डी के शिव कुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबरॉय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देबरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देबरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थागंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग हैं, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
4: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिरला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिरला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
2: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
3: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
2: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
3: जी हाँ, ऐसे ही कालजई अशरार ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुंचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
2: अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
1: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
4: जो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण उत्तरी भारत कुछ हिस्सों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूर्वी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीटवेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निम्हान ने श्योक मेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं अर्पण फिल्म के इस गाने के साथ। इसे गाया है लता मंगेशकर ने, गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का है। फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में सभी दोस्तों को यूनुस खान का नमस्कार। आज उस फिल्मकार की कहानी जिसकी फिल्में इस शेर के साथ शुरू होती हैं।
1: मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।
0: बहुत बरस पहले की बात है, गुजरात में बड़ौदा के पास एक गांव में एक गरीब परिवार में एक लड़का रहता था। उस लड़के को फिल्मों का ऐसा शौक था कि बड़ौदा से निकलने वाली किसी ट्रेन में सवार हो जाता और आसपास के गांव या कस्बे में पहुंच जाता, लाइन से एक दो फिल्में देखता और लौटती ट्रेन से चुपचाप वापस आ जाता। किसी को कुछ पता नहीं चलता। घर वाले ये सोचते कि ये लड़का यहां वहां भटकता रहता है, जाने किन किन के साथ खेलता रहता है। ऐसे ही एक दिन वो ट्रेन में बैठा, मुंबई की तरफ जाने के लिए इरादा ये था कि वो कभी वापस नहीं आएगा। पिताजी को पता चल गया, पिताजी ने जमकर कुटुम्बस की और वापस ले आए। आज के फनकार कार्यक्रम में आज रोचक दास्तान महबूब खान की।

महबूब खान का जन्म 9 सितंबर 1906 को बड़ौदा के पास सरार गांव में हुआ था। बहुत सामान्य सा परिवार था, छोटा मोटा काम था, बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, जिंदगी खुशनुमा थी। जैसा कि हमने आपको बताया, महबूब खान की बचपन की जिंदगी में ट्रेनें चला करती थीं और उन ट्रेनों पर सवार होकर वो आसपास जाते, फिल्में देखते और वापस लौट आते। जहन में बस ये चलता रहता कि किसी तरह से वो खुद को पर्दे पर देख पाए, शौक अभिनय करने का था। तो भाई ये सिलसिला जारी रहा। पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी थी नहीं, इसलिए कायदे से पढ़ाई लिखाई हो न सकी और फिर हुआ यूं कि आसपास के शहरों में फिल्में देखना होता रहा। समय बीतता गया। हुआ यूं कि महबूब खान की दोस्ती एक रेलवे गार्ड से हो गई थी और उस रेलवे गार्ड ने उनको पूरी तरह से यकीन दिला लिया कि उनके भीतर फिल्मी पर्दे पर अभिनेता बनने के गुण हैं और उन्हें भाग जाना चाहिए मुंबई। हुआ यही, 16 बरस की उम्र में महबूब खान मुंबई भाग आए और सिनेमा में अपना नसीब आजमाने लगे। कांस्टेबल पिता को पता चल गया, वो सीधे मुंबई आए, अपने बेटे को ढूंढा, उसका कान पकड़ा और उसको वापस बड़ौदा ले गए। वहां जबरदस्ती महबूब खान की शादी कर दी गई, ये सोचकर कि वो बस यहां बंध जाएंगे और सिनेमा के अपने जुनून को जहन से निकालकर फेंक देंगे। बहुत जल्दी महबूब खान एक बेटे के पिता भी बन गए, लेकिन जिम्मेदारी नहीं आनी थी सो नहीं आई और आखिरकार महबूब खान ट्रेन में सवार होकर आ पहुंचे मुंबई।

मुंबई में महबूब खान उस जमाने के वीटी स्टेशन के पास ज्योति स्टूडियोज के बाहर खड़े रहते और इस फिराक में रहते कि किसी तरह से स्टूडियो में घुसने का मौका मिल जाए, बाकी का काम वो निपट लेंगे और किसी तरह से अभिनेता तो बन ही जाएंगे। लेकिन ये हो नहीं रहा था। दिन पर दिन बीत रहे थे, महबूब खान रातें प्लेटफॉर्म पर सोते हुए गुजारते, तरह तरह की परेशानियां होती, वो हौसला नहीं हारते, हर सुबह ज्योति स्टूडियोज के सामने खड़े हो जाते। एक दिन गार्ड सचमुच इंप्रेस हो गया और उसने महबूब खान की मुलाकात करवाई आर्दशीर ईरानी से, जो उन दिनों भारत की पहली बोलती फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहां से महबूब खान की गाड़ी चल पड़ी क्योंकि आर्दशीर ईरानी ने उन्हें बतौर एक्स्ट्रा काम दिया। सन 1927 में ये फिल्म थी अली बाबा और 40 चोर। इसके बाद वो क्राउड का हिस्सा बनते रहे, फिर जूनियर आर्टिस्ट बने, फिर सपोर्टिंग रोल्स मिलते रहे और फिर ऐसा मौका आया जब भारत की पहली बोलती फिल्म के हीरो के तौर पर आर्दशीर ईरानी ने महबूब खान को बस चुन ही लिया था। लेकिन फिल्मों में पैसा लगाने वाले और तब के विशेषज्ञ ये मानते थे कि ऐसे लड़के पर दांव नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि बोलती हुई फिल्में बनाना अपने आप में एक बड़ा दांव है। महबूब खान को इस रोल से हटा दिया गया। वहीं उन्हें समझ में आ गया कि अभिनय में वो कुछ ज्यादा तीर नहीं मार पाएंगे, उन्हें जिंदगी में कुछ और करना चाहिए। यहां से एक नया जुनून शुरू हुआ, अपनी एक स्क्रिप्ट लिखने और उसका निर्देशन करने का। उन्होंने आखिरकार अपनी एक स्क्रिप्ट पूरी की और अलग अलग स्टूडियोज के चक्कर फिर से काटने लगे। प्रोड्यूसर्स उनकी कहानी सुनते, उन पर हंसते और उन्हें दरवाजा दिखा देते। आखिरकार सन 1935 में एक प्रोड्यूसर को उनकी कहानी पसंद आई और तब आई महबूब खान की निर्देशित पहली फिल्म अल हिलाल। ये फिल्म सीसिल बी डिमेलो की जानी मानी फिल्म साइन ऑफ द क्रॉस से प्रेरित थी। फिल्म चल पड़ी और महबूब खान की गाड़ी भी चल पड़ी। लगभग यही दौर था जब चिमनलाल देसाई के सागर मूवी टोन में महबूब खान बतौर विलन काम करते थे और अच्छे खासे पैसे बना रहे थे। इसी दौरान सागर मूवी टोन ने उन्हें निर्देशन का मौका दिया। सन 1936 में महबूब खान ने डेक्कन क्वीन फिल्म बनाई। सन 1939 में आई एक ही रास्ता। सन 1940 में अली बाबा। सागर मूवी टोन के लिए उन्होंने सन 1940 में बनाई अपनी फिल्म औरत।

बाद महबूब खान सागर मूवी टोन और नेशनल स्टूडियोज की फिल्मों का निर्देशन करते रहे। सन 1940 में आई फिल्म औरत महबूब खान के करियर की एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। सन 1942 में महबूब खान ने बनाई फिल्म रोटी और उसके बाद फिल्म नजमा का निर्देशन किया। ये फिल्म साल 1943 में आई थी। इसके बाद उन्होंने तकदीर और हुमायूं जैसी फिल्में बनाई। सन 1946 महबूब खान के निर्देशन में आई फिल्म अनमोल घड़ी।

अनमोल घड़ी के कलाकार थे नूरजहां, सुरैया और सुरेंद्र। इस फिल्म के गाने तनवीर नकवी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था। 11 नवंबर 1946 को रिलीज की गई ये फिल्म काफी कामयाब रही।

सन 1949 महबूब खान के करियर की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म आई अंदाज। कलाकार थे दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर फरीदुन ईरानी थे। 26 अगस्त 1949 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। ये फिल्म एक प्रेम त्रिकोण थी। इसके गाने मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था।

सन 1952 महबूब खान लेकर आए अपनी बेमिसाल फिल्म आन। इसके कलाकार थे दिलीप कुमार, निम्मी, प्रेमनाथ और नादिरा। संगीत नौशाद का था। ये फिल्म 4 जुलाई 1952 को रिलीज की गई थी।

सन 1954 महबूब खान की फिल्म आई अमर। 1 अक्टूबर 1954 को रिलीज इस फिल्म के कलाकार थे दिलीप कुमार, मधुबाला और निम्मी। संगीत नौशाद का था।

जिसने अपनी यात्रा बतौर स्पॉट बॉय शुरू की हो और जिसके सहन में हो अनमोल ऊंचाइयों को छूने के सपने, उस कलाकार ने मुंबई फिल्म उद्योग को दिया हॉलीवुड स्टाइल का पहला फिल्म स्टूडियो महबूब स्टूडियोज। महबूब स्टूडियोज का आगाज सन 1952 में हुआ। मुंबई के बांद्रा में स्थित इस स्टूडियोज में आज भी फिल्मों की शूटिंग की जाती है।

0: भारत के इतिहास में 1957 का अक्टूबर महीना बड़ा मायने रखता है। इसी साल 3 अक्टूबर को यानी 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती अस्तित्व में आई थी और विविध भारती पर प्रसारण शुरू होने के कुल 23 दिन बाद रिलीज हुई थी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया। रिलीज डेट है 25 अक्टूबर 1957। भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक कालजयी फिल्म। कलाकार नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार। दिलचस्प बात ये कि ये फिल्म महबूब खान की ही 1940 में आई फिल्म औरत का रीमेक थी। इस फिल्म की पटकथा और संवाद एस अली रजा, वजाहत मिर्जा और महबूब खान ने मिलकर लिखे थे। संगीत नौशाद का था, गीत शकील बदायूनी के। मदर इंडिया भारत की एक बेमिसाल फेमिनिस्ट फिल्म। महबूब खान एक स्त्रीवादी फिल्मकार माने जाते हैं, एक ऐसे फिल्मकार जो महिलाओं के पक्ष में खड़े नजर आते हैं, चाहे उनकी फिल्म आन हो, अमर हो, मदर इंडिया हो या औरत। सशक्त नायिकाओं की भूमिकाओं वाली ये फिल्में सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद की जाएंगी। मदर इंडिया को तो एकेडमी अवार्ड्स के लिए शॉर्ट लिस्ट भी किया गया था। ये अलग बात है कि ये फिल्म पुरस्कार जीत नहीं पाई, लेकिन विश्व स्तर पर जितना हंगामा मदर इंडिया ने उस जमाने में किया शायद ही किसी फिल्म ने किया होगा। कुछ गानों की झलक।
1: भर भर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए।

मदर इंडिया जैसी बड़ी लकीर खींचने के बाद महबूब खान ने ज्यादा फिल्में नहीं बनाई। सन 1962 में आई उनकी निर्देशित फिल्म सन ऑफ इंडिया।

एक फिल्मकार जिसे अभी और आसमान छूने थे, जिसे कामयाबी की और बुलंदियां छूनी थी, जिसके सहन में सपनों की फसल लहलहा रही थी, लेकिन वक्त ने उसकी रफ्तार को रोक लिया। 28 मई 1964 को सिर्फ 56 बरस की उम्र में महबूब खान ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया महबूब खान का सिनेमा और सिनेमा की महबूब खान की विरासत महबूब स्टूडियोज। आज भी महबूब खान को अपने समय से आगे का फिल्मकार माना जाता है। महबूब खान के सम्मान में भारत सरकार ने एक पोस्टल स्टैंप जारी किया था, जो डाक टिकट के संग्रहकर्ताओं के लिए एक अनमोल विरासत है। महान फिल्मकार महबूब खान को हमारा विनम्र

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था फिल्मकार महबूब खान पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

पेश खिदमत है छाया गीत। छाया गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। दर्द दिल का चिराग गोया बड़ी मुश्किल से जलाया है, आज फिर बेताबियों में खुद को घिरा पाया है। मोहब्बत के नशे मन में उनके कदमों के निशान ढूंढते हैं, फूलों में ओस की नाजुकी नगमों में तराना ढूंढते हैं। दिल के आंगन में मेरे चुपके से आता है कौन, मेरा सब्र हर घड़ी यूं आजमाता है कौन।

संस्कार भी अजीब शय है, हर पल दिल उनके हुजूर ही रहता है। खास कुछ बेताबियों के निशान देखे कहीं कहीं हमने, है चांदनी के शरारों सा शफाक हुस्न उनका। कलियों की सादगी कांधों पे करवटें लेती जुल्फें, लबों पे मुस्कुराहट, तो भला फिर ऐसी तस्वीर कहाँ।

जब जब पुकारा है, बात क्या चाहिए, सब कुछ मोहब्बत पे वारा है। ये ख्वाब नहीं अफसाना है, हकीकत है, दो घड़ी मिल बैठें, चांद से आंखें मिलाएं, चलो कुछ देर के लिए दुनिया से जुदा हो जाएं।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं छाया गीत। छाया गीत कार्यक्रम के कुछ और नगमे आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। ये खुशबू ए नसीम, ये सितारों की रोशनी, ये शबनम के कतरे, ये फूलों की बहारें हैं फिजाओं में, ये नज़ारे जैसे चनार के पत्तों पे लिखी मोहब्बत की कोई इबारत हो। क्या जानिए क्या दिल का हाल होता है, बूंद जब लरसती है बादलों की घटाओं से।
1: न झटको जुल्फ से पा

ये कश्मकश, ये उलझने बहुत मुश्किल है, ये दुनिया की रवायतें बहुत मुश्किल है। दिल का मामला है, हरफों में कब बयां होता है, ये जिगर का तीर है, मुश्किल से निकलेगा, जहां भी साथ निकलेगी, अगर ये दिल से निकलेगा।

की मुस्कुराहट की कसम खा के ये हवाएं चलती हैं, शबनम ने इन्हीं होठों से जरूर ताजगी चुराई होगी, गुलों ने हवा की लाली आपसे ही पाई होगी, रात फूलों में भंवरों का कैद हो जाना, चुपके से चांद का तकना, मोहब्बत शय ही कुछ ऐसी है, तेरा मगरूर हो जाना, मेरा मशहूर हो जाना।

श्रोताओं, अब तक आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रमों को। FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम।

सदाबहार फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम के साथ आज मैं हूं आशीष सेंद्री। सभी श्रोताओं को नमस्कार।

श्रोताओं, ये कार्यक्रम का पहला गीत था धर्मवीर फिल्म से। आवाज़ से आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और मुकेश की। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सदाबहार फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में आप सुनते हैं सूरज और चांद फिल्म का ये गीत। आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने, संगीत तैयार किया।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आप श्रोताओं सुन रहे थे सूरज और चांद फिल्म का गीत। संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। कार्यक्रम में अगला गीत हम शामिल करते हैं अमर प्रेम फिल्म के। इस गीत को आवाज़ दी है HD बर्मन ने, गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की है RD बर्मन ने।

श्रोताओं, ये खूबसूरत आवाज़ आप सुन रहे थे एचडी बर्मन की, जिसे हमने लिया था अमर प्रेम फिल्म से। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार थे आरडी बर्मन। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं मुकेश की आवाज़ में यहूदी फिल्म का गीत। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

मुकेश की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे यहूदी फिल्म का गीत। गीतकार थे शैलेंद्र, संगीतकार थे शंकर जयकिशन। सदाबहार फिल्मी गीतों के कार्यक्रम का हम समापन करने जा रहे हैं खानदान फिल्म के इस गीत से। आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने, बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत तैयार किया है रवि ने।

0: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात के 11 बजने को हैं। श्रोताओं, कुछ ही पलों में हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र हिंदी समाचारों के लिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।

0: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं, जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने उनके नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हांगकांग में आज से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकेंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। 4 दिवसीय ये चैंपियनशिप 31 मई को सम्पन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।